度古典音乐叫做印度斯坦尼歌曲，而南印度歌曲叫 Carnatic 歌曲，这两个的历史意义非常大而特别。

印度的广播电台，现在播送一篇特写，题目是安德拉邦。安德拉邦是

जैसे कुंवारी कलियां होंठ ये नाजुक नाजुक, जैसे कुंवारी कलियां सामने इनके फीकी बाकी सारी।

आँख शराबी तेरी है उसमें गुलाबी डोरे डोरे डोरे आँख शराबी तेरी उसमें गुलाबी डोरे शर्म के मारे दहके गाल ये गोरे गोरे गोरे गोरे शर्म के मारे दहके गाल ये गोरे गोरे आ

सजाए हाल बैठी है हमको ये अनजान अदाए छोड़ के दर को तेरे बोल कहाँ हम जाए हाँ हाँ छोड़।

0: बदले का क्या होगा हाय हाय।
1: 这里广播电台听众朋友们，请收听拉达长的歌曲。

गंगा तट पर श्री राम तथा सीता को रात्रि विश्राम के लिए धरती पर सोते देख निषाद राज को बहुत दुख हुआ। उनके आहत मन को सांत्वना देने के उद्देश्य से रात भर लक्ष्मण ज्ञान वैराग्य की मीमांसा करते हुए भक्ति का उपदेश देते रहे। इस प्रकार श्री राम के गुणों की प्रशंसा करते हुए सवेरा हुआ। स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री राम ने बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। ये देख सुमंत्र की आंखों में आंसू उमड़ आए। महाराज दशरथ ने उन्हें यह कहकर श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ भेजा था कि वन दिखाकर गंगा स्नान करा वो उन्हें साथ अयोध्या लौटा लाएं। श्री राम को महाराज का यह संदेश सुनाकर सुमंत्र बालकों की भांति रो पड़े। राम ने अपने चरणों में गिरे सुमंत्र को उठाकर उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों का अध्ययन मनन किया है। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म पालन का अवसर सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश होगा। प्रतिष्ठावान व्यक्ति के लिए अपयश तो करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाला होता है।

0: फेडर।
1: आइए अब सुनते हैं समाचार।
2: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य उज्बेकिस्तान

जय हो राधे श्याम की, जय हो सियाराम की, और जय हो बंबई धाम की। ई है

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर राजधानी ताशकंद पहुंचे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे। उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाश पर दोनों देश जोर देंगे। प्रधानमंत्री के प्रयासों से पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा है। ऐसे में अब दोनों देश मिलकर आने वाले समय में मौजूदा $1 बिलियन के कारोबार को दोगुना से ज्यादा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद यहां शास्त्र स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी केंद्र का दौरा भी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। PM सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपये की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है।
2: Every nation has a mission.
3: प्रत्येक राष्ट्र का एक मिशन होता है, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है। भारत दुनिया को विविधता में एकता का एहसास कराता है। हम एक हैं और विविधता के कारण एक रूपता सुशोभित है, इसलिए विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए।
2: So diversity has to be celebrated.
0: श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत का सम्मान किया है।
4: हमारी प्रतिबद्धता, हमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से किसी प्रकार को कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन काल में, जन्म से लेकर के उनके देहांत तक, जहां जहां जिन जिन स्थानों पर उनका स्पर्श हुआ, उस स्थान को तीर्थ का दर्जा किसने दिया है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। स्कॉलरशिप हो, प्रतिनिधित्व हो, संस्थान हो, हर स्थान पे यदि वाकई में सामाजिक न्याय बढ़ा है तो पिछले 12 वर्षों में बढ़ा है।
0: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दलित समुदाय के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद ये प्रतिक्रिया आई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। काठमांडू को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला मुगलिंग काठमांडू राजमार्ग फिर खोल दिया गया है। इस बीच नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नई चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रसुआ, नुआकोट और धादिंग जिलों में नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भोटे कोशी तिब्बत से निकलने वाली तेज बहाव वाली हिमालय से निकली नदी है। हाल ही में आई अचानक बाढ़ से रसुआ जिले में भारी तबाही हुई थी। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अलापुझा में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधाकृष्णन पत्थनमथिट्टा जिले में अरणमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। शाम को उपराष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम में ओणम पर्यटन सप्ताह के समापन समारोह की परेड को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मौजूदा 16 सितंबर की समय सीमा को 4 सप्ताह बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की निर्धारित तारीख 19 अक्टूबर को भी बदलने का अनुरोध किया है। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in

0: आगे पर जाएं।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। नेपाल बाढ़ त्रासदी पर हिंदुस्तान ने लिखा है, भोटेकोशी नदी पर बनी नई झील में बढ़ रहा है पानी। अमर उजाला की सुर्खी है, जिंदगी बचाने का संघर्ष, भारत ने नेपाल के आग्रह पर भेजे 11 विशेषज्ञ। दैनिक भास्कर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को मुख पृष्ठ पर छापते हुए लिखता है, भारत में मुस्लिम नहीं होने चाहिए, ऐसा सोचने वाला हिंदू नहीं। पत्र ने कल जारी होने वाली प्रारूप मतदाता सूची पर सुर्खी दी है, दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47,70,000 मतदाता बाहर, दावा आपत्ति 30 सितंबर तक। राजस्थान पत्रिका ने फोमो इकोनॉमी, दिखावे में गैर जरूरी चीजों पर भी खर्च करने की आदत को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, जरूरत नहीं, पीछे छूटने के डर से हो रही युवाओं की जेब ढीली। खरीदने से पहले खुद से पूछें 3 सवाल, क्या मुझे इसकी जरूरत है? अगर ये आज उपलब्ध नहीं होता तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदना चाहता? क्या मैं इसे अगले 7 दिन के बाद भी खरीदना चाहूंगा? सितारों से आगे देखने के लिए चिली में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है, 260 फीट ऊंचा होगा गुंबद, 128 फीट का मुख्य लेंस, 2030 तक अंतरिक्ष में झांकने लगेगा टेलीस्कोप। नवभारत टाइम्स ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट या हाईली स्वीटेंड बेवरेज जैसी चेतावनी को पैकेट के ऊपर लाल चेतावनी वाले स्टिकर के रूप में छापने की खबर को प्रकाशित किया है। लोकसत्ता ने भी इस खबर पर लिखा है, FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अब दर्ज होगी चेतावनी, सावधान, इस पैकेट में नमक, शक्कर, तेल ज्यादा है।
1: धन्यवाद नवीन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटेकोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: उज्बेकिस्तान की योगा फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम योगा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसके बाद वो उज्बेकिस्तान के सदारती महल जाएंगे, जहां दोनों रहनुमा दो तरफ़ा बातचीत में शिरकत करेंगे। दोनों रहनुमा तिजारत और सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल कनेक्टिविटी, तवानाई, तालीम और आवाम से आवाम ताल्लुकात के शोबों में बाहमी तआवुन का जायज़ा लेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा के शोबे में तआवुन में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अलबत्त दोनों ममालिक कानकनी, ख़ासतौर पर कमियाब मादनियात, धातों जैसे सोना और दीगर अहम मादनियात समेत अद्वियात के शोबे, ज़िरात और हुनरमंदी की तरक्की, नीज़ कनेक्टिविटी के नए मौक़े की तलाश जैसे शोबों पर भी तवज्जो मरकूज़ करेंगे। वज़ीर आज़म की कोशिशों की बदौलत गुज़िश्ता 10 बरसों में दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत में 300% का इजाफा हुआ है। दोनों ममालिक एक साथ मिलकर आइंदा बरसों में बाहमी तिजारत को मौजूदा $1 अरब से बढ़ाकर 2 गुना करने का इरादा रखते हैं। इस सिलसिले में आज कुछ अहम माहदों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: वज़ीर आज़म जनाब मोदी उज़्बेकिस्तान के अपने 2 रोज़ा दौरे पर कल ताशकंद पहुंचे थे, जहां सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने ताशकंद के यंगी उज़्बेकिस्तान पार्क में उज़्बेकिस्तान की मालामाल तारीख, विरासत और कौमी जज्बे के एहतराम में गुलहाए अकीदत नजर किए। इसके बाद भारत और उज़्बेक बिरादरी ने रिवायती अंदाज में जनाब मोदी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 137वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, AIR न्यूज़ की वेबसाइट्स और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज़, DT न्यूज़, वज़ीर आज़म के दफ्तर और इत्तला तो नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। बीजेपी ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात की 137वें नशरिये के लिए पूरे गुजरात में समाज के मुख्तलिफ तबकात पर मरकूज जलसे मुनाकिद करने का प्रोग्राम तैयार किया है। पार्टी के सीनियर लीडर नौजवानों, किसानों, पेशावराना अफराद और समाज के मुख्तलिफ तबकात के अराकीन के साथ मिलकर मन की बात सुनेंगे। पार्टी के रहनुमाओं के मुताबिक वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के घटोलदिया असेंबली हलके में ये प्रोग्राम सुनेंगे। बीजेपी के रियासती सदर जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर के कोडासन इलाके में प्रमुख आर्केड में नौजवानों के लिए मुनाकिद एक प्रोग्राम में शामिल होंगे। जल शक्ति के मरकजी वजीर CR पाटिल सूरत शहर के उधना में वाक़ बीजेपी के दफ्तर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज के साथ मन की बात सुनेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस पर दलित समाज को सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया है। नई दिल्ली में अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के कौमी तर्जुमान डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने इल्ज़ाम लगाया कि दलित समाज की तौहीन करने की कांग्रेस की तारीख रही है। उन्होंने कहा कि इसके बरक्स नरेंद्र मोदी हुकूमत ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के विरसे की ताज़ीम के तौर पर उनसे वाबस्ता मकामात को मुकद्दस मकामात का दर्जा दिया है। बीजेपी के कौमी सदर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने भी कांग्रेस पर अपने सियासी फायदे के लिए हिंदुओं में फूट डालने का इल्ज़ाम आयद किया है। दफा 370 का हवाला देते हुए जनाब त्रिवेदी ने कहा कि 370 के इंतजामात ने जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज के अराकीन के खिलाफ इम्तियाज पर मबनी डोमिसाइल पाबंदियां आयद कर रखी थीं।
2: अब यह बात बहुत साफ दिखाई पड़ती है कि कांग्रेस का असली चेहरा क्या है। कभी अगड़े पिछड़े का मुद्दा उठाना है, कभी सामान्य और दलित का मुद्दा उठाना है, हकीकत में एक ही एजेंडा है कि हिंदुओं को आपस में लड़ाना है और पीछे से मैकाले, मार्क और मौलाना के एजेंडा को आगे बढ़ाना है।
1: इससे पहले कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने दलित समाज के खिलाफ इम्तियाज से मुतालिक मामलात उठाए थे। नायब सदर CP राधाकृष्णन आज 2 रोज़ा दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वो अलप्पुज़ा में एक नुमाया मलयाली रोजनामा केरला कौमुदी के 115वें योम तासीस की तकरीब में शिरकत करेंगे। वो अरनमुला वाटर फेस्टिवल का भी इफ्तिताह करेंगे, जो कि केरलम की सबसे मशहूर और कदीम कश्तियों की दौड़ में से एक है। पंपा नदी में होने वाले सालाना कश्ती दौड़ के मुकाबले में 51 कश्तियां हिस्सा लेंगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज लखनऊ में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से खिताब करेंगे। PM सेतु योजना के तहत मुनाकिद होने वाले इस प्रोग्राम में हुनरमंदी के फरोग, इंटरप्रोनियरशिप और पेशावराना तालीम जैसे मौजूदात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कॉन्क्लेव में शिरकत से पहले जनाब सिंह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम को सुनेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी

0: दिया है। मुत्तहदा अरब अमारात की यूएई सेंट्रल बैंक ने अमारात में बैंक के मिस्र की शाखों का फौरी तौर पर खसूसी मुआयना करने का फैसला किया है। अमरीकी ट्रेजरी की जानिब से मुमकिन तौर पर दरे पर्दा ईरानी बैंकिंग नेटवर्क लेन देन किए जाने के तनाजुर में ये कार्रवाई की गई है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज ओडिशा में शदीद से बहुत शदीद बारिश और कुछ इलाकों में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गंगा के मगरबी बंगाल के इलाकों में शदीद से बहुत शदीद बारिश मुतवक्का है। महकमा मौसमियात ने आज बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जैली हिमालय, मगरबी बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार जजायर, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। भारत आज थाईलैंड के खिलाफ मैच के साथ खवातीन के T20 एशिया कप में अपनी मुहिम का आगाज करेगा। ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की कप्तानी करेंगी जबकि स्मृति मंदना नायब कप्तान होंगी। T20 एशिया कप में भारत ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अब तक हुए 5 एडिशन में से 3 में भारत जीत दर्ज कर चुका है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
1: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उज्बेकिस्तान दौरे के तहत ताशकंद पहुंचने की खबर को सफ़े अव्वल की शह सुर्खी बनाया है। वजीर आजम मोदी का ये उज्बेकिस्तान का 4th दौरा है। 4 रोज़ा गैर मुल्की दौरे के तहत वजीर आजम मोदी उज्बेकिस्तान से किर्गिस्तान जाएंगे। वहीं रोजनामा इनकलाब ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के उस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत तेजी से तरक्की की जानिब गामजन है। एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि भारत आज मरीख तक पहुंच गया है और खला में प्राइवेट स्टेशन और इंसानी मिशन की जानिब कदम बढ़ा रहा है। रोजनामा प्रताप ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि अमेरिका वेनेजुएला के साथ दुनिया के सबसे बड़े तेल माहदे पर पहुंच गया है जिससे वेनेजुएला के 65 बिलियन बैरल से ज्यादा तेल के जखायर पर अमरीका का कंट्रोल हो गया है।
0: और अब खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जियोयेव से बातचीत करेंगे। वजीर आजम आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। नेपाल में अचानक सैलाब में मरने वालों की तादाद बढ़कर 675 हो गई है और 2400 अफराद अब भी लापता है। नेपाल ने भुटेकोशी नदी में सैलाब से मुतालिक ताजा वार्निंग जारी की है। वजारत खारजा ने कहा है कि नेपाल के अचानक सैलाब के हादसे में अब तक 108 भारतीयों को बचा लिया गया है। भारत ने नेपाल को इंसानी हमदर्दी के तहत 11 टन इमदाद पर मबनी 4थी खेप बजरिए तैयारा रवाना की है। और खवातीन क्रिकेट के T20 एशिया कप में आज शाम दुबई में भारत थाईलैंड के खिलाफ मैच के जरिए अपनी मुहिम की शुरुआत करेगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीटर व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम साहित्य की।
3: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, साहित्य केवल शब्दों का संकलन नहीं बल्कि अनुभवों, संवेदनाओं और जीवन दृष्टि की यात्रा है। मेरा साहित्यिक सफर क्रम में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रामशरण गौड़ आज हमसे साझा करेंगे अपनी रचनात्मक यात्रा के शुरुआती पड़ाव, लेखन की प्रेरणा, समकालीन साहित्य की चुनौतियां और जीवन के प्रेरक अनुभव। आपसे भेंट कर रही हैं नीलम मलकानिया।
4: नमस्कार, मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार और चिंतक डॉक्टर रामशरण गौड़। आप हिंदी अकादमी दिल्ली के सचिव रहे हैं। स्वतंत्र लेखन के अलावा आप आज कई स्वयंसेवी, समाजसेवी और साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े हैं। साथ ही संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ अध्येता के रूप में आपने विशेष शोध कार्य भी किया है। 40 से अधिक आपकी पुस्तकें हैं और आपकी लेखनी ने केवल प्रशंसा ही नहीं बटोरी बल्कि कई सम्मान और पुरस्कार भी अर्जित किए हैं। आप लगातार साहित्यिक गतिविधियों के माध्यम से युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करते आ रहे रहे हैं। रामशरण जी, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत

0: स्वागत।
1: धन्यवाद।
0: जब हम किसी की साहित्य यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारे मन में आता है वो ये कि किन परिस्थितियों में आपका लेखन से जुड़ाव हुआ होगा। तो मैं शुरुआत यहाँ से करूंगी कि आप भारत के किस हिस्से में जन्मे और आरंभिक शिक्षा दीक्षा कैसी थी आपकी?
1: मेरा जन्म जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का गांव है अंडला,
0: जी
1: वहां पर हुआ। बड़ा प्रसिद्ध गांव है। वहां पर इंटर कॉलेज था, पंडित मदन मोहन मालवीय ब्रह्माश्रम अंडला।
0: जी
1: अंडला को ब्रह्माश्रम नाम से जानते थे। वह शिक्षा का गढ़ था। उस समय आसपास के गांवों में विद्यालय नहीं थे, तो
0: जी
1: उस गांव में ही आकर के बच्चे गांव में रहते थे और वहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। उस समय शिक्षा का ही वातावरण था
0: जी
1: और व्यक्तित्व निर्माण का वातावरण था। अध्यापक शिक्षक अपने विद्यालय के बाद भी विद्यार्थियों से संवाद करते थे, परिचर्चा करते थे, पढ़ाते थे, उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे। उनकी दृष्टि व्यवसाय में नहीं थी।
0: जी
1: अब तो इतने पुराने अध्यापक रहे नहीं हैं, लेकिन उस समय जब दिल्ली में भी आ गया मैं और मिल जाते थे, हमारे हाथ उनको चरणों पर ही जाते थे
0: जी
1: और उनका स्नेह मिलता था।
0: तो क्या बचपन में ही आपका रुझान साहित्य की ओर हो गया था? लेखन कैसे आरंभ हुआ?
1: इसमें विद्यालय का बड़ा सहयोग हुआ। हमारे समय में बाल सभाएं होती थीं,
0: जी
1: प्रतियोगिताएं होती थीं और अंताक्षरी हुआ करती थी। अंताक्षरी साहित्य के आधार पर होती थी। उसमें रामचरितमानस है और एक झांसी की रानी है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान की,
0: जी
1: जो था पर ही कोई भी हम जो पद बोलते थे या चौपाई बोलते थे तो ये प्रयास करते थे कि दूसरी टीम को हम किसी तरह उलझाएं। तो झांसी की रानी का हर पद थी पर टूटता है।
0: जी
1: तो विद्यालय में जो हमारे शिक्षक थे, अध्यापक थे, वो प्रत्येक विद्यार्थी को अक्षर बांट देते थे।
0: जी
1: आपने था को तैयार करना है, आपने टा को तैयार करना है, झा को तैयार करना है, क्योंकि इन पर कम पद्यांश होते हैं, दोहे कम होते हैं, चौपाइयाँ कम होती है,
0: जी
1: तो एक एक करके बांटते थे। हम रात दिन रटते थे, अब भी याद है। अच्छा, जैसे जहाँ पर है झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चवेना, था पर थर थर कापे, सब नन नारी, छोट कुमार खोट तिवारी। तो हमारे को स्मरण कराई जाती थी।
0: जी
1: फिर जब हमारे को कोई पद्य याद नहीं होती थी, कोई चौपाई याद नहीं होती थी, तो क्या करते थे कि हम अपने आप भी बना करके चौपाई दे देते थे या दोहा देते थे या कोई न कोई पद्यांश बना देते थे, लेकिन पकड़े जाते थे।
0: जी
1: तो उससे रुचि जो है लेखन की तरफ गई। और इसके साथ बाल सभा में भी बोलने के लिए कहा जाता था। अध्यापक अपने आप नाम लिख देते थे, इस विषय पर ये बोलेगा। तो पहले तैयार करके जाते थे, बोलते थे, बुलवाते थे और हमारे को कहते थे कि पढ़ रहे हो तो आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हो, या तो अध्यापक बनोगे तुम या किसी कार्यालय में काम करोगे। और उस समय केवल साक्षात्कार होता था, लिखित परीक्षा नहीं होती थी।
0: जी
1: तो हमारे को वो बोलने के लिए तैयार करते थे, कल तुम्हारा साक्षात्कार होगा तो क्या बोलोगे जाकर के। तो इस तरह से व्यक्तित्व निर्माण के प्रति और ये प्रयास करते थे कि हमारा छात्र, हमारा विद्यालय एक अच्छा स्थान प्राप्त करे, उस प्रयास करते थे।
0: जी
1: तो धीरे धीरे मैं लिखने लगा और उस समय मैं 12वीं पास करके दिल्ली में आ गया। तो 12वीं पास करने के बाद मैंने प्रभाकर परीक्षा की, पंजाब विश्वविद्यालय से साहित्य रत्न परीक्षा पास की। तो क्योंकि उस समय पढ़ने लिखने का साधन नहीं था, जिस व्यक्ति को काम करने की आवश्यकता करती थी। अब तो सांध विद्यालय भी स्थापित हो गए हैं, मुक्त विद्यालय भी स्थापित हो गए, मुक्त विश्वविद्यालय भी है, पत्राचार पाठ्यक्रम,
0: जी
1: उस समय पत्राचार पाठ्यक्रम आया आया था। तो साहित्य रत्न के बाद में हम लोग एमए में जा सकते थे,

0: ऑनर्स माना जाता था, साहित्य रत्न को उस समय मान्यता प्राप्त था।
1: जी
0: फिर मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए में हिंदी किया और पीएचडी हिंदी से मैंने की, और मेरा विषय था आधुनिक कृषि काव्य में पौराणिक आख्यान।
1: जी विद्यालय ने आपको वाक्पटुता प्रदान की और धीरे धीरे लेखन में प्रवीणता आती गई। मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी कि एक लेखक के रूप में जो शुरुआती चुनौतियां थी आपके सामने वो क्या थी, और कोई पहली रचना जो आपकी प्रकाशित हुई या मंच प्रस्तुति आपने उसकी दी, उसके बारे में जरूर हमें बताएं।
0: मुझे अच्छी तरह से स्मरण है
1: जी
0: कि जब लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था
1: जी
0: तो उस दिन वर्षा हो रही थी, 1965-66 में मुझे याद है। तो मैंने पहली कविता लिखी थी लाल बहादुर शास्त्री, कहाँ चले वो लाल हमारे। तो वहाँ से मैंने पहले कविता लिखना प्रारंभ हुआ, वो पत्रिकाओं में छपी, पुस्तकों में भी छपी। मथुरा से पत्रिका निकलती थी एक, उसमें छपी, और दिल्ली में भी पत्रिका निकलती थी उसमें छपने लगी। फिर धीरे धीरे मेरा रुझान गद्य की तरफ ज़्यादा बढ़ता चला गया
1: जी।
0: तो लेख लिखता था, उस समय हिंदुस्तान में भी छपे। तो यदि लेख अच्छा होता था और कविता अच्छी होती थी, छपती थी, किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आता था, और उस समय कोई कमी भी रह जाती थी तो हम दिखा लेते थे पहले लोगों को, जो हमारे विद्वान थे उनसे हम पर चर्चा करते थे, हमें वो बताते थे कि इसमें कमी ये रह गई।
1: जी
0: तो जैसे कि जैनेन्द्र कुमार जी थे कहानीकार, मैं तो कहानी कमी लिखता था, लेकिन बहुत बच्चे बहुत युवा कहानी लिखते थे तो वो समझाते थे बिठा करके। और इसी तरह से दूसरे जो हमारे वरिष्ठ लेखक थे वो सारे के सारे हमें रास्ता बताते थे कि इस तरह से चलो आगे। फिर हमें पुस्तक पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करते थे कि ये पुस्तक पढ़ो, ये पुस्तक पढ़ो, इसमें से ये संदर्भ जोड़ो।
1: जी तो लेखन के प्रति रुझान भी था और आपने लगातार लिखना भी शुरू किया, साथ में पठन पाठन आपका चल भी रहा था, आपने एमए किया, फिर पीएचडी भी की। नौकरी में आते हुए ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हम पर होती हैं, तो ऐसे में पठन पाठन थोड़ा रुक जाता है या लेखन कार्य अवरुद्ध होता है, आपका कैसा अनुभव रहा?
0: मेरे को कोई व्यवधान नहीं हुआ किसी तरह से, यद्यपि मेरा विवाह हो गया था लेकिन पत्नी भी प्रोत्साहित करती, पढ़िए लिखिए, आप घर के काम की तरफ काम ध्यान दीजिए, हम संभालेंगे।
1: जी
0: तो मुझे घर की तरफ पूरा का पूरा, भाइयों की तरफ जी, पिताजी जी की तरफ से पूरा का पूरा मुझे योगदान रहा और किसी तरह का व्यवधान नहीं।
1: अभी तक आपके 4 उपन्यास, 9 कोश हैं, 27 समीक्षा ग्रंथ हैं और हर विधा में आपने लिखा है। आप साहित्यिक गतिविधियों का संचालन भी करते रहे हैं, आयोजन आप करवाते रहे हैं, लगातार उसमें सक्रियता आपकी बनी रही है। हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने शुरुआत की थी एक लेखक के रूप में, उस समय साहित्यिक गतिविधियों का क्या स्वरूप होता था, कौन से मूर्धन्य साहित्यकार होते थे जिनसे आपको मिलने का अवसर मिला, जिनसे बातचीत करने का अवसर मिला, जिनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, वो समय हमारे लिए थोड़ा सा याद कीजिए एक बार।
0: उस समय जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार थे वो विशेष रूप से युवाओं से मिलने के लिए उन्हें कोई किसी तरह का संकोच नहीं रहता था
1: जी,
0: और वो मिलते थे। मेरा मिलना रामधारी सिंह दिनकर जी से भी हुआ
1: जी,
0: वो लाल किले के एक कवि सम्मेलन में आए थे तो हम लाल किले का कवि सम्मेलन सुनने के लिए गए थे। तो उस समय गोपाल प्रसाद व्यास थे हिंदी साहित्य सम्मेलन के, मेरे से अच्छी तरह से परिचित थे वो
1: जी।
0: वो उस समय आयोजन करते थे तो मंच पर आए थे, हम आगे बैठे थे। जब उतरे तो मैंने उनको प्रणाम किया, बातचीत करने लगे, क्या कर रहे हो, क्या है, तो उनसे भी मिलना होगा। सोहनलाल दुबे जी से भी राष्ट्रीय कवि थे
1: जी,
0: और वो मुझे हिंदी साहित्यकार का सम्मेलन था उसमें आई थी, तो उसमें हम उनसे मिले। और महादेवी जी वर्मा से प्रयागराज में भी मिले। उस समय छात्र होते थे, युवा होते थे या लेखक होते थे तो वो जाते थे कि चलें

0: महिलाओं को बहुत ही पसंद किया जाता रहा है और कई सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। श्री आराधक सम्मान, प्रशांत वेदालंकार सम्मान है, श्री प्रकाश वीर शास्त्री सम्मान और साथ ही दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन का साहित्यश्री सम्मान आपको मिला है। साहित्य भारती है, एक लंबी फहरिस्त है इसकी। तमिलनाडु हिंदी अकादमी का सम्मान भी आपको प्राप्त हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस साहित्यिक यात्रा में जो रचनाएं पुरस्कृत हुई हैं, सम्मानित हुई हैं, इनमें से किसी की रचना के बारे में आप अपना अनुभव हमसे साझा करना चाहेंगे? कौन सी रचना आपके हृदय के विशेष नजदीक है?
1: वैसे तो एक लेखक के लिए सभी रचनाएं ठीक ही होती हैं।
0: जी,
1: लेकिन एक मैंने संकलन किया है खुद के निबंधों का लिख करके, और मैंने उसमें विभिन्न प्रकार के निबंध लिखे थे।
0: जी,
1: तो जैसे लोक व्यवहार के संवर्धक वृद्ध जन, क्योंकि साहित्य को व्यवहारिक समाज कार्य भी कहा जाता है।
0: जी,
1: लिटरेचर इज द एप्लाइड सोशल वर्क। हमारे यहाँ पर जो काव्य शास्त्री हैं, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से संकेत किया है, काव्यम यशसे व्यवहार विदे। काव्य उस समय साहित्य का ही पर्याय था।
0: जी,
1: काव्य साहित्य यश तो देता ही है, लेकिन व्यवहार करना भी सिखाता है लोगों को। जो कार्य एक सामाजिक कार्यकर्ता करता है, वही लेखक कार्य करता है।
0: जी,
1: हमारे यहाँ कहा भी जाता है, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। उसकी दृष्टि होती है, जैसे चिड़िया हर जगह से दाना चुगती है, इसीलिए लेखक की दृष्टि जगह जगह जागती है।
0: जी,
1: लोगों ने उसे पसंद किया कि आपने जो लेख लिखे हैं वो अत्यंत ही प्रासंगिक है। जैसे तुलसी की धार्मिक चेतना है, तो मैंने प्रासंगिकता के आधार पर उसको लिखा। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको आज के समय के अनुकूल जो प्रासंगिक हैं, वो मैंने सारी रचनाओं को उस दृष्टि से लिखा है। और इसके साथ साथ एक मैं अवश्य आपसे बात करना चाहूँगा, मैंने एक जो हमारी प्राचीन कथाएं हैं
0: जी,
1: उनका, भारत की प्राचीन कथाएं, मैंने इनका संकलन किया है। क्यों संकलन किया? भारत की कोई भी भाषा हो, क्योंकि हमारे सभी जो साहित्य है
0: जी,
1: साहित्य के लेखन में, चाहे गद्य का लेखन हो चाहे पद्य लेखन हो, हमारी अंतर कथाएं उसमें बहुत समाहित है। जब तक उन अंतर कथाओं को विद्यार्थियों को नहीं बताया जाएगा, तब तक उसका भाव और अर्थ स्पष्ट नहीं होता है।
0: जी, वो संदर्भ पता होना चाहिए।
1: हाँ,
0: जी,
1: तो अब तुलसी है, सूर है, या जो आधुनिक कवि हैं, वो जो प्रयोग का स्वरूप है, उसमें अलंकार की दृष्टि से, दृष्टांत की दृष्टि से, औचित्य की दृष्टि से, वक्रोक्ति की दृष्टि से, स्थान स्थान पर उनका प्रयोग करते हैं।
0: जी,
1: तो मेरी दृष्टि उधर गई कि मुझे कोई कोष पर काम करना चाहिए। तो मैंने कोष बनाया, भारतीय प्राचीन कथा कोष, तीन खंडों में है।
0: जी,
1: पहली में हमने वैदिक काल से लेकर के पौराणिक काल तक सारे के सारे ग्रंथों के जो हमारी कथाएं हैं उनको उसमें लिया है। इसके बाद जो बौद्ध काल का, जाति कथाओं का बहुत उदाहरण दिया जाता है।
0: जी,
1: तो दूसरा खंड मैंने जातक कथाओं का लिया। तीसरा खंड मैंने लोक कथाओं, जैसे कथा सरित सार है।
0: जी, इनके अलावा और भी आपकी कई रचनाएं जो हैं वो बेहद चर्चित रही हैं, जैसे लोक संस्कृति के उन्नायक सूरदास, पौराणिक कथा कोश है, हिंदी साहित्य पूर्व पीठिका कोश, या आधुनिक गीति काव्य में जीवन मूल्य इसकी बात करें, या भारत राष्ट्र वैभव की बात करें। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर रामशरण गौड़ जी, आपकी जो साहित्यिक यात्रा रही है, कई पुस्तकें हैं, सम्मान आपके खाते में आते हैं, विभिन्न संस्थागत दायित्वों का आपने निर्वाह किया है, ऐसे में भाषा का प्रचार प्रसार रचनाओं के माध्यम से, आपने अलग अलग विधाओं में लिखा, अलग अलग शैलियों में लिखा, लगातार आपका ये प्रयास रहा कि भाषा का प्रचार प्रसार होता रहे, ये आपको क्यों जरूरी लगा और इस बारे में आपका क्या अनुभव रहा?
1: विशेष रूप से मुझे हिंदी अकादमी के सचिव पद पर कार्य करने का उत्तरदायित्व मिला।
0: जी,
1: तो मैंने ये देखा कि हिंदी साहित्य के साथ साथ जब तक हिंदी को

0: एक दृष्टि नहीं दी जाएगी व्यवसायिक रूप की।
1: जी
0: हमारे से लोग खुद कहें हमारा हिंदी का विद्यार्थी, हिंदी के लोग इतने समर्थ होने चाहिए कि
1: जी
0: उनकी आवश्यकता पड़े लोगों को और खुद बुलाएं। तो मैंने हिंदी अकादमी में प्रशासनिक प्रतियोगिता कक्ष प्रारंभ किया,
1: जी
0: उसमें IAS क्लासेज को हिंदी माध्यम से पढ़ाने का प्रारंभ शुरू किया। बाहर से हम अतिथि अध्यापक बुलाते थे, और इसके साथ साथ उस समय कंप्यूटर आ गया था, तो मेरी दृष्टि गई कि कंप्यूटर का हिंदी टाइपिंग शुरू करना चाहिए हमें। तो मैंने 10 केंद्र स्थापित किए दिल्ली में, और इसे मैं एक अच्छा ही कहना चाहूँगा कि हमारे पहले बैच के सारे विद्यार्थी को नौकरी मिल गई।
1: जी
0: समाचार पत्रों के पत्रिकाएं बहुत निकलती थीं, उनको ले गए और अच्छी अच्छी नौकरी, उस समय 5,000-7,000 रुपया मिलता था, वो बहुत था उस समय, आज के भी 25-30 लाख रुपए के बराबर है, उनको नौकरी मिल जाती थी। फिर उनका ये अनुवाद प्रक्रिया भी शुरू होनी चाहिए, तो माखनलाल विश्वविद्यालय है भोपाल का,
1: जी
0: वहाँ के जो वाइस चांसलर थे, उपकुलपति मेरे परिचित थे, तो मैंने उनसे बातचीत की। नोएडा में उसका केंद्र है, तो मैंने कहा आप हमारे को मान्यता दे दीजिए अनुवाद की,
1: जी
0: तो हिंदी अनुवाद की मान्यता उन्होंने दे दी, तो अनुवाद के कक्षाएं शुरू कराई। इसी तरह से उन्होंने पत्रकारिता की मान्यता दे दी, मास मीडिया की, उसमें विद्यार्थियों को हिंदी के माध्यम से तैयार किया कि आप समाचार पत्रों में जाइए, पत्रिकाओं में जाइए, और इसके बाद जब दूरदर्शन भी आ गया था तो आप वहाँ भी जाइए, तो बच्चों को सफलता मिलती थी। तो इस तरह हमने निरंतर प्रयास किया। अच्छा, एक और बात कहना चाहूँगा, जो प्रूफ पाठन की बड़ी समस्या है, लोग ठीक तरह से वर्तनी को नहीं देख पाते हैं,
1: जी
0: तो हमने प्रूफ पाठन का भी पाठ्यक्रम चलाया, और उसमें विद्यार्थी प्रकाशकों के पास चले जाते थे, कुछ लेख कविता इन सारे का प्रूफ पठन करके आ जाता थे, कुछ पैसा मिल जाते
1: जी
0: थे, इस तरह से उस तरफ भी बच्चे जाने लगे।
1: यानी भाषा को ही रोजगार का माध्यम आपने
0: हाँ,
1: बनाया और
0: उससे
1: इसे
0: बड़ा
1: लेकर
0: आवश्यक है,
1: जी
0: साहित्य तो चाहिए ही चाहिए। आजकल बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हम तो किताबें मंगा मंगा के पढ़ते थे, अध्यापक पढ़ते थे, हम 9-9 मील पैदल जा करके पुस्तक खरीद के लाते थे।
1: जी
0: मुझे अच्छी तरह से याद है दिनकर जी की 1962 के समय परशुराम की प्रतीक्षा उनकी पुस्तक आई थी, बड़ी चर्चित हुई थी, उसको लेने के लिए हमारे यहाँ से अलीगढ़ 9 मील है, अब तो 19 किलोमीटर हो गया, वहाँ पैदल गए, पैदल आए पुस्तक लेने के लिए। उसमें बच्चों को अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने की एक रुचि थी, और
1: जी
0: हमारे अध्यापक बढ़ाते थे ये पुस्तक आई है इसे पढ़ो।
1: तो बहुत प्रयास जो है उस समय किया जाता था।
0: हाँ
1: आपने अपनी बातचीत में हमें बताया कि निराला जी को आप सुनने गए लाल किले पर, जो गणतंत्र दिवस कवि सम्मेलन होता था, और एक समय वो भी आया जब स्वयं आपने वहां पर साहित्यिक कार्यक्रमों और संगोष्ठियों का आयोजन करवाया, संचालन भी करवाया। और एक आज का दौर भी है जब हमारे युवा लेखक जो हैं, हमारे साथी, वो डिजिटल दौर का सामना कर रहे हैं और सब कुछ एक स्क्रीन तक सिमटता जा रहा है, किताबों से थोड़ी सी दूरियां हमारी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं पठन पाठन संस्कृति को बचाए रखने की?
0: ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। आज की मैं पीढ़ी को देखता हूँ, क्योंकि आज भी मैं नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी का चेयरमैन का मेरे पास उत्तरदायित्व है,
1: जी
0: वहाँ पर भी मैं बच्चों को देखता हूँ, तो हमारे यहाँ प्रतियोगिता परीक्षा के विद्यार्थी तो बहुत आते हैं। जो सामान्य पाठक है निरंतर कम होता जा रहा है, युवा कम होते जा रहे हैं, बच्चे कम होते जा रहे हैं। मैं जब हिंदी अकादमी में था तो मैंने युवाओं को खींचने के लिए अलग से युवा काव्य प्रतियोगिता करा दी
1: जी
0: या लेख की प्रतियोगिता करा दी, फिर हम उसका प्रकाशन करते थे और उसमें डालते थे, और छप जाती थी पुस्तक, उगती किरण नाम से निकालते थे, तो सारे बच्चों को देते थे, पढ़ो अपने साथियों को पढ़वाओ, तो बच्चे प्रसन्न होकर के ले जाते थे, सबको पढ़वाते थे, और प्रतियोगिता में

0: हम उनको प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार भी देते थे
1: जी।
0: तो विश्वविद्यालय के महाविद्यालय के युवा लेखक कवि उगते हुए कवि सब उसमें जुड़ते थे। तो ये परंपराएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। इसी तरह से हिंदी साहित्य सम्मेलन में मुझे वहाँ का उपाध्यक्ष रहने का अवसर मिला, फिर मार्गदर्शक बन गया मैं। तो मैंने ये कहा कि युवाओं को अधिक से अधिक जोड़िए, तो उसके लिए भी हमने कार्य किया, युवाओं की प्रतियोगिताएं कराई, युवाओं के कवि सम्मेलन छोटी छोटी जगहों पर कराए। तो ये होने चाहिए। इसी संदर्भ में मैंने बाल साहित्य के कुछ जो कहानी हैं उनका भी संकलन किया, भारत की प्राचीन कथा नाम से। तो उसमें जो कथाएं हैं हमारी प्राचीन कथाओं के माध्यम से उनके चित्र दिए, जैसे नचकेता की कथा आती है
1: जी,
0: तो उसमें जो व्यवहार के पक्ष है उसको लिया गया। इसी तरह से अनेक कथाएं हैं जो बच्चों को व्यवहारिक पक्ष समझाती हैं और संस्कार देती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी लेखन हुआ अब भी हो रहा है, जो अच्छे अच्छे वर्ष साहित्यकार हैं उनके लेखन का समाहार
1: जी
0: किसी न किसी संदेश के साथ होता है, मूल्य के साथ होता है। मैं भी साहित्य उसी को मानता हूँ जिसमें सत्य हो, शिव हो और सौंदर्य हो।
1: जी वाह।
0: जिसमें शिवत्व तो नहीं हुआ, हमारे आचार्य मणमठ हुए हैं, शिवेतर छते, उन्होंने कहा अपने उद्देश्य में, जबकि लोगों ने विभिन्न प्रकार के उसके अर्थ किए कि संदर्भ में कहा है, पर ये मानता हूँ मैं कि उन्होंने लोक मंगल को दृष्टि में रखा कि हमारा साहित्य लोक मंगलकारी होना चाहिए। जो समाज का कल्याण नहीं कर सकता है, हमारे बच्चों को संस्कार नहीं दे सकता है, हमारे युवाओं को संस्कार नहीं दे सकता है। इसलिए जब तक पुस्तकें पढ़ी गईं तब तक बच्चों में संस्कार आए। माँ बाप बच्चों को बिठा करके उनको सुनाते थे। अब आपने अभी लोक संस्कृति की बात की
1: जी,
0: मैंने लोक संस्कृति पर भी काम किया है। हमारे यहाँ पर जो लोक उत्सव होते थे या जो हमारे यहाँ लोक संगीत वगैरह होता था उसमें कोई ना कोई संदेश निहित था।
1: जी
0: मैंने अभी संकलन किया है भारतीय लोक में श्री राम, पूरे भारत के लोक कथाओं के अंतर्गत लोकगीतों के अंतर्गत श्री राम कहाँ कहाँ है।
1: जी
0: सिबरी देखे बार बार श्री राम कब आएंगे। अब महिला हमारे यहाँ पर गाती थी, या अंगूठी मोए सांच बता दे कहाँ तो छोड़े लक्ष्मण का, इस तरह का लोक संगीत होता था। उसमें सारा का सारी हमारी राम कथा भी निहित है, कृष्ण कथा भी निहित है
1: जी,
0: वो सारे के सारे पूरी हमारी भारतीय संस्कृति निहित थी
1: जी। और इनके माध्यम से जीवन मूल्य हम सीख रहे हैं, चरित्र निर्माण हो रहा है।
0: हाँ, संस्कार सारे के सारे
1: जी,
0: क्योंकि कोई न कोई लोक कथा है
1: जी,
0: उसका समाहार संदेश में मूल्य में होता है।
1: जी डॉक्टर रामशरण गौर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो हमारे आज के नवोदित साहित्यकार हैं जो कि गंभीरता से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और उनका ये प्रयास भी है कि उनकी रचनाएं लगातार जनमानस तक पहुंचती रहें, उनके लिए आपका क्या संदेश है? इस डिजिटल युग में उनकी चुनौतियां थोड़ी अलग हैं, एक तरह की प्रतिस्पर्धा भी है, लगातार बने रहने का संघर्ष है, क्या उनके लिए आपका संदेश है?
0: मेरा यही कहना है अपने युवा लेखकों को कि आप निरंतर लिखे रहिए, साहस के साथ आके बढ़ते रहिए। अच्छी पुस्तकें अब भी पढ़ी जा रही हैं, अच्छे लेखन को अब भी लोग पढ़ रहे हैं, पुस्तकालयों से पुस्तकें ले जाते हैं, यद्यपि संख्या कम हो रही है
1: जी,
0: परंतु अब जैसे जैसे समस्याएं समाज में आ रही हैं, सभी प्रबुद्ध लोग हैं, जानते हैं, समाचार पत्र पूरे के पूरे भरे रहते हैं, रोज जितनी श्रृंखलता समाज में बढ़ रही है
1: जी,
0: वर्षों का इतना सम्मान घट रहा है,
1: बहुत तरह की
0: परिवारों का हमारा विघटन हो रहा है, ये सारा का सारा क्यों है? कि हमारा सामाजिक मूल्यों के प्रति जो आग्रह था परिवारों में कम होता जा रहा है।

0: इसलिए आज युवा पीढ़ी के सामने जो चुनौती है उसे युवा पीढ़ी ही समाप्त करेगी। वो लिखे छपती हैं किताबें, हम प्रोत्साहित करते हैं। मैं पत्रकार भी रहा हूँ, बहुत सारी पत्रिकाएं का संपादन करता रहा हूँ।
1: जी
0: एक पांचवा स्तंभ पत्रिका निकलती थी, उसका मैं 9 साल तक संपादन करता रहा। तो मैं प्रयास ये करता था कि उसमें युवाओं की अधिक से अधिक रचनाएं जाए। हो जाती थी। एक गौरव घोष निकलती थी पत्रिका, उसमें हमारे शहीदों का, उसमें हमारे जितने भी महापुरुष हैं,
1: जी
0: क्योंकि जब से युवा पीढ़ी के सामने से हमारे महापुरुष अलग कर दिए गए हैं, उनके बारे में पढ़ाया नहीं जाता, तो अनुकरण किसका करेंगे? वो
1: जी
0: अनुकरण करते हैं गलत लोगों का, और वो आधुनिकता के नाम पर भटक रहे हैं।
1: जी सही आदर्श हमारे सामने होगा तभी हम अनुकरण
0: सया
1: कर पाएंगे।
0: सही आदत सामने होना
1: जी
0: चाहिए।
1: मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका 1942 का जन्म है,
0: ये
1: जन्म का वर्ष क्या है आपका?
0: हमारे जो कहना चाहिए पंडरी कहते थे हम,
1: जी
0: तो हमारे मुख्य अध्यापक थे प्राइमरी स्कूल, तो उन्होंने 1942 लिख दिया। उनमें उस समय जो है किसी के पास जन्म तिथि का तो कोई प्रमाण होता नहीं
1: जी
0: था, तो उन्होंने कहा कि मैं इसका जन्म कम लिख देता हूँ ताकि नौकरी ज्यादा देर तक करे। तो उनका मुख से ऐसा आशीर्वाद निकला कि मैंने 40 साल सरकारी नौकरी की।
1: जी बहुत अच्छे।
0: तो उन्होंने लिख दिया
1: जी
0: वैसे 1.5 साल से पहले मेरा जन्म
1: जी
0: हुआ था।
1: लेकिन फिर भी मैं असल में इसलिए आपसे जानना चाहती थी कि 80 वर्ष से अधिक आपकी आयु है
0: हाँ
1: और आज भी आप साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय हैं, आप लगातार पठन पाठन को प्रेरित करते रहे हैं। आकाशवाणी परिवार की ओर से मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आप स्वस्थ रहें और लगातार इसी तरह सक्रिय रहें, क्योंकि जब आप सक्रिय रहेंगे तो आपको देखकर हमारे बहुत सारे नवोदित कलाकार जो हैं और साथ ही जो साहित्यकार हैं वो प्रेरित होते रहेंगे। जब हम किसी वरिष्ठ साहित्यकार की साहित्यिक यात्रा के बारे में जानना शुरू करते हैं तो समय की एक खिड़की हमारे सामने खुलती है जिसमें से हम झांकते हैं और अपना गुजरा हुआ कल देखते हैं जो हमें प्रेरित करता है आने वाले कल के लिए। तो डॉक्टर रामशरण गौड़, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैं नीलम मलकानिया, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा के साथ इस कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रहा कीर्ति बैद का और मार्गदर्शन राम अवतार बैरवा जी का।
2: इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है।
3: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हमारे अतिथि।
4: हमारे अतिथि कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जानी मानी शास्त्रीय गायिका और शिक्षाविद डॉक्टर सुभद्रा देसाई से। इनसे बातचीत कर रही हैं काजल सूरी। संगीत में बसती है साधना, शुरू में छिपा है इबादत का संसार। नमस्कार, हमारे अतिथि कार्यक्रम में एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ काजल। स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसी शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं जिनकी मधुर आवाज, अथक साधना और भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रति समर्पण ने अनेक श्रोताओं के हृदय को स्पर्श किया है। कहते हैं ना, नाद ही ब्रह्म है, संगीत ही साधना। सुरों की आराधना से मिलता है आत्मा का दर्पण। इन्हीं सुरों की इस पावन यात्रा को और नजदीक से जानने के लिए आज हमारे साथ हैं शास्त्रीय संगीत की जानी मानी गायिका और शिक्षाविद डॉक्टर सुभद्रा देसाई। डॉक्टर सुभद्रा देसाई हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका है जिनकी प्रस्तुतियां अपने चिंतनशील स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है। एक शोधकर्ता और शिक्षाविद के रूप में उन्होंने सामवेदिक गायन की मौखिक परंपराओं पर कार्य किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्यापन किया है। आइए उनके संगीत सफर अनुभवों को सुनें।
5: यहाँ बुलाने के लिए और नमस्कार सभी श्रोताओं को।
4: तो सबसे पहले मेरा यही सवाल होगा कि जो आपका संगीत का सफ़र रहा है वो कैसे शुरू हुआ?
5: बहुत छोटी थी, हमारे घर में संगीत का माहौल था।
4: जी,
5: मेरी माँ गाती थी, मेरे पिताजी भी, मेरे बचपन में मैंने सुना है कि वो इसराइल बजाते थे। मेरे सभी जो ताए जी, बुआ जी, ये लोग सब कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट

0: बजाते थे, ऑर्गन बजाती थी मेरी बुआ, वायलिन बजाते थे ताई जी, तो घर में संगीत था और मेरे नाना जी के यहाँ भी सभी गाते थे। तो मेरे पेरेंट्स मुझे 5 साल की उम्र में सिखाने के लिए ले गई किसी के पास, कोई वहाँ पे बहुत पास में ही रहती थी, तो उनके पास, उनका नाम था भारती दास, तो उनके पास मैंने जाके अपना संगीत का शुरुआत किया
1: 5 साल की उम्र में।
0: 5 साल की उम्र में
1: जी।
0: फिर उसके बाद पास में कहीं एक इंस्टीट्यूट था संगीत का, तो वहाँ जाके भी 3-4 साल सीखा। लेकिन मैं ये सोच समझती हूँ कि जो मेरा विधिवत शिक्षा जो कहें, वो गांधर्व महाविद्यालय दिल्ली में हुआ
1: जी।
0: पंडित विनय चंद्र मौदगल्य जी और पद्मा देवी जी के पास शुरुआत हुई। शुभा जी से भी कुछ समय सीखा। मेरे गुरु पंडित मधुप मुदगल जी के पास मैंने वर्षों तक, अनेक वर्षों तक उनके पास गुरु शिष्य परंपरा में सीखा।
1: क्या बात। गुरु शिष्य परंपरा के बारे में मैं आपसे और विस्तार से जानना चाहूँगी, हमारे श्रोताओं के लिए क्या कहेंगी आप, क्योंकि मुझे लगता है कि परंपरा कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, आपका क्या मानना है इस बारे में?
0: देखिए, समय के साथ साथ तो कुछ ना कुछ अंतर आता जाता है, लेकिन जो गुरु शिष्य परंपरा में जिस तरह से गुरु मुख से सीखना, मतलब ये कोई किताबी विद्या तो है नहीं, गुरु के सामने बैठ के उनके सान्निध्य जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है,
1: बहुत कुछ सिखा देते
0: बहुत
1: हैं।
0: हाँ, क्योंकि संगीत मतलब स्वरों की साधना है, तो है ही, रागों का समझ है, ये सभी चीज रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो गुरु का सान्निध्य होता है, कैसे बैठना, कैसे चलना, कैसे बोलना, हर चीज उसमें आता है, बात कैसे करना, या संगीत के विषय में कैसे सोचना, राग के बारे में किस तरह से, उसमें कौन कौन सी चीज़ों में ध्यान देना, तो ये सब चीज़ें गुरुमुख से ही मिलता है।
1: बिल्कुल।
0: तो घंटों तक, वो ऐसा नहीं कि 1 घंटा सिखाया, 1.5 घंटा सिखाया, घंटों तक बैठ के वो सिखाते थे, और हम 3-4 लड़कियां एक साथ बैठ के सीखती थी, लेकिन बड़ा पावरफुल था वो समय, बहुत स्ट्रांग वाइब्स उसके मेरे मेमोरीज में हैं, शुरुआत की जो मेरी शिक्षा है। बाद में तो वो बहुत कठिन होता गया और उसमें हम मन रमता गया, और ये सभी संभव हुआ क्योंकि मैं उनसे सीख रही थी उस तरह से। देखिए, इंस्टीट्यूशनल मैनर में सीखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक साल भर में आपको इतने राग आने चाहिए या उसमें आलापतान आने चाहिए, ये भी ज़रूरी है
1: जी।
0: और हजारों बच्चे इस तरह से सीख रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि उसमें कोई भी कमी है, बट मैं इंस्टीट्यूशन में रहते हुए, मैंने विशारद वहीं से किया, गांधर्व महाविद्यालय से, लेकिन वहाँ रहते हुए भी मुझे ये, मेरे गुरु मुख से वो विद्या मुझे मिली, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ।
1: और मुझे लगता है कि एक अच्छा गुरु मिलना भी एक सौभाग्य की बात होती
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बिल्कुल।
1: गुरु का हाथ अगर सर पे हो तो वो एक अपने आप में एक सौभाग्य की बात हो जाती है।
0: वो जैसे माता पिता उंगली पकड़ के बच्चों को अक्षर परिचय कराते हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि स्वरों का परिचय उस तरह से मुझे गुरुजी से, अपने गुरुजी से मुझे मिला है।
1: क्या बात, क्या बात। 5 साल की उम्र से जो आपका सफ़र शुरू हुआ, तो आप आज इस मकाम तक पहुंची हैं, तो ये जानना चाहूंगी मैं आपसे कि रियाज का आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में क्या महत्व है, क्या ये रेगुलर होता है?
0: हाँ हाँ, बिल्कुल, उसके बिना कोई चारा ही नहीं है। रियाज क्या, उसको हम लोग के यहाँ, मेरे गुरुजी के यहाँ, उस अभ्यास कहते हैं, अभ्यास
1: जी,
0: करना
1: जी।
0: रियाज करना ऐसे ज़्यादा नहीं कहते थे, अभ्यास करना, क्योंकि रियाज, वो कब रियाज बनता है, ये वो धीरे धीरे एक छात्र को समझ में आता है। अभ्यास करना किस तरह से, एक सिर्फ रागों का नहीं, पहले तो स्वरों का। स्वर, 7 स्वर तो सभी संगीत में है, हमारे राग संगीत में 12 स्वर हैं, 5 कोमल और तीव्र स्वर भी हैं, तो 12 स्वरों का अभ्यास, उसके बाद जो भी राग चल रहा है, जो राग सीख रहे हैं, उस राग का अभ्यास, उस राग में किस तरह से कैसी कैसी बंदिशें अलग अलग हैं, उन बंदिशों में कैसे उसको बढ़ाना है आलापतान के जरिए, तो ये इसका अभ्यास, तानों का अभ्यास, तो अभ्यास के बिना तो रास्ता ही नहीं मालूम कोई।
1: तो ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर कुछ पॉसिबल ही नहीं हो सकता, और पकड़ भी तभी आती है सुरों पे जब हम अभ्यास करते हैं। तो कौन सा वक्त अभ्यास के लिए, रियाज के लिए सबसे सही रहता है?
0: सबसे अच्छा समय स्वर अभ्यास के लिए तो सुबह का है
1: जी।
0: तो सुबह जैसे ब्रह्म मुहूर्त है।

0: रहते हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो उस समय जैसे सूर्योदय से पहले का जो समय है वो बहुत अच्छा समय माना जाता है। एक तो ये भी है कि उस समय बिल्कुल शांत रहता है वातावरण, निःशब्द, कोई आवाज़ नहीं रहती है बाहर, तो और घर में भी सब लोग सोए हुए होते हैं।
1: जी जी।
0: तो उस समय तानपुरा मिला के स्वर अभ्यास करना ये एक बहुत ज़रूरी काम है किसी भी संगीत के विद्यार्थी के लिए।
1: जी।
0: और इसके अलावा बाकी चीज़ें जो हैं, राग का अभ्यास वगैरह, वो किसी भी समय हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, शाम को भोजन से पहले हो सकता है, या रात को सोने से पहले भी, जिस गायक को जैसी सुविधा होती है वो उस तरह से करते हैं।
1: ये साधना है,
0: वो चलता ही रहता है कहीं ना किसी ना किसी तरह से।
1: तरह से जी। तो डॉक्टर सुभद्रा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी पसंद के जो राग हैं वो कौन कौन से हैं और क्यों आप उनको इतना पसंद करती हैं, कोई खास बात?
0: दो तीन राग तो हैं जो मुझे बहुत पसंद है। एक राग है रागश्री, उसके जो कोमल ऋषभ है वो बड़ा बहुत स्ट्रांग, उसका इफेक्ट गाने में भी, उसको ढूंढने में बहुत समय लगा और अभी भी हमेशा वो स्वर मुझे मिलते हैं, ऐसे मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कभी कभी वो स्वर लग जाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो लग जाने की मतलब ये नहीं कि हाँ, नॉर्मली कोई श्रोता तो सुन के नहीं उसका अंतर बता पाएगा, लेकिन जिस तरह से हमारे गुरु ने हमको सुर बताया है कि देखो श्री राग में ये इस तरह से ये स्वर लगाना है कोमल ऋषभ, तो वो मेरे मन में उसका बड़ा बहुत गहरा प्रभाव है। और भी राग हैं, एक शाम के रागों में एक मुझे शुद्ध कल्याण बहुत पसंद है, बहुत मीठा राग है, और सुबह के रागों में मुझे भैरव, आही भैरव, बिलास खानी, ये सब राग मुझे बहुत पसंद है।
1: तो क्या आप हमारे श्रोताओं के कुछ थोड़ा सा सुना दीजिए?
0: अच्छा, तो एक बंदिश थोड़ी सी, छोटी सी।

0: बहुत ही खूबसूरत,
1: बंदिशी इतनी सुंदर,
0: बहुत ही खूबसूरत। तो आपने बहुत सारी यादगार मंच प्रस्तुतियां दी हैं, मंच पे आपने परफॉर्मेंसेस दी हैं, कोई ऐसी प्रस्तुति जो आपके दिल के बहुत करीब रही हो और आप अभी तक उसको याद करती हो, कुछ ऐसा हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगी?
1: हाँ, कई ऐसे कॉन्सर्ट्स मुझे मेरे बहुत दिल के करीबी हैं। उसमें से एक तो है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती समारोह। तो वहाँ पे जब मैं छोटी थी तब से मैंने वहाँ पे हमारे देश के सब मूर्धन्य कलाकारों को सुना है। तो वहाँ तीन तीन चार चार घंटे बैठे रहते थे और बड़े बड़े गायकों को सुनते थे। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हमको कभी वहाँ पे गाने का अवसर मिलेगा। तो इसलिए जब वो अवसर मिला
0: जी,
1: तो वो मेरे लिए मेरे जीवन का, मैं कह सकती हूँ कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा एक तोहफा था। मतलब इट वॉज अ प्राइज फॉर मी। मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि मैं वहाँ उस मुकाम पे गाने का मुझे अवसर कभी मिलेगा
0: जी।
1: और बहुत जल्दी ही आया वो। तो ये सब चीजें ऐसे हैं कि एक एप्रिहेंशन होता है कि क्या होगा, अप्रिहेंसिवनेस जो है कि मैं गा पाऊंगी क्या, इतना बड़ा प्रोग्राम है, इतने बड़े बड़े लोग आएंगे। लेकिन जब मैंने वहाँ गाया और वहाँ इतना सुंदर सुरीला हारमोनियम और इतना बढ़िया तबला और साथ में मंजीरे पे भी थे, तो वो गाना फिर उस समय मुझे नहीं लग रहा था कि इतने ऐसे श्रोता के सामने बैठ के गा रही हूँ। मेरे गुरुजी वहाँ सामने बैठे हुए थे,
0: डिवाइन एक्सपीरियंस।
1: तो मैं अगर आँख खोल रही थी तो मैं उनको ही देख रही थी कि उनको कैसा लग रहा होगा। तो इस तरह से। और एक और बहुत मुझे जो

0: यादगार मेरा एक कॉन्सर्ट था, वो यहाँ भक्ति उत्सव में था
1: जी।
0: तो भक्ति उत्सव में एक साथ 5-6 हज़ार 7 हज़ार लोग बैठते हैं वहाँ पे नेहरू पार्क में, तो वहाँ फिर मुझे गाने का अवसर मिला था, तो वो भी एक बड़ा यादगार रहा।
1: तो कुछ और थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को आप
0: क्या सुनाओ बताइए,
1: कुछ भी जो आपको अभी तक आपने इतना खूबसूरत सुनाया, कुछ और अगर आप सुनाना चाहें।
0: ये बंदिश भी मैंने मेरे गुरु पंडित विदुषी मालिनी राजूरकर जी से सीखी थी। उनके पास मुझे एक फेलोशिप मिला था, नेशनल फेलोशिप, उसके ज़रिए मैं उनके पास गई थी
1: जी।
0: और उनके पास मैंने ये बंदिश सीखी थी।

0: बहुत खूबसूरत।
1: डॉक्टर सुभद्रा देसाई, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन हमारी दूसरी कड़ी में। तो श्रोताओं, डॉक्टर सुभद्रा देसाई के शख्सियत के और पहलुओं के बारे में बातचीत करेंगे अपनी दूसरी कड़ी में। तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के कार्यक्रम भी। हमारे अतिथि कार्यक्रम में आज हमारे साथ थी जानी मानी शास्त्रीय गायिका और शिक्षाविद डॉक्टर सुभद्रा देसाई, भेंटकर्ता और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता काजल सूरी।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

एक भंवरे की निगाहों से चमक जाती है बिजली, खुद ही इन गहरी घटाओं से बरस पड़ती है शबनम,

يَدُ اللَّهِ

0: सही दे।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का चैनल है और आइए अब सुनते हैं ग्रामीण महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: त्योहारों की उमंग के साथ, खुशियों की बहार के साथ, गृह के तानों बानों को बुनकर हम हाजिर हैं हमारी प्यारी ग्रामीण बहनों और सखियों के लिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, जिसमें आज मैं हूं आपके साथ रेनू तवर और मेरे साथ सहभागी
1: रेनू सैनी। ग्रामीण बहनों, साथियों और सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा
0: राम राम। तो भाई, कितनी सारी तैयारी शुरू हो गई। सावन जैसे खत्म होता है तो सावन के साथ आगमन हो जाते हैं नए नए त्योहारों की।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी देखो, जन्माष्टमी का पर्व मनाकर आए हैं, जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है। हाँ। रक्षाबंधन का पर्व मनाया। और तुम्हारी सही नहीं
0: कितने सारे त्योहार। देखो, ओणम भी गया था अभी, ईद भी मनाई और अब रक्षाबंधन मनाया। और रक्षाबंधन कैसा रहा रेनू? वैसे
1: रक्षाबंधन अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। भाई देखो, भाई बहनों के साथ साथ मुझे तो लगता है कि हमको सभी की रक्षा का, जिनकी हम कर सकते हैं उन सभी को रक्षा सूत्र बांध के मतलब ये वचन लेना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे, जो हमारे वृद्ध लोग होते हैं उनकी भी सुरक्षा करेंगे, वो भी बहुत जरूरी होती है, बच्चों की और सभी की। मतलब देश में हम जितना सहयोग कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए।
0: और ये कितना अच्छा है ना, कितने बिजी हम लोग रहते थे, लेकिन एक ये त्योहार बनाकर ना अच्छा कर दिया। जिसने भी शुरू किया, बहुत अच्छा शुरू किया कि इस तरह से हम भीड़ भाड़ भाग दौड़ वाली लाइफ से बचकर भी हम कैसे भी करके मिलने जरूर जाते हैं अपनों से।
1: सही बात है ना? और देखो रेनू, अभी जैसे हमने इसकी बात की रक्षाबंधन की, अब जन्माष्टमी पर्व आने वाला है। और जन्माष्टमी पर्व में तो मुझे लगता है हर जो त्योहार होता है ना, उसका आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी होता है। अब जैसे हम इसमें उपवास रखते हैं तो देखो, हम सभी जान रहे हैं मौसम बदल रहा है और बारिश के मौसम में कुछ भी हम ऐसा खा लें, पेट खराब हो जाता है या कुछ हो जाता है,
0: तो उपवास भी उतना ही जरूरी। कहते हैं ना, 12 घंटे अगर उपवास रखेंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो सही बात कही तुमने कि हमारे साथ ये आध्यात्मिकता तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे स्वास्थ्य का भी बेहद ख्याल रखा गया। और ये जो जन्माष्टमी का भावप्रद मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि को, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे, तो श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप हम बहुत अच्छे से मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और कितना अच्छा लगता है ना, छोटे छोटे बच्चे जब तैयार होते हैं
1: बहुत अच्छे लगते हैं। और देखो, इसमें दही हांडी उत्सव होता है, झांकियां निकलती हैं तरह तरह की, और मन को बहुत ही आकर्षित।

0: करती हैं।
1: और ये देख, हम अपने बच्चों को भी जब हम ले जाते हैं झांकियां दिखाने, तो उनसे वो सीखते हैं, क्योंकि कई बार होता है बातों से इंसान नहीं सीखता, बच्चे नहीं सीखते, लेकिन जब दिखता है उन्हें, तब उन्हें पता चलता है कि कृष्ण भगवान की लीलाएं क्या थी।
0: क्या थी, बिल्कुल। तो चलो हम अपनी बहन को एक कृष्ण पर ही बहुत ही अच्छा गीत सुनवा देते हैं।
1: बिल्कुल।

0: मुझे पूरा विश्वास है कि सुनने वाले जो हमारे ग्रामीण महिलाएं ना रेनू, वो जरूर इस भजन पर नाच चुकी होंगी।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हम खुद यहाँ दोनों नाच रहे थे,
1: दोनों नाच रहे थे। और रेनू देखो कि जो ये भजन के बोल थे, इनको लिखना भी तो कितना श्रम साध्य कार्य है, जो इनको लिखते होंगे पता नहीं कितना, मतलब सोच कर समझ कर, और तब इतनी सुंदर धुने, इतना सुंदर लेखन बाहर आता होगा।
0: बिल्कुल। अरे तुम्हारी इस बात से ना एक बात याद आ गई, जैसे कि आज भगवती चरण वर्मा जी की बात की जाए, वो हिंदी साहित्य की एक महान उपन्यासकार, कवि और कथाकार थी। और कहते हैं ना उनका जन्म 30 अगस्त यानी कि आज ही के दिन हुआ था। और इनकी जो बात करें उपन्यास की, तो चित्रलेखा सबसे प्रसिद्ध और कालजयी उपन्यास,
1: बिल्कुल,
0: और भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ऐसे बहुत उपन्यास इन्होंने लिखे। और
1: देखो इनकी लेखन क्षमता के कारण ही रेनू इन्हें बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार भी मिले थे। रेनू एक तो मुझे लग रहा है कि आज जो हमारी बहनें और भाई कार्यक्रम सुन रहे होंगे वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये भी रेनू वो भी रेनू वही तो देखो आज हम दोनों ही रेनू आपके साथ हैं और आपके साथ बातें कर रहे हैं। तो बात हम भगवती चरण वर्मा की कर रहे हैं, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी रेनू दिया गया था क्योंकि लेखन इनका इतना अच्छा था। और हमारी जो बहनें हैं अगर वो इनका चित्रलेखा उपन्यास जरूर पढ़ें और भी इनके जो जितनी भी रचनाएं हैं उनको पढ़ें, इनको पद्म भूषण भी सम्मानित किया गया
0: था। क्या बात है। देखिए महिलाओं की अगर बात की जाए तो हर क्षेत्र में
1: बिल्कुल
0: आगे बढ़ती जा रही हैं। पहले का जमाना कुछ और था, जैसे कहते हैं ना कि शिक्षा, आधुनिकीकरण हो और एक आर्थिक स्वतंत्रता मिले,
1: बिल्कुल,
0: तो इंसान और समाज सभी बदल जाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और देखो अगर परिवार और रिश्तों में बदलाव आता है ना रेनू, तो निर्णय लेने में भी दोनों की सहभागिता होती है। पहले क्या होता था कि पुरुष अधिकतर सारे जो निर्णय थे वो लेते थे, मगर अब बड़े फैसलों में महिलाओं की राय को महत्व मिलने लगा है, यानी जो हमारी बहनें हैं उनकी राय को भी उतनी ही प्रमुखता दी जाती है। और पारंपरिक सोच भी टूट रही है जो कि समय के साथ टूटनी भी चाहिए, क्योंकि देखो हम जानते हैं आजकल जो हमारी बहनें भी हैं, चाहे वो खेती का काम संभाल रही हैं या ऑफिसों में काम कर रही हैं, दोहरी जिम्मेदारी संभाल रही हैं
0: और वो हर तरह की दोहरी जिंदगी में देखो अपने आप को इस तरह से सजो कर रखती हैं कि परिवार को भी सजोना है, बाहर की सारी चीजों को भी सजोना है, बच्चों को भी संभाल कर रखना है और बड़ों को भी। इसलिए वित्तीय आत्मनिर्भरता भी बढ़ रही है, घर में बैठकर वो जो रोजगार कर पा रही है, शिक्षा ले पा रही है। तो ये जो चेंज आया ना, जो बदलाव आया समाज में, बहुत ही अच्छा बदलाव है। और इससे नई पीढ़ी जो है वो भी प्रेरित हो रही है कि हमें महिलाओं को पढ़ाना है, उन्हें आगे बढ़ाना है, कंधे से कंधा मिलाकर।
1: सही बात है रेनू। और देखो महिलाएं आगे आ रही हैं तो उनमें नेतृत्व की क्षमता भी उजागर हो रही है, जिससे वो राजनीति की तरफ जा रही हैं। और इस तरह से देखा जाए तो जो महिलाएं जब प्राचीन काल में, जब वो नौकरी पेशा नहीं थी, तो एक एक पैसे के लिए अगर वो मांगती थी रुपया तो मिलती थी चवन्नी।
0: चवन्नी। चलो सुनते हैं ये वाला प्यारा सा गीत।

0: रीनू भाई देखो, गीत के बोल बज रहे थे, गीत बज रहा था और मैं देख रही थी कि तुम्हारा झूमना नाचना गाना बंद ही नहीं हो रहा था।
1: बिल्कुल नहीं, हमारा कार्यक्रम ही इतना प्यारा है कि यहाँ पर मनोरंजन भी होता है और ज्ञानवर्धक बातें भी
0: बिल्कुल
1: होती हैं हमारे ग्रामीण सखियों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए। तो आज क्या खजाना है हमारे श्रोताओं के लिए?
0: बिल्कुल, देखो रीनू बिल्कुल सही बात कही, आखिर मनोरंजन के साथ साथ जानकारी होनी भी बहुत जरूरी है। तो आज हम अपनी बहनों के लिए एक रेडियो रिपोर्ट लेकर आए हैं, खादी ग्रामोद्योग द्वारा महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण, और ये बहुत जरूरी है। और इसमें जो केंद्र के प्रभारी हैं श्री राकेश कुमार नेगी जी, वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो वहाँ पर महिलाएं और युवाएं हैं उनको स्वरोजगार प्रशिक्षण दिया जाता है और किस तरह से फिर वो उनका लाभ उठाते हैं।
1: बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: खादी ग्रामोद्योग आयोग समय समय पर ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। पिछले दिनों नई दिल्ली स्थित बहुउद्देशीय प्रशिक्षण संस्थान में जाने का मौका मिला। बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र पर होने वाली क्रियाकलापों के बारे में जानकारी ली केंद्र के प्रभारी श्री राकेश कुमार नेगी से, तो उन्होंने बताया।
3: खादी ग्रामोद्योग आयोग का हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है दिल्ली में राजघाट के पास, इसे बोलते हैं MDTC, मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग सेंटर। ये बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करता है, यानी कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाती है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग होती है, ताकि लोग जो यहाँ ट्रेनिंग करके जाएँ वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकें और दूसरे को रोजगार भी दे सकें। एक्चुअली खादी और ग्रामोद्योग आयोग का जब नाम आता है तो बेसिकली एक तो खादी हो गया जिसका कपड़ा हो गया, दूसरा ग्रामोद्योग, तो यहाँ जो है हमारी ग्रामोद्योग से रिलेटेड ट्रेनिंग्स होती हैं। बहुत तरह की ट्रेनिंग्स यहाँ देते हैं, जैसे सोप मेकिंग हो गई, डिटर्जेंट मेकिंग हो गई, एसेंशियल ऑयल्स हो गए, परफ्यूम मेकिंग, कॉस्मेटिक्स, मसाला, अगरबत्ती, और नया ज़माना है डिजिटल मार्केटिंग को एनकरेज किया जाता है, तो हम लोग यहाँ डिजिटल मार्केटिंग के भी एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग देते हैं, ताकि हमारे जो ट्रेनीज हैं वो डिजिटल स्पेस पर भी अपनी मार्केट ले लें और डिजिटल स्पेस पर भी अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकें। इसके अलावा हमारे खादी ग्रामोद्योग की एक और स्कीम है जिसको बोलते हैं PMEGP, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता है कि हम पीएम

0: पीएमईजीपी के तहत लोन प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करके जाता है तो वो पीएमईजीपी लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। उसमें क्या होता है कि 15% से लेके 25% 30% तक हम लोग उसको सब्सिडी देते हैं। वो सब्सिडी हम इस तरह से देते हैं, मान लीजिए 1 लाख का किसी ने लोन लिया और अगर उसको 25% सब्सिडी केवीआईसी ने दिया है तो उसका 25,000 रुपया केवीआईसी देगा बैंक को, और उसको जो बैंक को लौटाना होगा सिर्फ 75,000 लौटाना होगा 1 लाख के लोन पर। और इस लोन लेने के बाद उसका एक तरह से लिंक हो जाता है खादी ग्राम उद्योग के साथ। तो हम उसके बाद क्या करते हैं कि जैसे हमारा खादी भवन है कनॉट प्लेस दिल्ली में, और भी हर स्टेट में हमारे खादी ग्रामोद्योग भवन है, तो हम उनका प्रोडक्ट वहाँ भी रख सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसको मिल गया हमारे साथ रजिस्टर होने के बाद, तो वो अपना प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर जगह पर भी रख सकता है, मतलब हमारे खादी ग्रामोद्योग भवन में। तो ये एक अलग तरह की उनको मार्केटिंग का अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो यहाँ से ट्रेनिंग का इनको एक और फ़ायदा होता है खादी के साथ जुड़ने का। और हमारा फोकस मैक्सिमम ये रहता है कि जितनी भी हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें जितना प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हम उनको सिखा सकें। उसके अलावा हम लोग ये भी ट्राई करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने बेकरी की किसी ने यहाँ से ट्रेनिंग करी, किसी कंपनी से बात करके अगर प्लेसमेंट हो सकता है तो उसके लिए भी हम लोग ट्राई करते हैं, ताकि वो वहाँ पर जाके अपनी नौकरी अगर करना चाहता है तो नौकरी कर सके। लेकिन हमारे यहाँ से मैंने मैक्सिमम देखा है कि जो लोग ट्रेनिंग करके जाते हैं वो कहीं ना कहीं अपना छोटा मोटा रोजगार शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए 4 ट्रेनीज मिल गए तो उन्होंने अपना एक ग्रुप शुरू कर लिया। इसके अलावा हमारा एनजीओज के साथ भी टाई अप होता है, जहाँ उनका एनजीओ होता है वहीं जाके ट्रेनिंग देकर आते हैं। और इसके अलावा हमारा एक दिल्ली सरकार से भी टाई अप है, उसमें क्या है कि दिल्ली में जो जुवेनाइल होम्स हैं जिसे कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, उन बच्चों को भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ताकि बाहर निकलने के बाद अगर वो अपना कोई कारोबार शुरू कर सकें तो उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। ट्रेनिंग के बाद हम लोग फॉलोअप भी करते हैं। जो हमारा केवीआईसी के साथ जुड़ा हुआ एंटरप्राइज होता है वो कंटिन्यूस हमारे टच में रहता है, और प्लस जो फैसिलिटीज़ हम देते हैं, जैसे ट्रेड फेयर में इस बार हमने 150 लोगों को फ्री में स्टॉल्स प्रोवाइड करे थे। इसी तरह से दिल्ली हार्ट INA और दिल्ली हार्ट पीतमपुरा में भी हम लोग जब एग्जीबिशन करते हैं तो अपने कुछ सेलेक्टेड लोगों को बेसिकली ड्रॉप लॉट्स करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं। लेकिन कोशिश हम ये करते हैं कि मैक्सिमम लोगों को उसमें मौका मिले, तो ताकि उनको अपनी आइटम सेल करने का वहाँ मौका मिले। और हम लोग इनके रेगुलर टच में रहते हैं, जो हमारे लोग अपना काम शुरू करते हैं तो वो हमको ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू ये बताते रहते हैं कि हमने ये नई शुरुआत की है, हमारा ये वाला ब्रांड है, तो हम उनका एक उस हिसाब से डेटाबेस रखते हैं अपने पास। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो मैक्सिमम ट्रेनिंग्स होती हैं वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, और कुछ इस तरह की ट्रेनिंग्स हैं जो अगर हम मार्केट में जाएंगे अगर वो 1 लाख की है तो हमारे यहाँ सिर्फ 1,000 की ट्रेनिंग है। तो हमारे यहाँ मैक्सिमम जो फीस है बेसिकली 1,000 रुपया अभी तक, और किसी भी कोर्स के लिए, और कोर्स की ड्यूरेशन बेसिकली 1 हफ्ते से लेके 1 महीने तक की हम ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि आप यहाँ आइए और ट्रेनिंग लीजिए। और जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग है उसमें 1,000 रुपये तो जनरल कैंडिडेट के लिए है, उसके अलावा महिलाओं को हम 50% की रिबेट देते हैं, तो उनके लिए 500 हो गई, प्लस SC ST के लिए भी 50% रिबेट है, उनके लिए भी 500 रुपये फीस हो गई। तो हमारे यहाँ आके आप प्रैक्टिकली अपना हुनर यहाँ तराश सकते हैं, और बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करने के बाद अपना एंटरप्राइज डेवलप कर सकते हैं।
1: इस मौके पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं और युवाओं से बात की तो उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए हमें बताया।
2: मेरा नाम सपना है और मैं पिछले 15 साल से एज ए ब्यूटिशियन मैं काम करती हूँ। लेकिन अभी मुझे ये फील हुआ था कि भाई मुझे अपने काम को और आगे बढ़ाना है और ऊपर जाना है, तब मुझे न्यूज़पेपर पे मैंने यहाँ KVIC का ये कोर्स ट्रेनिंग यहाँ पे बहुत सारी करवाई जाती है, जो कि मैं खुद से करना ये चाह रही थी कि भाई अगर मुझे आगे बढ़ना है तो कुछ नया करना चाहिए, सीखना चाहिए, जिस पर्पज से मैं आई थी तो वो मैंने यहाँ पे किया। मैंने कॉस्मेटिक मेकिंग, सोप मेकिंग, और अभी मैं डिटर्जेंट मेकिंग की क्लास मैं यहाँ से कर रही हूँ, और अभी मैं 6 महीने से जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने अपने प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए हैं, कॉस्मेटिक का, स्किन केयर का, जिसमें हेयर का आएगा, शैम्पू है, कंडीशनर, सीरम, और उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। यानी वो सर्टिफाइड कोर्स है और लैब अप्रूवल है, टेस्टिंग वगैरह सब कुछ हो रखा है, तो हमें उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता, और टीचर इतने अच्छे से हमें करवा रहे, और वो चीज़ों को हम खुद पे भी यूज कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम अपना एक ब्रांड बनाए, और उसी पे मैं काम कर रही हूँ। और जब मैं खुद यूज कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि सबको ओरिजिनल, जेन्युइन और अच्छा प्रोडक्ट मिले।
3: मेरा नाम रश्मि मंगल है,
2: मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ, बट मेरे को यहाँ पर किसी ने बताया था कि खादी ग्राम उद्योग का एक सेंटर है जहाँ पे बहुत तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पे हम

0: छोटे बजट में कैसे अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, जो फाइनेंशियली पुअर है या लो मिडिल क्लास है, उनको एक अवसर दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं बहुत सारे, जहाँ पे हमें फाइनेंस की और बाकी चीज़ों की नॉलेज दी जाती है। साइबर सिक्योरिटी से हम कैसे बच सकते हैं मिसहैप से, वो सिखाया जाता है हमें। और यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और क्लीनलीनेस पे खासकर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अभी तक मैंने यहाँ पर बेकिंग सीखी है, 2 ट्रेनिंग सेशंस ले चुकी हूँ मैं यहाँ पर, अभी 5 डेज की है, मैंने 3 दिन की अटेंड की है। बाकी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला है और कुछ नई चीज़ें सीखने को भी मिली है। सर हमें खासकर ये चीज़ें बताते हैं कि आप कोई भी मिलावट से बनी हुई चीज़ें ना बनाएं, प्राकृतिक चीज़ों से आप कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और लोगों को अवेयर करा सकते हैं।
1: बेकरी का क्षेत्र आजकल काफी विकसित हो रहा है। बेकरी के क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने वाले प्रतिभागियों से बात की तो उन्होंने बताया,
2: मेरा नाम प्रशांत रोथान है, मैं यहाँ पे बेकरी का ट्रेनिंग कोर्स करने आया हूँ, अभी 4 दिन हुए हैं। ये जो कोर्स के बारे में मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था, और ये कोर्स बहुत अच्छी जगह पे है खादीग्राम के में, और सबसे अच्छी बात कि ये कोर्स बहुत रीजनेबल फीस बहुत कम है यहाँ की, कि बाकी मैंने डिप्लोमा कोर्स भी कर रखा है अशोका सेटीडी से गवर्नमेंट के थ्रू किया है, वहाँ की फीस 10 साल पहले 50,000 थी, यहाँ तो हमारे सरकार की तरफ से बहुत सस्ते में बहुत अच्छे कोर्स करने को मिल रहा है हमें। बाकी कोर्स के इक्विपमेंट्स वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रोवाइड करे गए हैं, मैं सारे हमारे बहुत हेल्प करते हैं हमें करने में, और बाकी और भी क्लासेस यहाँ पे होती रहती है, वातावरण यहाँ का अच्छा है। बाकी मेरे खुद का रेस्टोरेंट है पिज्जा का, तो मैं इसलिए आया हूँ कि बेकरी में कुछ चीज़ ऐड कर सकूँ बेकरी के आइटम में। यहाँ पे मैम ने बहुत अच्छी तरह सिखाती है, 4 दिन में हुए हैं, कुकीज़ का हमें सिखाया, अभी और आगे हम केक का, पेस्ट्रीज का, बाकी और भी चीज़ का काम यहाँ सीखेंगे यहाँ पे।
3: मेरा नाम शाहिना परवीन है। खादी और ग्राम उद्योग के बारे में काफी लोगों से मैंने सुना था, तो एक दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ आई तो मैंने देखा यहाँ काफी अच्छे अच्छे कोर्सेस हो रहे हैं, तो उनमें से मैंने एक बेकरी का सोचा कि वो करती हूँ। बेकरी का एक पर्सनली भी अपने घर के लिए भी कर सकती है, दूसरा मैंने सोचा कि अपना भी हम कुछ काम कर सकते हैं। जब यहाँ आई तो काफी हमें बताया गया कि हमें किस किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं, इसमें काफी हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, इससे अब कुकीज है, ब्रेड्स है, मफिन्स है और पेटीज है, तो इससे हम इनिशियल अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंडली मैंने ये देखा है कि बाहर जो है अनहेल्दी खाने को ज्यादा मिलता है। बीइंग अ फीमेल मैं सोचती हूँ जैसे मैं अपने बच्चों को खिलाऊं तो कल को सोसाइटी कम्युनिटी में ऐसे कस्टमर को सामान दूं, खाने को दूं कि वो उन्हें अच्छा लगे, चाहे कॉस्टली हो, उनसे हम डिमांड भी ऐसे कर रहे हैं, तो हेल्दी हमारी सोसाइटी कम्युनिटी को जाए एज वेल एज हमारी फैमिली को भी। तो मुझे यहाँ काम करके अच्छा लग रहा है और यहाँ इतना रीजनेबल प्राइस पर आई थिंक कहीं नहीं होगा, और सेकेंडली यहाँ की एनवायरमेंट अच्छा है, और यहाँ हमको आकर यही बताया कि आपको हेल्थ पर काम करना है, ना कि ये नहीं कि आप घटिया क्वालिटी का सामान लें ताकि कस्टमर को नुकसान हो, ऐसा नहीं, आप अच्छा बनाइए और अच्छा देंगे तो अच्छा ही मिलेगा। मैंने अभी तक यहाँ पर कुकीज सीखी हैं और ओट्स बहुत बेनिफिशियल है कि ओट्स है, रागी है, इस टाइप के किस तरह से मिलेट्स बना सकते हैं या बिस्किट्स बना सकते हैं जो कि शुगर फ्री भी हो एज वेल एज अगर आप हेल्दी भी हैं तो हम हेल्दी ही खाएं, कि हम उस कंडीशन तक ही ना पहुंचे कि हमें कोई बीमारी हो, तो उसी प्रिकॉशंस के लिए भी इस टाइप की कुकीज या हम जो मटेरियल सिखाया जाएगा हम उसको यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में।
1: केंद्र पर काफी युवा परफ्यूम मेकिंग का प्रशिक्षण ले रहे थे, कुछ परीक्षार्थियों से बात की तो उन्होंने हमें बताया,
4: मेरा नाम शिवम सरोवा है और मैंने यहाँ से परफ्यूम की, सोप की और डिटर्जेंट की ट्रेनिंग ली है, जिसके हमने थोड़ा सा आगे काम किया है। परफ्यूम का मेरा चल रहा है, परफ्यूम में रिस्पांस अच्छा है, तो बेसिकली हमने बिल्कुल ही जड़ में से फॉर्मुलेशन सीखा है, तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ करके अपने भी एक्सपीरियंस के साथ कुछ फॉर्मुलेशन के साथ हमने अलग फॉर्मूले बना करके उसमें हमने अपनी रिसर्च की है, तो उसके हिसाब से हमें नई, यानी यहाँ से हमें रिसर्च करना सिखाया गया है। जब मैंने ज्वाइन किया था मेरे को परफ्यूमरी के बारे में ABCD बिल्कुल भी नहीं पता थी, यहाँ पे आया तो मेरे को सारा रिएक्शन कैसे कैसे होता है, अल्कोहल कौन सा डालना होता है, इथेनॉल मिथाइल कैसे होता है, IPA कब डालना होता है, थिनर कैसे बनाते हैं, तो उसको हमें सेपरेट करना सिखाया गया कि आपको अगर अपने क्लाइंट को कुछ माल देना है तो ताकि उनके ऊपर कोई बैड इफेक्ट ना पड़े। ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे एटमोसफेयर भी अच्छा है, यहाँ पे एक तो पार्किंग की जगह मिल जाती है पूरी दिल्ली में जहाँ नहीं मिलती।
1: इसी के साथ खादी ग्राम उद्योग आयोग के नई दिल्ली स्थित बहुउद्देश्य प्रशिक्षण केंद्र पर आधारित रेडियो रिपोर्ट संपन्न होती है। नमस्कार।
5: तो हमारी बहनों ने, सभी श्रोताओं ने जो सुना अभी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही खास जो बातचीत थी, रिपोर्ट थी, खादी ग्रामोद्योग द्वारा महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण, नई दिल्ली स्थित बहुउद्देश्यीय प्रशिक्षण संस्थान केंद्र के प्रभारी से ये जानकारी मिल रही थी, वो दे रहे थे श्री राकेश कुमार नेगी जी।
6: बिल्कुल, और रेनो हमारी बहनों ने इस बातचीत को सुन, इस जो रेडियो रिपोर्ट थी इसको सुनकर वो लाभ उठाएंगी, क्योंकि कई बातचीत भी सुनवाई गई थी जिन युवाओं को उनसे लाभ पहुंचा था। और देखो मुझे सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है कि वाकई में तो बहुत अच्छी बात है, जो युवा बात बता रहे थे कि उनको कितना लाभ हुआ है।
5: और मुझे तो लग रहा है कि हमें भी ये कर लेना चाहिए, हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं अलग से और इनकम भी आना बहुत जरूरी है भाई।
6: इनकम आना जरूरी है, और साथ साथ मुझे लगता है कि हुनर तो कैसा भी हो भाई ले लेना चाहिए
5: बिल्कुल।
6: और अगर प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो सोने पर सुहागा।
5: और कहते हैं ना हर उम्र में सीखना चाहिए, ये ना सोचे कि हम सीखे ना सीखे, हर समय।
6: और देखो हमें जितने भी हुनर आते जाते हैं तो ऐसे लगता है बाहरें आती जाती हैं,
5: तो मिलकर करें तो कितना मजा आ जाता है।

0: झांसी की गलियों में एक शेरनी सी वो धाड़ी थी, लक्ष्मी बाई की हम शक्ल बनकर वो रणभूमि में जो अड़ी थी। छल कपट की गोरी फौज को जिसने तिनके सा बिखेर दिया, थी वो स्वाभिमान की मूरत जिसने दुश्मन को घेर लिया।
1: हाथों में तलवार लिए वो काल का रूप दिखाती थी, मातृभूमि की रक्षा हित वो हर पल शीश झुकाती थी। गोरे समझे थे लक्ष्मी भाई, पर वो तो झलकारी थी, भारत माँ की लाज बचाने आई दुर्गा अवतारी थी।
0: बिल्कुल, और आज हमारे श्रोता समझ ही गए होंगे कि हम किस वीरांगना की बात कर रहे हैं, वीरांगना

0: झलकारी बाई, जिनका जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास भोसला गांव में हुआ था, और वो एक 1857 की प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महान महिला योद्धा थी।
1: बिल्कुल, और रेनो उनका जो रूप था, जैसे कि हमारी बहनें जानती भी होंगी, झलकारी बाई जैसा जो उनका रूप रानी लक्ष्मी बाई से बहुत मिलता जुलता था, और यही कारण था कि खुद रानी बनकर उन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किया, जिससे कि असली रानी जो थी लक्ष्मी बाई वो सुरक्षित बाहर निकल गई और इन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी।
0: बिल्कुल, और ऐसी वीरांगना को हमारा नमन,
1: शत शत नमन।

रेनो, देखो जैसे स्वतंत्रता संग्राम में वीरांगनाओं ने और हमारे क्रांतिकारियों ने योगदान दिया था, उसी के कारण आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और अब जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो भी युवाओं को हर तरह से प्रेरित कर रहे हैं। जैसे कि आज मन की ही बात करें, तो मन की बात में हमारे युवा अनेक ऐसा काम भी

0: रहे हैं। जैसे कि रेनो, उन्होंने कृष्णा की बड़ी प्रशंसा की कि उन्होंने इतिहास को रोचक बनाने से के लिए एक वेबसाइट बनाई है, और बहुत अच्छी बात है। रेनो, यहाँ पर जितनी बहनें हमारी सुन रही होंगी वो ज़रूर ये बात जानती होंगी कि उनके बच्चे इतिहास को देखे नागवों सिकोड़ते हैं। तो
1: बिल्कुल। और इसी तरीके से हमारे मन की बात में कही गई नशा मुक्ति अभियान, जो कि तेजी से बढ़ रहा है
0: बिल्कुल
1: और हर जगह युवा जो है अब नशा के उसमें चलते जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं, तो उस पर भविष्य पे ऐसा ना हो, युवा इससे बाहर आए, मुक्त होए, तो नशा मुक्त एक मोटिवेशन कोई यंग जो आजकल के बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं, गानों से या उनके जो कहते हैं ना क्रिएटर्स जो होते हैं वो
0: बिल्कुल
1: उनको प्रभावित करने के लिए बोल रहे हैं कि ऐसे क्रिएटर्स आए, आगे आए, और ऐसे यंगस्टर्स जो म्यूजिशियंस हैं वो आगे
0: बिल्कुल
1: आए, जो इस तरह के गीत बनाए, इस तरह की क्रिएटिविटी करें, ताकि जो यंग जनरेशन है वो इस नशा मुक्ति से
0: दूर
1: दूर
0: हो
1: हो,
0: और प्रेरित भी रहें।
1: प्रेरित भी
0: और
1: रहे।
0: इसी तरह से हर घर तिरंगा अभियान, तिरंगा हमारे देश की शान है, मान है। तो 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी डाली गई, जो कि एक बहुत ही सराहनीय बात है।
1: बिल्कुल
0: और इसी तरह से स्वच्छता अभियान भी बहुत तेजी से जा रहा है, और सब लोग, देखिए घर स्वच्छ होगा तभी तो हर चीज़ स्वच्छ होगी। और रेणु, एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन शक्ति शर्ट के बारे में बात की,
1: बिल्कुल
0: जो कि हजारों बेटियों को एक साथ आज जोड़ रहा है। 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन में क्षेत्र में आगे बढ़ने का नए नए अवसर इसके माध्यम से मिल रहे हैं।
1: और 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली, और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत भी हुई है। और इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देश हो, भारत हो, आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुड़ी, और
0: बिल्कुल
1: भारत की दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि छात्राओं को भागीदारी से तैयार एक सेटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की ये तैयारी की जा रही है। तो हमें पूरा विश्वास है कि इनसे जो छात्र हैं आने वाले साइंस और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान
0: बिल्कुल।
1: बनाएंगी।
0: तो रेनू, देखो कितना अच्छा लगता है जब हमारे देश की बेटियां, पूरे विश्व की बेटियां एक साथ आगे बढ़ती हैं, और ऐसे लगता है कि बस अब पूरा आसमान उनका हो गया है।
1: बिल्कुल, और इसी तरीके से आसमान को छूने की कोशिश हमेशा जारी रहेगी।
0: बिल्कुल।

0: और रेनू, जैसे कि बेटियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, अभी आज मन की बात में भी यही बात हुई, तो ऐसे ही पीएम यशस्वी योजना जो है, इस योजना में भी जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, या मतलब इकोनॉमिकल रूप से
1: जो
0: जो
1: कमजोर
0: आर्थिक
1: होते
0: रूप से
1: हैं।
0: कमजोर वर्ग होते हैं, उनको देखो पढ़ाई में आगे लाने के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। पीएम यशस्वी योजना भी ऐसी ही योजना है। और
1: बिल्कुल। और इसे कैसे लाभ मिल सकता है? इसे लाभ मिलेगा 9वीं और 10वीं कक्षा के जो क्षेत्र के जो छात्र हैं, जैसे प्रतिवर्ष उनको 75,000 की आर्थिक सहायता मिल सकती है,
0: बिल्कुल
1: 11वीं 12वीं के लिए 1,25,000, और ये ज्यादा से ज्यादा राशि का उपयोग ट्यूशन फीस, किताबें, स्टेशनरी और अन्य पढ़ाई के भी माध्यम से भी उनको
0: मिल
1: मिलती
0: सकती
1: है।
0: है। और देखो इसके लिए जो विद्यार्थी होंगे उनको कुछ आवश्यक दस्तावेज चाहिए होते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, आय प्रमाण पत्र, भाई ये बहुत जरूरी
1: बहुत
0: होता है,
1: जरूरी
0: क्योंकि
1: है।
0: आय प्रमाण पत्र का तो अगर पूरा दस्तावेज नहीं होगा तो योजना से लाभान्वित नहीं हो पाएंगे, तो
1: बिल्कुल
0: वो भी होना जरूरी है। और फिर पिछली कक्षा की मार्कशीट होनी बहुत जरूरी है, बैंक खाता विवरण और संस्थान में प्रवेश का प्रमाण होना बहुत जरूरी है।
1: और आवेदन आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं, और अपनी जो भी जानकारी है ध्यान से भरिएगा।
0: बिल्कुल। तो देखो रेनू, अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमारा देश और आगे बढ़ेगा, और तरक्की के रास्ते खोलेगा नए नए, और विज्ञान की तरफ हमारे कदम और तेजी से बढ़ेंगे।
1: बिल्कुल।

0: तो हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने बहुमूल्य सुझाव आप हमें इस पते पर लिखकर भेज सकते हैं, कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नया प्रसारण भवन, नई दिल्ली 11001। और हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी है feedback@gmail.com।
1: तो रेनु, आज तो हमारी बहनों को बहुत सारी जानकारी मिली, बहुत सारी बातें जानने को मिली। और भाई देखो, मन तो नहीं चाहता कि बहनों से विदा लें, लेकिन घड़ी की सुई इशारा कर रही है। तो इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं खत्म होता है। हमारे आज के कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पाराशर और संयोजक हैं शिवनंदन लाल।
0: और सुनना ना बोले हमेशा आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल, जिस पर हर संडे 12:10 पर हमारा शुरू हो जाता है कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।
1: बिल्कुल।
0: और कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहनों को हमारा
1: राम राम।

0: अमेरिकन्स बस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें। उन्होंने कहा कि देश में उत्कृष्ट कंटेंट क्रिएटर्स की कोई कमी नहीं है। श्री मोदी ने उनसे इस प्रयास में विभिन्न भाषाओं में कंटेंट तैयार करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि लगभग 46% महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि देश भर की लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपना कारोबार आगे बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
2: उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे, एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उड़ीसा के देवरीगढ़ क्षेत्र के धोड़रो कुसुम के मैथिली भुए ने ये दिखा दिया है कि जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के साथ साथ प्रकृति की रक्षा करना भी संभव है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
2: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज और तमिलनाडु में कोडाई कनाल के चंद्रशेखरन के उल्लेख किया जो एवोकाडो की खेती के जरिए अतिरिक्त कमाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच ताशकंद में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। राष्ट्रपति भवन में दोनों नेता व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा कर रहे हैं। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उज्बेकिस्तान योग महासंघ के योग कार्यक्रम में भाग लिया। बाद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने अपने आवास पर श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2,500 लोग लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। भारत से अब तक 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी। उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बालेश्वर में लगातार वर्षा के कारण सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिमी बंगाल और उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये बारिश तेज हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि निम्न दबाव का क्षेत्र और अधिक तीव्र होकर पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है। एशिया कप महिला टी20

टी क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 7165 and 0086183-0802-6705. In hockey, defending champions Germany will take on Spain in the men's AFIH World Cup final in Wavre, Belgium at 8 p.m. Indian Standard Time today. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर. और दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके सामने यानी कि आपके साथ, और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर. स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार. और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1:10 जब जब होते हैं तब तब एक ही बात दिल में आती है. जी हाँ, आपका खास कार्यक्रम का आपका विशेष कार्यक्रम हम लेकर हाजिर हो जाते हैं. और आज भी एक विशेष कार्यक्रम है एक ही फिल्म से, और फिल्म मैं नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि आप जब गीत सुनेंगे तब खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस फिल्म के बारे में अब बातें करने वाली हूँ आपसे आगे. लेकिन उससे पहले आप ये गीत सुनेंगे ना, तभी आपको अंदाज़ा होगा.

और दोस्तों, जब सावन की बात हम करते हैं ना, कि सावन का नाम आते ही मन में क्या आता है? घने बादल, काले बादल, बारिश की रिमझिम फुहारें, पेड़ों पर पड़े झूले, मिट्टी की सौंधी खुशबू और प्यार से भरा हुआ एक खूबसूरत मौसम। और जब बात होती है किसी फिल्म की, तो पहले गीत सुन लीजिए, फिर बातें करते हैं खूब ढेर सारी।

और अब आपको समझ आ गया होगा कि हम किस फिल्म की आज बात कर रहे हैं। और जब बात हो हिंदी सिनेमा की तो सावन के इस सुहाने मौसम की याद दिलाने वाली फिल्मों में एक खास और प्यारा नाम याद आता है, आया सावन झूमके। आज हम इसी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, खूबसूरत सी, जिसने अपने समय की संगीत और भावनाओं को ऐसा मेल पेश किया जिसका नाम आज भी पुराने हिंदी फिल्म संगीत के चाहने वालों को वो अपनी ओर खींचता रहता है और ये गीत सुनाता रहता है।

0: ये खूबसूरत गीत भी आया सावन झूम से था, यानी कि आया सावन झूम के साल 1969 में रिलीज हुई थी और फिल्म के निर्देशक थे रघुनाथ झालानी और फिल्म के प्रमुख कलाकारों में धर्मेंद्र, आशा पारेख और नज़ीर हुसैन जैसे जाने माने कलाकार शामिल थे। फिल्म की कहानी में प्रेम, रिश्ते, गलतफहमियां और भावनात्मक उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। उस दौर की फिल्मों की खासियत यही थी कि कहानी सिर्फ प्रेम कहानी नहीं होती थी, बल्कि उसमें परिवार, रिश्तों और समाज की भावनाओं को भी खूबसूरती से पिरोया जाता था।
1: नजर वो जो दुश्मन

जी हाँ, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, ये तो सच्चाई भी है जीवन की। और इसी जीवन की सच्चाई के साथ फिल्म के नाम में भी सावन की मस्ती छिपी हुई है। आया सावन झूम के, सावन यानी ऐसा मौसम जिसमें प्रकृति की जैसे पूरे अपने रंग में आ जाती है। और सिनेमा के इस मौसम को हमेशा प्रेम के साथ जोड़ कर देखा जाता है, और इस फिल्म में भी यही खूबसूरत एहसास दिखाई देता है। फिल्म के संगीत की बात करें तो इस दौर का संगीत अपने आप में एक बहुत ही अलग पहचान रखता था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत जोड़ी ने फिल्म को मधुर संगीत दिया, और गीतों ने फिल्म की लोकप्रियता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई, और फिल्म का एक बड़ा आकर्षण इसके गीत हमेशा से रहे।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जी हाँ, और हम बात कर रहे हैं आया सावन झूम के फिल्म से। उस समय आज की तरह मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, इंटरनेट नहीं था। फिल्मों के गीत रेडियो पर बजते थे और लोग गीत सुनकर ही फिल्म के प्रति आकर्षित हो जाते थे। जी हाँ, और यही वजह थी कि उस दौर के फिल्मी गीत लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते थे। और आया सावन झूम की भी इसी फिल्मी दौर की खूबसूरत याद है।

आया सावन झूम के जैसे शीर्षक से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म में मौसम, प्रेम और संगीत का कितना खूबसूरत संगम रहा होगा। जी हाँ, उस दौर की फिल्म थी ही ऐसी। और सच में, और क्या कोई ऐसा गीत है जिसे सुनते ही आपको अपनी कोई ख़ास याद आ जाती है? तो हमें ज़रूर बताइएगा, और इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनिए ये गीत।

जी हाँ, और इसी खूबसूरत एहसास के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, यानी अपनी होस्ट सिमरन कौर को, और फिर मिलेंगे एक और पुरानी फिल्म, एक पुरानी कहानी और कुछ मीठी यादों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: 2020 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव के साथ बातचीत की है। वजीर आजम मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में पीएम स्वनिधि योजना के जरिए ख्वातीन को बाइख्तियार बनाए जाने को उजागर करते हुए कहा कि मजकूरा स्कीम से 35 लाख ख्वातीन को फायदा हो रहा है। वजीर आजम ने सैटेलाइट तकनीक सीखने और इख्तरा के शोबे में आगे बढ़ने के लिए 108 मुल्कों की 12,000 लड़कियों के लिए एक प्लेटफॉर्म मिशन शक्ति सेट को उजागर किया। जनाब मोदी ने नौजवानों मौसीकारों और कंटेंट क्रिएटर से अपील की कि वो नशा मुक्त भारत मुहिम के लिए जिंगल्स नारे और प्रोग्राम तैयार करें। वजीर आजम ने कहा कि पूरे मुल्क में ये मुहिम जोर पकड़ रही है। नेपाल में अचानक सैलाब से मरने वालों की तादाद 734 तक पहुंच गई है। तकरीबन 2,500 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने नेपाल के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 11 टन इमदादी सामान के साथ बजरिए तैयारा चौथी खेप भेजी है। उड़ीसा में बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया गया है और आज शाम बेल्जियम में मर्दों के FIH हॉकी वर्ल्ड कप के फाइनल में मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव के साथ दो तरफा बातचीत की है। सदारती महल में होने वाली इस बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक का जायजा लिया। इनमें तजारत, सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल कनेक्टिविटी, तवानाई, तालीम और अवाम से अवाम के राबते शामिल हैं। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक योग प्रोग्राम में शिरकत की जिसका एहतमाम उज़्बेकिस्तान की योग फेडरेशन ने किया था। इसके बाद जनाब मोदी सदारती महल पहुंचे जहां उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव ने बाज़ाब्ता तौर पर उनका इस्तकबाल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा मुहिम पूरे मुल्क में तेजी के साथ रफ्तार पकड़ रही है। आज आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि नौजवानों को मुनशियात से दूर रखने और मुल्क से मुनशियात के खात्मे के मकसद से शुरू की गई ये मुहिम कोई सतही प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग, खासतौर पर नौजवान, बड़ी तादाद में इसमें शामिल हो रहे हैं।
2: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है।
1: वजीर आजम ने कहा कि मुनशियात की लानत महज फर्द वाहिद को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि पूरे कुंबे और मुआशरे को इसके मुजमरात का सामना करना पड़ता है। जनाब मोदी ने लोगों से कहा कि वो मुल्क से मुनशियात के खात्मे के लिए बाअसर नारा तैयार करें, जबकि नौजवान मौसीकार ऐसे नगमे मुरतब करें जो मुनशियात से पाक जिंदगी गुजारने के पैगाम की तशहीर करें।
2: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं, कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: वजीर आजम ने कहा कि लाखों ख्वातीन को पीएम स्वनिधि योजना से नई कुव्वत मिल रही है। उन्होंने कहा कि ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के इस पहलू पर उतनी बात नहीं की जाती जितनी की होनी चाहिए थी। जनाब मोदी ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना से मुस्तफीद होने वालों में तकरीबन 46% ख्वातीन हैं।
2: पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी

0: देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: जनाब मोदी ने कहा कि आज मुल्क की बेटियों के ख्वाबों की उड़ान जमीन से लेकर बाहरी खला तक पहुंच रही है। वजीर आजम ने कहा कि भारत दुनिया भर से उन हजारों बेटियों को एक साथ ला रहा है जो इस तरह के ख्वाब रखती हैं। जनाब मोदी ने कहा कि मस्कुरा पहल को मिशन शक्ति सेट का नाम दिया गया है और इसके जरिए 108 मुल्कों की 12,000 लड़कियों को इख्तरा के शोबे में सैटेलाइट तकनीक सीखने का मौका मिल रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे त्यौहार और तकरीबात सिर्फ रवायात को बरकरार रखने के लिए नहीं बल्कि इनसे एक दूसरे के साथ मुंसलिक होने का मौका भी मिलता है। जनाब मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में मुल्क में जन्माष्टमी और विश्वकर्मा पूजा जैसे कई और बड़े त्यौहार मनाए जाएंगे। कुछ ही माह में दीपावली भी आने वाली है और इसके लिए तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं। जनाब मोदी ने लोगों पर जोर दिया कि वो त्यौहारों के इस सीजन में वोकल फॉर लोकल पर तवज्जो मरकूज करें।
0: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वस्ती नेपाल में अचानक सैलाब आने से मरने वालों की तादाद 734 तक पहुंच गई है। वहां मजीद लाशें मिली हैं। तकरीबन 2,500 अफराद अब भी लापता हैं। इमदादी कारकुन इस सानहे के आज पांचवें दिन लापता होने वाले अफराद को तलाश करने और वहां फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए सख्त जद्दोजहद कर रहे हैं। इधर वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में अचानक सैलाब आने के बाद से अब तक 108 भारतीय शहरियों को बचाया गया है। भारत से 11 टन इमदादी सामान लेकर चौथी परवाज काठमांडू में उतरी और ये इमदादी सामान नेपाल सरकार के हवाले कर दिया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि नेपाल में जारी बचाव और राहत कार्रवाइयों में मुआवनत के लिए ज़रूरी रसद और तकनीकी साजो सामान के साथ ये परवाज वहाँ पहुँची है। शुमाली उड़ीसा में फिर से सैलाब का खतरा पैदा हो रहा है। लगातार बारिश होने के तनाजुर में बालासोर में स्वर्ण रेखा दरिया में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। शुमाल मगरबी खलीज बंगाल और इससे मुत्तसिल मगरबी बंगाल शुमाली उड़ीसा के साहली इलाकों पर हवा के कम दबाव का हल्का बनने के जेरे असर बारिश का जोर बढ़ गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज और कल उड़ीसा में इंतहाई शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख माडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें प्रोग्राम में हिस्सा लिया जो खेलों के कौमी दिन से मुंसलिक एक खसूसी प्रोग्राम भी था। ब्रिक्स के इश्तराक से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका एहतमाम किया गया। मीडिया से बात करते हुए जनाब माडविया ने कहा कि साइकिलिंग लोगों में काफ़ी मकबूल हो गई है। इसकी अहमियत को उजागर करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि ये एक उम्दा वर्जिश है और फिजाई आलूदगी से पाक माहौल कायम करने नीस ट्रैफिक की भीड़भाड़ को कम करने का एक मौसर हल भी है। आज शाम बेल्जियम में मर्दों के FIH हॉकी वर्ल्ड कप के फाइनल में मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। ख्वातीन क्रिकेट में आज दुबई में T20 एशिया कप में भारत थाईलैंड के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव के साथ बातचीत की है। वजीर आजम मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में पीएम स्वनिधि योजना के जरिए ख्वातीन को बाइख्तियार बनाए जाने को उजागर करते हुए कहा कि मस्कूरा स्कीम से 35 लाख ख्वातीन को फायदा हो रहा है। वजीर आजम ने सैटेलाइट तकनीक सीखने और इख्तरा के शोबे में आगे बढ़ने के लिए 108 मुल्कों की 12,000 लड़कियों के लिए एक प्लेटफॉर्म मिशन शक्ति सेट को उजागर किया। जनाब मोदी ने नौजवानों, मौसीकारों और कंटेंट क्रिएटर से अपील की कि वो नशा मुक्त भारत मुहिम के लिए जिंगल्स, नारे

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा रहे हैं। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच सहयोग के सभी स्तरों की समीक्षा के लिए विदेश मंत्रियों की समन्वय समिति का गठन किया जाएगा।
1: हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे।
0: ताशकंद में प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी की 15वीं वर्षगांठ और उज्बेकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की 35वीं वर्षगांठ के सहयोग पर भी खुशी व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश इस वर्ष सामरिक भागीदारी की 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। मुझे खुशी है इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने जा रहे हैं। हम इसके अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा

0: कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: श्री मोदी ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
0: उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है, बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे, एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगस्त का महीना अपने साथ देशभक्ति की कई रंग लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया है।
0: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई। इस साल सूर्य पथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक तिरंगा लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं।
1: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया।
0: आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया।
0: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2500 लोग अब भी लापता हैं। आपदा के 5वें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान आज नेपाल पहुंचा। एक रिपोर्ट।
3: बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटेकाशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। भोटेकाशी नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 275 भारतीय और अन्य देशों के भारतीय मूल के 128 लोग भी लापता हैं। वहीं चीन में 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पेइचिंग भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार प्रभावित लोगों के शीघ्र बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत से 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी थी। समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
1: उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये वर्षा तेज हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है।
4: बालेश्वर जिले में बाढ़ का नया खतरा पैदा हो रहा है क्योंकि लगातार बारिश के बीच सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार राजघाट पर नदी का जलस्तर 8.84 मीटर था, जबकि इसका खतरे का निशान 10.36 मीटर है। झारखंड में गुलडीह बैरेज के 6 गेट खोल

0: दिए गए हैं, जिससे नदी का जलस्तर और बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। जलेश्वर, भोगराई और बालियापाल के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ सकती है। आईएमडी का कहना है कि अगले 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम के और मजबूत होने और पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: ये आकाशवाणी है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। जर्मनी की टीम 2023 में जीती अपनी ट्रॉफी को बरकरार रखते हुए चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी। वहीं स्पेन अपना पहला हॉकी विश्व कप खिताब जीतने की कोशिश करेगा। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मानधना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीम है। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के बीच लोकप्रिय हो गया है। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि सरदार हुकुम सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ और उत्कृष्ट वक्ता थे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि विश्वसनीयता पत्रकारिता का मुख्य नैतिक मूल्य है। उन्होंने आज केरलम के अलप्पुरा में दैनिक केरल कौमुदी की 115वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने नैतिकता का उल्लंघन किए बिना एक सदी से अधिक समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवा करने के लिए केरल कौमुदी को बधाई भी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। देश भर के 18 परिसरों के स्नातक छात्र इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उपभोक्ता कार्य विभाग ने कानूनी मापन भारतीय मानक समय नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों के अनुसार भारतीय मानक समय को देश में कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए एक समान समय संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा। ये नियम राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से 180 दिन में लागू होंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बहुत कम ब्याज दर पर ऋण देने वाले दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य इकाई ने बताया कि यह पत्र फर्जी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने PM स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्यूरेटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो घड़ी में समय हुआ है 2:30। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। एक ही कलाकार कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं लेखन की दुनिया में, या यूं कहें कि गीत लिखने की दुनिया में बेताज बादशाह, जिसे हम कह सकते हैं, और उनका नाम है शैलेंद्र। एक ऐसा नाम जिसकी कलम से निकले शब्दों ने भारतीय सिनेमा के संगीत को वो रूह दी जो आज भी हमारे दिलों में बसती है। जब हम उनकी फिल्मी सफर को याद करते हैं और उन पन्नों को पलटते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हर मोड़ पर उनका कोई अमर गीत हमारा हाथ थाम लेता है। शैलेंद्र साहब का सफर उस समय शुरू हुआ जब राज कपूर साहब ने एक कवि सम्मेलन में उनकी कविता जलता पंजाब सुनी। राज कपूर ने उनके शब्दों की धार से जब उनके भाव को समझा तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी फिल्म में गीत लिखने के लिए शैलेंद्र को न्योता दिया। शैलेंद्र साहब ने अपनी सादगी और गहराई से बुनी अपनी कलम को जब सिनेमा का सहारा बनाया तो पहला ही नगमा एक अमर दर्शन बन गया। फिल्म थी आवारा और इस फिल्म में जो गीत लिखा गया वो आज भी श्रोताओं के दिलों में बसा हुआ है।

श्रोताओं, इस गीत ने भटके हुए नौजवानों की व्यथा कही, बल्कि शैलेंद्र को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई। जैसे जैसे उनका सफर आगे बढ़ा, शैलेंद्र ने आम आदमी के संघर्ष और उनकी मासूम खुशियों को अपनी लिखावट का केंद्र बनाया। जीवन में जितनी भी तंगी और गम क्यों ना हो, मुस्कुराते रहने का जो हौसला उन्होंने दिया, वो था मेरा जूता है जापानी। फिल्म थी श्री 420।

मेरा जूता है जापानी। श्रोताओं, ये गीत सिर्फ एक धुन नहीं बल्कि भारतीय स्वाभिमान और फकीराना अंदाज का प्रतीक बन गया। शैलेंद्र साहब की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो दर्शन को बहुत ही सरल शब्दों में पिरोते थे। जीवन की आपाधापी, झूठे रिश्तों और दुनिया की बेवफाई के बीच जब कोई थक जाए तो उनकी कलम से निकला ये गीत हमें जीवन की राह दिखाता है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार।

किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। श्रोताओं, इस गीत ने सिखाया है कि दूसरों के दुखों को बांटना ही असली जीना है। प्रेम की गलियों में भी शैलेंद्र का कोई सानी नहीं था। जब रात की खामोशी में प्यार की पहली दस्तक होती है तो उनके शब्द किसी हल्की फुहार की तरह दिल को गुनगुनाने लगते हैं।

ये रात भीगी भीगी, इस गीत में जो रूहानी कशिश थी उसने शैलेंद्र को हर आशिक के दिल की आवाज बना दिया। हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आप सभी जानते हैं हम बात कर रहे हैं महान गीतकार शैलेंद्र साहब की। श्रोताओं, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं और आप भी इस कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। इसके लिए आपको हमें ईमेल करना होगा। हमारा ईमेल आईडी है iprradiodelhi@gmail.com। जी हाँ, iprradiodelhi@gmail.com।

श्रोताओं, गीतकार के रूप में अपार सफलता पाने के बाद शैलेंद्र ने अपनी रूह को सिनेमा के पर्दे पर उतारने का फैसला किया। उन्होंने फिल्म बनाने का जोखिम उठाया और बतौर निर्माता मैदान में उतरे। इस सफर की खूबसूरत और दर्द भरी झलक हमें उनके विचारशील इस गीत में मिलती है। फिल्म थी तीसरी कसम और इस गीत के बोल थे, आप खुद ही सुनिए।

सज्जन रे झूठ मत बोलो। श्रोताओं, फिल्म तीसरी कसम एक फिल्म नहीं थी बल्कि शैलेंद्र की आत्मा का कलात्मक निचोड़ थी। हालांकि तीसरी कसम के निर्माण के दौरान उन्हें बहुत सी आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, दुनियादारी के इस कठोर ताने बाने ने उनके दिल को छलनी कर दिया। लेकिन एक सच्चे कलाकार की तरह उनका विद्रोही और बेपरवाह स्वभाव कभी नहीं बदला। उनका ये जज्बा इस नगमे में साफ झलकता है। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी।

सच में श्रोताओं, शैलेंद्र साहब ने दुनियादारी नहीं सीखी बल्कि चालाकियों से हमेशा दूर रहे और अपनी गीत में मगन रहे। जीवन के आखिरी पड़ाव पर जब उनका शरीर साथ छोड़ रहा था, तब भी उन्होंने अपने गीतों के जरिए दुनिया को अलविदा कहने का सबसे हसीन और अमर तरीका चुना, अपनी लेखनी। जीना यहां, मरना यहां। भले ही ये गीत उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुआ हो, लेकिन इसके एक एक शब्द में शैलेंद्र का पूरा जीवन सिमटा हुआ था। एक ऐसा कलाकार जिसने अपना सब कुछ मंच पर अपने श्रोताओं के नाम समर्पित कर दिया। शैलेंद्र आज शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब भी रेडियो पर कोई सदाबहार नगमा बजता है और वो नगमा दिल को छू लेता है, तो लगता है कवि शैलेंद्र अपनी कलम से एक बार फिर मुस्कुरा रहे हैं।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम एक एक कलाकार, जिसमें हम महान गीतकार शैलेन साहब का जिक्र कर रहे थे, अब संपन्न होता है। आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।

0: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को वंदना जोहरी को
1: और वंदना को
0: प्रेम भरो अभिवंदन।
1: वंदना सखी, देखो भादो मास को प्रमुख त्योहार है।

0: सिगरे ब्रज को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और याके काजे तैयारी अभी ते है रही है। और सखी हम ब्रजवासिन के काजे तो जन्माष्टमी को त्योहार बहुत महत्व राख है।
1: बिल्कुल सही कह रही हो बहना। ब्रज शिरोमणि श्री कृष्ण ने ब्रज में जन्म लेके हम सभी ब्रजवासिन को धन्य कर दियो है। जब श्री कृष्ण मथुरा ते गोकुल पहुंचाए गए बहना, तो नंद बाबा ने कृष्ण जन्माष्टमी को उत्सव कई दिनांत तक मनायो।
0: सखी कहे हैं कि रोहिणी नक्षत्र में जन्मे श्री कृष्ण जन्मते ही अद्भुत बालक हते।
1: बिल्कुल, 64 कलांते परिपूर्ण बालक अद्भुत तो होइगो ही बहना।
0: और सखी बिनकी सभी लीला संदेश वाहक बनी।
1: बिल्कुल, धर्म की गहराई और ऊंचाई पे है के हूँ, बिन्ने जीवन को खुल के जियो।
0: मतलब सांसारिक है के वो योगी हते।
1: बिल्कुल, वे गीता जैसे ग्रंथ को रच के दुनिया के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक बने और राजनीति को अध्यात्म ते जोड़ के दोष रहित बनायो।
0: हाँ सखी, जो विषय दर्शन आध्यात्म से जुड़ जाए वो दोष रहित है जाए, बिन के जीवन की हर अवस्था शिक्षा प्रद है।
1: हाँ और का, बिनकी बाल लीलान में ऐसो लगे है जैसे प्रकृति की सबरी चंचलता बिनन ने अपने अंदर समेट ली हुई।
0: और सखी, मित्रता में बिन के जैसो कोई सानी नायब है। सुदामा और कृष्ण की मित्रता तो उदाहरण बन गई।
1: और का, अहिंसक चित्त करुणा के सागर है के हूँ महाभारत के रचयिता भई, क्योंकि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध खड़े है न हो धर्म होए, वे पूर्ण है निर्लिप्त है, वे अतीत में हूँ हते और वर्तमान में हूँ हमारे ही में बसे हैं छोटे से नंदलाला लड्डू गोपाला बन के।
0: सखी, बिन के भोलेपन में ही तो चंचलता छिपी ही। सुनो जब भजन को अनूप जरोटा के स्वर में।

0: मैं तुम्हारा इशारों समझ रही हूँ बहना। मतलब ये है कि आज हम एक नई नाटिका सुनवाई जा रहे हैं मैडम जी को ब्लड प्रेशर।
1: हाँ पकड़ ली बात तुमने। तो आओ श्रोताओ, आनंद लियो या हास्य नाटिका को।
0: ब्रजमाधुरी में प्रस्तुत है रेडियो हास्य नाटक मैडम जी को ब्लड प्रेशर, या के लेखक हैं राजेश श्रीवास्तव।

0: देखो सखी, तुमने कही ना कि वे सांसारिक है के वो योगी है,
1: हाँ
0: और जीवन को बिन्ने खुल के जियो। और यही ते जे समझ में आए है कि भले ही समस्याएं जीवन में कितनी होए, पर हम सबको व्यथित ना रहना चाहिए, बल्कि शांत मन ते बाकू सुलझाना चाहिए। ना तो बिन बात ब्लड प्रेशर हाई है जाएगा, और दिल की बीमारी पाल लेंगे।

0: में मिलेंगे, बन के महक तुझे गुलाबों में मिलेंगे। खुद को कभी अकेला मत समझना, हम तुझे तेरे दिल या ख्वाबों में मिलेंगे।
1: ओ तेरी बाकी अदा पे मैं खुद हूँ फिदा, अपनी चाहत का दिलबर बयां क्या करूँ, यही ख्वाब।

0: अरे चंद्र प्रकाश जी, ओ चंद्र प्रकाश जी।
1: हाँ बोलो मदनलाल जी।
0: अरे मैडम जी आ गई हैं का?
1: अबे नाया आई
0: तो ठीक है, मैं न्यो कह रहा हूं कि मैं नेक हवा लेके आऊं। मैडम जी अगर पूछें तो कह दीजो।
1: आओ, पर जल्दी आ जाइयो, नाए तो यहीं पर छोड़ के जाएंगे तुम्हें।
0: ऐसा मजाक काहे को कर रहे हो?
1: मजाक नहीं कर रहे, पर जल्दी आ जाइयो, नहीं
0: अरे
1: तो
0: नाए तो बस यो गए और यो आयो।
1: चलो ठीक है, गो एंड गॉन।
0: ओके।
2: अरे अंज, सबरी लठिया आ गई।
0: हाँ आए गई।
2: शकील,
0: आप उसका भैया बोलो।
2: सबरे गांव बारिन की कॉस्ट्यूम है गई पूरी।
0: भैया दो लोगन की रह गई हैं, वो छिद्दा लाल लेके आवेंगे।
2: अच्छा चल ठीक है, पर ध्यान रखियो कहीं ऐसा ना है जाए कि गांव बारे सबरे दिल्ली पहुंच गए और बिन की कॉस्ट्यूम नहीं बक्सा में बैठी डांस करती रह जाए। धनचिक धनचिक,
0: ए नाय पुष्कर भैया, ऐसा कैसे है जाएगो?
2: देख तेरी जिम्मेवारी है, मैडम जी आवे बारी है।
0: ए पुष्कर भैया, तुम चिंता मती ना करो, छिद्दा भैया ने कह दई है तो जरूर लेके आएंगे।
2: चल ठीक है, पर एक बार सबरे आर्टिस्टन की कॉस्ट्यूम चेक कर लियो।
0: आओ कर लूंगो।
1: राधे राधे सब भैयन को।
0: अरे लो छिद्दा भैया भी आए गए। अरे छिद्दा भैया गांव वारन की कॉस्ट्यूम ले आए।
1: आओ भैया ले आयो।
0: बहुत बढ़िया, लाओ जमा कराए दो।
1: जे लियो तुम्हारे गाम बारंगी कॉस्ट्यूम।
2: जाय के में है जिम्मेवारी। बेटा सीख ले, नाटक जिम्मेवारी लेना भी सिखावे है। समझ गया सब छोरा?
3: राधे राधे, जय श्री कृष्णा सबन को।
4: राधे
0: राधे
4: राधे
0: राधे
4: मैडम
0: राधे
4: जी, जय
0: राधे
4: श्री
0: राधे, जय श्री
4: कृष्णा।
3: जय श्री कृष्णा। अरे वाह, आज तो सभी लोग पूरी तैयारी के संग यहाँ पे मौजूद हैं। छिंदालाल जी, आपको नक्कारो आए गए हो
2: जी मैडम जी आए गए हो।
3: और मदनलाल जी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं?
2: वो आवे ही बारे हैं, बिन की सहनाई को उनते ही कोई मांग के ले गए हो तो अवाई तक ना दे भाई, भाई ले भी गए बस।
3: ओहो, और ये हरि भजन कहाँ है?
5: मैडम जी वो पीतर प्रॉपर्टी वारेन के संग बिन की हेल्प करा रहे हो।
3: अच्छा ठीक है। और चमन भाई ना दिखाई दे रहे?
0: मैडम जी वो अंदर हॉल में गायकी की रिहर्सल कराए रहे हैं।
3: अच्छा, रावत जी, शर्मा जी, किशन पाल, माधुरी, मिथिलेश, आरती, ये सब लोग अंदर ही है ना?
2: जी जी मैडम जी।
3: अच्छा देखो, आज अभी फुल रिहर्सल के बाद अपने अपने घर को निकल जाइए और कल सुबह ठीक 6 बजे सभी लोग यहाँ मौजूद चाहिए, क्योंकि हम यहाँ से ठीक 6:30 बजे तक बस से दिल्ली को प्रस्थान करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड?
4: जी मैडम
0: जी।
3: वेरी गुड। देखो लंच से पहले हम सब वहां पहुंच जाएंगे और शाम को वहां एक बहुत ही प्रतिष्ठित ऑडियंस के बीच आप लोगों को अपना शो परफॉर्म करना
2: जी
3: है
2: जी
3: ना?
2: जी जी
3: अब चूंकि हम सब ब्रज वाले हैं तो जाले ही ब्रज की लोक कला से सजे हमारे कार्यक्रम को लेके लोगन में बहुत उत्सुकता है, इसीलिए हमें अपनो द बेस्ट देना है। इज इट क्लियर? सभी समझ गए?
4: बिल्कुल बिल्कुल।
3: और राजीव भाई, राजीव भाई दिखाई नहीं दे रहे?
6: जी मैडम।
3: राजीव भाई आप उधर पीछे क्यों बैठे हैं, आगे आइए ना। राजीव भाई आप इन सब के इंचार्ज हैं,

0: आज एक रिहर्सल करावे के बाद कल सुबह सकुशल इन सबन को लेकर दिल्ली पहुंचावे की जिम्मेदारी आप पर है।
1: आप चिंता मत करो मैडम, सब कछु बहुत अच्छो है जाएगो।
0: ओके गुड, वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट आवर रिहर्सल। ओके चलें हम सभी।
2: जी मैडम, चलिए चलिए
3: मैडम, चलिए।
0: बोल श्री बांके बिहारी लाल की
4: जय।
5: जो ना बोले बामे
4: दे,
6: और लड्डू चार कचौड़ी छह।

0: और भैया मदन लाल, क्या हाल चाल है?
1: वही हड्डी वही खाल है।
0: अच्छा, चल बढ़िया है भैया। पर ये हड्डी और यही खाल रखियो, बदल मत दियो।
1: ए ना है, बदलूंगो ना है।
0: यार ये सड़क तो बहुत बढ़िया बना दई है, और ये बसऊ बहुत बढ़िया है, मस्त है एकदम।
1: हम्बे ने कुछ को लो ना आए रे, मक्खन सी जा रही है बस।
0: बेटा पैसा खर्च में तभी जामे मजा आए रो है, समझ गो।
1: हम्बे सो तो है चिद्दा भैया।
0: दिल्ली आवे ही बारी है।
1: ठीक है भैया, जय गोपाल की, जय गोपाल की।
0: वाह, क्या शानदार होटल है। अरे भैया, मैडम जी ने तो बहुत बढ़िया इंतजाम कर रखे है।
2: अरे मैडम जी के तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क आते हैं, पता है।
3: अरे मैडम जी तो बहुत बड़ी कलाकार हैं, सब इनकी बहुत इज्जत कर रहे हैं।
2: भैया जय मारे तो कलाकारन की कदर कर रहे हैं। अब देखो ना, एक बढ़िया होटल में ठहरवे की व्यवस्था करी है हम लोगों की।
3: कछु भी कहो, मजा आ जाएगा जावार की ट्रिप में।
2: बिल्कुल, जीवारी ट्रिप तो याद रहेगी।
3: अरे शकील, बस में ते प्रॉपर्टी को सारा सामान उतार लियो।
4: हाँ पुष्कर भैया, ले लियो। अंज और मनमोहन पीछे लेके आ रहे हैं।
3: ठीक है, कॉस्ट्यूम सबन की चेक कर लियो।
4: ठीक है, कर लूंगा।
5: फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री।
6: या यस, आई नो इट्स।
7: राधे राधे बहन जी।
8: नमस्कार। राधे राधे। होटल के रिसेप्शन काउंटर पर आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ।
7: बहन जी, यहाँ पे बहुत सारे लोग इधर उधर घूमते हुए दिख रहे हैं, पर हमारी मैडम जी ना दिखाई पड़ रही। मुझे शिवानी मैडम जी से मिलना है।
8: अच्छा, मैडम शिवानी श्रीधर जी से।
7: मैं बहन जी।
8: मैडम शिवानी जी वो सामने खड़ी हुई हैं, आप उनसे वहां जाकर मिल लीजिए।
7: ठीक है बहन जी, थैंक यू। राधे राधे।
8: वेलकम। राधे राधे।
7: शिवानी मैडम जी,
9: क्लोजर टू एज मेनी पीपल।
7: शिवानी मैडम जी,
9: सो दैट
7: मैडम जी, शिवानी मैडम जी।
9: एक्सक्यूज मी सर, आई एम जस्ट कमिंग।
10: मदन जी, क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों हैं आप, क्या हुआ?
7: अरे मैडम जी, नेक मेरे संग मेरी कमरा में चलो।
10: अरे अरे अरे मदन जी, मेरा हाथ पकड़कर कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे?
7: अरे मैडम जी, आप नग मेरे संग मेरी कमरा में तो चलो, फिर देखियो आप का गजब है वजह होटल में।
10: ऐसा भी क्या गजब हो गया है होटल में भाई, जरा मुझे मालूम तो पड़े।
7: मैडम जी, जा होटल के कमरा में एक पोखर है।
10: क्या पोखर? आपका मतलब है कि गांव में जो एक छोटा सा तालाब होता है वो?
7: मैं मैडम जी बोई, और जा बजे थे हमारे कमरा में भैंसिया आ जाएगी।
10: क्या मदन जी, भैंसिया और यहाँ?
7: मैं मैडम जी आप तो जानो ही हो कि अगर भैंसिया को कहीं पे पोखर दिख गई ना, तो समझो कि गई भैंस पानी में।
10: मदन जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मदन जी आपने यहाँ पे ऐसा का देख लिया है? चलो देखते हैं अब का है गो यहाँ। बताइए कौन सा है आपका कमरा?
7: मैडम जी मोई तो जी वारी गैल लगे कमरा वारी, पता ही ना पर रो मैं कितमऊ से आया हूँ, कितमऊ जाऊंगो, मेरी कमरा वारी गैल कितकू चली गई।
10: अच्छा पहले आप मुझे अपना रूम नंबर बताइए।
7: मैडम जी कमरा को नंबर तो ध्यान है मुकू, हाँ क्योंकि वहां में कानूनी धारा लगी भई है ना।
10: कानूनी धारा?
7: हाँ, धारा 302 जी है मेरे कमरा का नंबर।
10: ओके आइए अभी देखते हैं। ये वाला है रूम नंबर 306543, और ये रहा आपका रूम नंबर 302, यही है ना?
7: हाँ मैडम जी, जी है जी है।
10: आइए चलते हैं कमरे के अंदर, चलिए दिखाइए।
7: देखो मैडम जी, जा तरफ देखो, मैं जब पर्दा को हटाए रहा हूँ, और जैसे ही पर्दा हटेगा तो मैं बाकी पीछे सब दिख जाएगा पोखर।
10: चलिए हटाइए पर्दा, देखते हैं।
7: देखो

0: Gira o poker. का बे ओ मदन जी, आपने जोर जोर से काय को हंस रही हो, का बात है
1: मदन
0: जी?
1: जी, आप भी कमाल के व्यक्ति हैं। आप भी ना वास्तव में बहुत भोले हैं, बहुत फनी हैं आप। अरे ये पोखर नहीं है, ये बाथिंग टब है मदन जी। ये ना सभी अच्छे बड़े होटल्स में होता है। और ये बाथरूम यानी कि स्नान घर का एक हिस्सा है, लोग इसमें नहाते हैं।
0: मैडम जी, हमारे गांव में तो जाए पोखर कह में और जहां में भैंसिया नाम है, जाए लिए मैं डरब गयो।
1: इट्स ओके। अब आप ना नै को चिंता मत ही करो, और जल्दी तक नहाए धोए के तैयार है कि आ जाओ नीचे। मदन जी, संजा को आप है बढ़िया सो शो करनो है, ठीक है? अब मैं चलू हूँ। ओके, आ जाइयो जल्दी।
0: जी मैडम जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे
1: राधे राधे मदन
0: राधे
1: जी।
0: राधे। हे गोपाल जी, अब ये जिंदगी में और कहाँ कहाँ देखना पड़ेगा। जय हो बंसीवाली। अरे किशन पाल या मैडम जी, कार में बैठ के काय को हंस रहे हो भाई, इतनी कहावत है गई।
2: अरे बदल जे देख, का बढ़िया चटकुल्ला आयो जा मोबाइल में।
0: अबे कौन सा चटकुल्ला, मोई भी तो बता।
2: दो छोरी एक बस में सीट पे बैठे हुए कुछ झगड़ रही थी, तभी वहां पे बस को कंडक्टर आयो और छोरी ने बोलो, अरे लड़ो मत, जो छोरी उम्र में बड़ी हो वो बैठ जाए बस। फिर कहा तो पूरा रास्ता दोनों छोरी खड़ी खड़ी चली गई, दोनों में तो एक और सीट पे ना बैठी। अरे
0: वाह
2: मदन,
0: भैया,
2: तू जा बखन यहाँ पे क्या कर रहा, तो रिहर्सल में होना चाहिए।
0: अरे हाँ किशन, याद आ गई, मोई मैडम जी ने यहाँ तेरे पास गाड़ी पे भेजो है।
2: मेरे पास क्यों भाई?
0: मैडम जी को ब्लड प्रेशर जा गाड़ी में हते, वो मुंह दे दे।
2: कहा मैडम जी को ब्लड प्रेशर?
0: मैं लाला, अबे
2: मदन को मतलब मैडम जी को फिर से ब्लड प्रेशर है को?
0: मतवल
2: अरे लाला तू ना जाने, मैडम जी को ब्लड प्रेशर की शिकायत हते, इनकी तबीयत बिगड़ जाए है, लगे बिनकू फिर से ब्लड प्रेशर है को। लाला मदन, अब अगर बिन की तबीयत ठीक ना है भाई, तो शाम को हमारे प्रोग्राम को कहा हो बेगो।
0: भाई जी, तो बहुत चिंता वाली बात है गई, अब हमें क्या करना चाहिए भाई?
2: लाला हमें फौरन ही काऊ डॉक्टर को लेके तुरंत मैडम जी के पास पहुंचना चाहिए।
0: मैं लाला जी ठीक रहेगा, चल चल फटाफट चल, तू डॉक्टर लेके आमे और मैडम जी को दिखामे।
2: जल्दी चल, आ जा, चल चल आ जा,
0: चल चल।
3: डॉक्टर साहब, राम राम।
4: राम राम, राम। आइए श्रीमान, बताइए क्या है काम।
3: डॉक्टर साहब, हम लोग कलाकार हैं, बाहर के रहवे बारे हते, जहाँ शहर में प्रोग्राम करवे को आए।
4: कौन हैं आप दोनों महानुभाव, कृपया पहले अपना परिचय दें।
3: डॉक्टर साहब, मैं हूँ किशनपाल और जी है मदन लाल। हम लोग संगीत नाटक मंडी के हैं कलाकार।
4: किशनपाल मदन लाल, कितनी प्यारी जोड़ी है, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। मगर जो कहना है गा कर कहिए।
3: अच्छा डॉक्टर साहब, लाला मदन
0: हाँ?
3: चल है जा शुरू।

0: हमरी रेस्पेक्टेड मैडम जी है गई हैं बीमार, अरे है गई हैं बीमार, झट से अपनो बैग उठाओ और लेके अपनो आला हमरे पीछे पीछे।
1: बस बस बस, म्यूजिक ओवर हो रहा है, कहाँ है पेशेंट, जल्दी बुलाओ।
2: डॉक्टर साहब, बाकी लिए तो आपको हमारे संग चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मैडम जी की तबीयत ठीक ना है, बिल्कुल ब्लड प्रेशर है गो है। अब जालिए मैडम जी तो अपने कमरा में ही है।
1: ओहो, ब्लड प्रेशर, ये तो बहुत ही खौफनाक बीमारी है, मुझे जल्दी से पेशेंट के पास पहुंचना चाहिए, आप दोनों जल्दी मेरे साथ आइए।
2: आ जाओ डॉक्टर साहब।
1: ये पकड़ो मेरा बैग, ये पकड़ो मेरा आला, मेरे पीछे पीछे चले आओ, दुखियारी है कोई बाला।
2: इलाज करवा लो, इलाज इवन वाला डॉक्टर लाए हैं, बढ़िया वाला।
1: फुटेज मत खाओ, मेरे पीछे चले आओ, शीघ्र चले आओ मेरे चुनमनो, दुखियारी है कोई बाला।
3: आओ डॉक्टर साहब, ना जल्दी जल्दी आओ।
2: जे देखो डॉक्टर साहब, जे देखो, जे रही हमारी मैडम जी।
1: ओके, मैं अभी देखता हूँ।
4: अरे मदन, किशन, क्या हो गया, इतने घबराए हुए से क्यों हो, और ये साहब कौन है?
3: मैडम जी, जे
1: मैडम, मैं आपको परिचय अपना खुद दे देता हूँ, मैं हूँ डॉक्टर SS खुराना, ये दोनों आपके शुभ चिंतक सहकर्मी मेरे पास मेरे क्लिनिक पर आए थे।
4: हुँ?
1: और इन्होंने मुझे बताया आपकी तबीयत ठीक नहीं है।
4: What?
1: और इनके अनुसार आपका ब्लड प्रेशर बिगड़ गया है।
4: क्या?
1: इनकी वरीज यानी चिंता और आकुलता को हास परिहास के द्वारा थोड़ा कम करते हुए और स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए मैं बिना समय गवाए इन लोगों के साथ तुरंत चला आया। अब आप बताइए अपनी तबीयत के बारे में, आपका ब्लड प्रेशर कैसा है?
4: What? मेरा ब्लड प्रेशर? ओह नो डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए फिट हूँ, फाइन हूँ, भला मुझे क्या हुआ है। बट एनीवे, आप एक पेशेंट के बारे में सोचकर तुरंत यहाँ चले आए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ।
1: यू आर मोस्ट वेलकम।
4: और रही बात मेरी तबीयत की, तो मदन किशन, तुमसे कौन ने कही कि मेरा ब्लड प्रेशर बिगड़ गया?
2: मैडम जी, मेरे पास तो जी मदन आयो और आए के मुँह तो बोलो कि मैडम जी ने मुझे कही है कि मेरे गाड़ी में ब्लड प्रेशर रहते है। बाले या?
4: क्या?
2: मैंने समझी कि आपने आते जे कही होगी कि आपको ब्लड प्रेशर बिगड़ गया है।
4: क्या?
2: और आपको गाड़ी में बैठ के इलाज के लिए जानो है। तो हम दोनों ने जे सोची कि अगर मैडम जी आज बीमार पड़ गई तो शाम को हमारा प्रोग्राम कैसे हो भेगो, तो हमने सोची कि क्यों ना हम ही डॉक्टर साहब को मैडम जी के पास ले आवे। बस ये ही सोच के मैडम जी हम दोनों झट थे डॉक्टर साहब के पास चले गए और उन्हें यहाँ फट थे आपके पास ले आए।
4: ओफो मदन जी, फिर से वही नादानी।
3: अब कागज की आ गई मुझे।
4: अरे बाबा, ब्लड नहीं ब्रेड, ब्रेड यानी जिसे आप डबल रोटी कहते हैं। अच्छा। वो ब्रेड।
2: अच्छा।
4: हाँ, और उस ब्रेड पैकेट को मैंने आपसे लाने को कहा था, और माय गॉड मदन जी, चूंकि आपके दिमाग में ब्लड प्रेशर शब्द बैठा हुआ है, इसलिए हुआ क्या कि आप गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते ब्रेड पैकेट शब्द भूल गए, और आपके दिमाग में बैठा ब्लड प्रेशर शब्द आपको याद रहा, और बस इसी के चलते आपने किशन को जाके कह दिया कि मैडम जी को ब्लड प्रेशर गाड़ी में हत है, वाय दे दो, अब समझे। और किशन पाल, तुम भी उसमें शामिल हो गए। राम मिलाए जोड़ी। आई एम रियली वेरी सॉरी डॉक्टर, मेरे लोगों की जरा सी नासमझी से आपको इतना परेशान होना पड़ा।
1: कोई बात
4: डॉक्टर, मैं दिल से आपका धन्यवाद कहती हूँ।
1: कोई बात नहीं
4: मिस जी शिवानी श्रीधर नाम है मेरा।
1: नाइस नेम। ओके शिवानी जी, चलिए कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला।
4: दरअसल डॉक्टर साहब, मेरे ये सभी साथी बहुत अच्छे लोक कलाकार हैं, और ब्रज के ग्रामीण परिवेश का इन पर बहुत प्रभाव रहता है। मगर ये सभी ना, मदन, किशन और अन्य सभी साथी मन के बहुत ही सरल और स्वभाव से बहुत भोले हैं और सच्चे ब्रजवासी हैं, बस कभी कभी छोटी मोटी नादानी कर जाते हैं।
1: इसीलिए ब्रेड को ब्लड और ब्रेड पैकेट को ब्लड प्रेशर बना देते
5: जी। अरे ना मैडम जी, मैं तो देहात को आदमी हतु, कम पढ़ो लिखा हूँ, चाई बजे ते मिस्टेक है जावे। डॉक्टर साहब मोकू माफ कर दो भाई, मैं तो मूल बुद्धि का हतु, आई एम टू सॉरी बेरी साहब। डॉक्टर साहब
1: मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस मेरी फीस चाहिए और फीस में रुपया पैसा नहीं, कुछ गा बजा कर दिखाइए।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात है तो चल ले मदन, है जा शुरू।
5: ठीक है भाई किसान, हवाला।

0: 人打人打打人打人打人打打。
1: What a song! What a sound!
2: वाह वाह मेरे चुनमुनो, इतना प्यारा म्यूजिक सेंस तुमने कहाँ से पाया?
3: ऑनरेबल डॉक्टर साहब, ये सर है ऊपर वाले की माया, उसने ही ये खेल दिखाया, मैडम जी के ब्रेड पैकेट को मैडम जी का ब्लड प्रेशर बनाया।
4: किशन किशन, अरे नाम मत ले दोबारा मैडम जी के ब्लड प्रेशर को, चाहे सुनते ही मेरा बीपी बढ़ जावे।
2: मेरे प्यारे चुन्नू मुन्नू, तुम दोनों का ध्यान किधर है? चिंता की अब कोई बात नहीं, सुंदर टिकाऊ डॉक्टर इधर है, डॉक्टर SSS खुराना।
3: डॉक्टर साहब, ये SSS बोले तो?
2: SSS डॉक्टर शिव शंकर सहाय खुराना। मेरे सामने टिक नहीं

0: अरे वाह भाई डाक साहब, फिर तो जई बात पे सब भैया एक बार प्रेम ते बोलो, बोलो बाके बिहारी लाल की
1: जय।
0: जय।
1: और मदन लाल की पीठ पे धौल दे
0: अरे अरे अरे
1: दे
0: भैया, अरे मारे हो, अरे चौरे किशन, तने मेरी पीठ पर 3 बार चो मारो भाई।
1: देख, पहली धौल जावाद की कि तेरी वजह ते डॉक्टर साहब इतने परेशान भाई कितने,
0: इतेक
1: और दूसरी धौल
0: जे कौन सी बात की भाई,
1: जे जावाद की कि तेने हमारी रेस्पेक्टेड मैडम जी की इंसल्ट करवाई, और तीसरी धौल
0: अब जा मैं कहां बताई।
1: सिर्फ तेरी वजह से मदन लाल मैं भी बुद्धू बन गो, यही लिए तेरी पीठ पे मैंने 3 धौल लगाई।
0: ठीक है बच्चू, अब तू अपने घर जाके देखियो तो ये मारेगी तेरी लुगाई।
1: ना
0: मैडम जी, अब मैं जाके गाड़ी में थे आपको, मेरा मतलब ब्रेड पैकेट ले आऊं था।
2: नहीं मेरे भाई, नहीं, मुझे अब अपना ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाना।
3: वो कहते हैं ना, इफ द एंड इज वेल देन ऑल इज वेल, तो कुछ गाना बजाना हो जाए,
0: हाँ चौना है।
3: आइए।

0: अभी आप रेडियो हास्य नाटक सुन रहे हैं मैडम जी को ब्लड प्रेशर, जाके लेखक है राजेश श्रीवास्तव। कलाकारन को परिचय या प्रकार दे है अनुराग अरोड़ा, उमेश दीक्षित, सविता शर्मा नागर, साजन चतुर्वेदी, आकाश शर्मा, मनोज राठौर, दिनेश दिवाकर, वंदना उमंग, सिद्धांत पावस और प्रतिभा नागपाल। यह हास्य नाटिका को निर्देशन किया हो दक्षपुरी ने।
1: अभियाई के संग आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम यहीं संपन्न हुए है। मोय यानी वंदना जोहरी को
2: और मोय यानी के वंदना को
1: देव अनुमति
2: नमस्कार। कार्यक्रम प्रस्तुत करता
1: विवेक कुमार तोमर।
3: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: दोस्तों, हम डॉक्टर वी आर अम्बेडकर सीएमसी स्कूल सेक्टर 21 रोहिणी के विद्यार्थी हैं। जैसा कि हमने पिछली बार वादा किया था कि हम अगले हफ्ते मिलेंगे, तो अब हम आ गए हैं फिर से आकाशवाणी केंद्र के एफएम गोल्ड चैनल के रेडियो किड्स प्रोग्राम में। मैं हूं अनन्या, आपकी रेडियो दोस्त क्लास 9 से। चलिए मेरे दोस्तों से मिलते हैं।
1: मैं अक्षत कक्षा 8वीं से।
2: मैं सौम्या कक्षा 7वीं से।
3: मैं अक्षिता कक्षा 7वीं से।
4: मैं तन्मय कक्षा 8वीं से।
5: मैं सवरीन कक्षा 8वीं से।
3: आज हम आप सबके साथ ढेर सारी बातें करेंगे और हमारे विद्यालय की म्यूजिक टीम आपको कई कमाल संगीत भी सुनाएंगे। हमारे भारत देश का मतलब है भा से भाव, रा से राग, ता से ताल, यह सबका संगम है हमारा भारत।
1: अच्छा सवरीन, तुम भी तो एक कहानी लाई थी, क्या तुम हमें सुनाना पसंद करोगी?
5: हाँ हाँ, अभी सुनाती हूँ। आज की मेरी कहानी है उस भारत की, जहाँ भाषाएं अनेक हैं, पर दिलों की धड़कन एक है। ईश्वर ने सबसे खूबसूरत चीज पता है क्या बनाई है? एक ऐसा देश जहाँ किसी की पहचान उसकी भाषा से नहीं, उसके दिल से होती है। जहाँ कोई पूछता नहीं तुम कौन हो, बस मुस्कुरा कर कहता है आओ साथ चलें। ऐसी ही एक ट्रेन दिल्ली से कन्याकुमारी की ओर बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर बदलता भारत था और डिब्बे अंदर बसता हुआ भारत। उसे डिब्बे में बैठा था अरुण। वह चुपचाप अपने आसपास देख रहा था। किसी के सिर पर पगड़ी थी, कोई टोपी पहने था, कोई धोती कुर्ते में था, तो कोई अपने राज्य के पारंपरिक परिधान में। बातें भी अलग थी, कहीं पंजाबी की मिठास थी, कहीं गुजराती का लय, कहीं बंगाली की मिठास, तो कहीं दक्षिण भारतीय भाषाओं की मधुर ध्वनि। अरुण के मन में सवाल उठा, इतने अलग लोग, अलग पहनावा, अलग खान पान, फिर भी दिल से इतने अपने क्यों लग रहे हैं? तभी एक पंजाबी परिवार ने अपना लंच बॉक्स खोला और कहा, आओ जी खाना खाइए। शब्द शायद समझ नहीं आए, लेकिन मुस्कान समझ आ गई। एक यात्री ने ढोकला निकाला, दूसरे ने इडली बढ़ाई, किसी ने पूरी सब्जी बाटी, तो किसी ने अपनी खास मिठाई। जो डिब्बा अलग अलग लोगों से भरा था, वह एक परिवार जैसा लगने लगा। भाषाएं अलग थी, पर अपनापन एक था। खाने अलग थे, पर बांटने की खुशी एक थी। पहनावे अलग थे, पर मुस्कान एक थी। अरुण बस देखता रहा। फिर उसकी नजर बाहर गई, कहीं हरे भरे खेत तो कहीं ऊंचे पहाड़, कहीं बहती नदियां तो कहीं दूर तक फैली धरती। अचानक अरुण मुस्कुराया, उसे समझ आ गया, जो बाहर दिखाई दे रहा है वही तो इस डिब्बे के अंदर भी है। भारत की धरती अलग अलग रंगों से सजी है और भारत के लोग अलग अलग संस्कृतियों में, लेकिन सब मिलकर भारत है। अरुण ने चारों ओर देखा, अलग धर्म, अलग राज्य, अलग भाषाएं, अलग परंपराएं, फिर भी एक दूसरे के लिए वही मुस्कान, वही सम्मान, वही अपनापन। उसने मन ही मन कहा, भारत की खूबसूरती इस बात में नहीं कि हम सब एक जैसे हैं, भारत की खूबसूरती तो इस बात में है कि हम इतने अलग होकर भी एक हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही और अरुण की सोच भी। उस दिन उसने जाना, भारत सिर्फ एक देश नहीं, भारत एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर फूल का रंग अलग है, हर फूल की खुशबू अलग है, लेकिन जब ये सारे फूल साथ होते हैं तभी तो गुलदस्ता खूबसूरत बनता है। और शायद यही भारत की असली पहचान है। अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृतियां, अनेक परंपराएं, अनेक पहचान, लेकिन दिल एक और देश एक, मेरा भारत। यही है हमारे देश की खूबसूरती, विविधता में एकता। धन्यवाद।

0: तन्मय, तुमने भी तो एक कहानी तैयार की थी।
1: हाँ हाँ जरूर जरूर, मैं अभी सुनाता हूँ। तो बिना किसी विलंब के प्रस्तुत है मेरी कविता स्वच्छता की पुकार। मत फेंको कूड़ा राहों में, मत गंदा करो ये आंगन, धरती माँ की आंखों में क्यों भरते हो तुम सावन। ये मिट्टी केवल मिट्टी नहीं, ये मिट्टी केवल मिट्टी नहीं, इसमें भी जीवन पलता है। जिस धरती पर हम चलते हैं उसका भी तो दिल होता है। एक माँ अपने बच्चों को साफ सुथरा घर देती है, फिर क्यों हम उस धरती माँ को गंदगी का दुख देते हैं। नदी हमारी बहन है जैसी, पेड़ हमारे साथी हैं, हवा हमारे सांसे हैं, इनसे ही खुशहाली है। एक छोटा सा कूड़ा उठाना शायद काम लगे छोटा, लेकिन इसी छोटे कदम से बदल सकता है कल का रास्ता। आज अगर हम जाग जाएं तो कल मुस्काएगा, स्वच्छ गली और निर्मल आंगन से हर चेहरा खिल जाएगा। आओ मिलकर शपथ लें, गंदगी नहीं फैलाएंगे, अपने घर से अपनी गली से स्वच्छता को अपनाएंगे। सिर्फ दूसरों के कहने से बदलाव नहीं आएगा, जब हर कोई अपना फर्ज निभाए तभी देश मुस्काएगा। मेरी धरती मेरा आंगन, मेरी अपनी जिम्मेदारी, स्वच्छ भारत का स्वप्न लेकर करें आज से तैयारी। एक कदम मेरा एक कदम तुम्हारा, मिलकर बन जाए रहा, स्वच्छ रहे हम स्वस्थ रहे हम, यही हमारी सच्ची था। आओ धरती माँ से कह दे, अब तेरा मान रखेंगे, तेरी गोद को स्वच्छ रखकर तेरा सम्मान करेंगे। धन्यवाद।

0: अनन्या दीदी, आप भी हमें कोई कविता सुनाइए ना।
1: जरूर जरूर, मैं आज आपके समक्ष अपनी स्वरचित कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है छोटा कदम बड़े बदलाव। छोटा सा कदम जब विश्वास से उठता है तो इतिहास के पन्नों में नया अध्याय रचता है। जैसे गांधी जी ने चरखा चलाकर यही सिखाया, अपने हाथों से स्वदेशी का दीप जलाया। एक कदम था उनका, एक कदम था उनका खुद वस्त्र बनाना, पर उससे जुड़ा था देश को आत्मनिर्भर बनाना। जैसे एक चरखे की आवाज ने यही था संदेश सुनाया कि बदलाव दूसरों से नहीं स्वयं में है पाया। आज भी हम एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं कि आज भी हम एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं, अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। एक पेड़ लगाएं, एक बूंद जल बचाएं, एक जरूरतमंद की मदद को हाथ बढ़ाएं, कूड़ा ना फैलाएं, स्वच्छता को अपनाएं, प्लास्टिक छोड़ प्रकृति से रिश्ता बनाएं। जब छोटी सी आदत सबकी बन जाएगी तो यही धरती एक सुंदर कल की तस्वीर बनाएगी। ना कोई कदम छोटा है, ना कोई प्रयास व्यर्थ, हर कोशिश में छिपा है बदलाव का अर्थ। आज का छोटा कदम कल की पहचान बनेगा, हमारा वर्तमान ही कल का उज्जवल भविष्य गढ़ेगा। तो चलो शुरुआत अभी और यहीं से करें, बदलाव की राह पर पहला कदम धरें, क्योंकि बड़े बदलाव की यही तो निशानी है। बड़े बदलाव की यही तो निशानी है, छोटे कदमों से ही रचती बड़ी निशानियां हैं।
2: मन कर रहा है अनन्या दीदी एक गजल भी हो जाए।
1: हाँ जरूर।
2: तो हमारे साथ रक्षित भैया है ना, उनसे अच्छी गजल कौन सुना सकता है, तो चलो सुनते हैं।
3: मेरा नाम रक्षित शर्मा है और आज मैं एक गजल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

आज मैं अक्षत आपके समक्ष एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो हमें यह सिखाती है कि बदलाव की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से भी होती है। मेरी कहानी का नाम है छोटा कदम बड़ा बदलाव। तो आइए सुनते हैं यह प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक बच्चा रहता था। आरव पढ़ाई में अच्छा था और उसे अपने शहर से बहुत प्यार था, लेकिन उसके मन में एक बात हमेशा खटकती थी। उसके घर के पास एक छोटा सा पार्क था। कभी वहां बच्चे खेलते थे, बुजुर्ग टहलते थे और लोग शाम को बैठकर बातें किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे पार्क की हालत खराब होती जा रही थी। जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता था। एक दिन आरव स्कूल से घर लौट रहा था। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा पार्क में खेलते खेलते केले का छिलका वहीं जमीन पर फेंक कर चला गया। आरव ने उसे आवाज लगाई, अरे रुको, कूड़ा जमीन पर क्यों फेंका? बच्चे ने पीछे मुड़कर कहा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ एक छिलका ही तो है। आरव कुछ नहीं बोला। वह छिलका उठाकर पास के कूड़ेदान में डाल आया। तभी उसके दोस्त विवान ने पूछा, तुमने क्यों उठाया? सफाई कर्मचारी आएंगे और साफ कर देंगे। आरव मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन अगर हम ही गंदगी फैलाएंगे और सफाई की जिम्मेदारी किसी और की समझेंगे तो हमारा पार्क कभी साफ नहीं हो पाएगा। विवान ने कहा, लेकिन हम दो बच्चे क्या बदल सकते हैं? आरव ने कहा, शायद हम पूरी दुनिया ना बदल सके, लेकिन अपने आसपास की शुरुआत तो कर ही सकते हैं। अगले दिन आरव और विवान ने पार्क में पड़े कुछ कागज और प्लास्टिक उठाए। पहले उन्हें देखकर लोग हंसने लगे। एक आदमी ने कहा, अरे बेटा, तुम दोनों से पूरा पार्क थोड़ी साफ हो जाएगा। आरव ने जवाब दिया, अंकल, पूरा पार्क आज नहीं तो कल साफ हो जाएगा, लेकिन अगर कोई शुरुआत न करे तो कभी साफ नहीं होगा। यह बात उस आदमी के मन में बैठ गई। अगले दिन वह आदमी भी अपने साथ एक थैली लेकर आया और बच्चों के साथ कूड़ा उठाने लगा। अब 3 लोग थे, फिर 5 लोग हुए, फिर 10। धीरे धीरे पार्क में रहने वाले लोगों ने तय किया कि हर रविवार वे मिलकर पार्क की सफाई करेंगे। कुछ दिनों बाद पार्क का रूप ही बदल गया। जहां पहले कूड़ा दिखाई देता, वहां अब साफ रास्ते थे। जहां प्लास्टिक की बोतलें पड़ी रहती थीं, वहां पौधे लगाए गए। और सबसे अच्छी बात यह थी कि अब लोग पार्क में कूड़ा फेंकने से पहले 2 बार सोचते थे। एक दिन वही छोटा बच्चा जिसने केले का छिलका फेंका था आरव के पास गया। उसने कहा, भैया, उस दिन मैंने ये सोचकर छिलका फेंक दिया कि इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन अब समझ आया कि एक छोटी सी गलती भी बड़ी गंदगी की शुरुआत बन सकती है और एक छोटा सा अच्छा काम भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है। आरव ने कहा, बस यही तो बात है, बदलाव हमेशा बड़े काम से शुरू नहीं होता, कभी कभी एक छोटा सा कदम भी काफी होता है। कुछ समय बाद शहर के लोगों ने उस पार्क का नाम रख दिया छोटे कदम बड़ा बदलाव पार्क, क्योंकि उस पार्क की कहानी

0: सिर्फ सफाई की कहानी नहीं थी, वह कहानी थी जिम्मेदारी की। वह कहानी थी कि हमें यह सोचकर पीछे नहीं हटना चाहिए कि मेरे अकेले करने से क्या होगा, क्योंकि एक व्यक्ति का छोटा सा कदम दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करता है और दूसरे का कदम तीसरे को, पर यही छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उस दिन आरव पार्क के एक कोने में बैठा था। उसने चारों तरफ देखा और मन ही मन कहा, अगर हर इंसान अपने हिस्से की जिम्मेदारी अच्छे से निभाए तो किसी जगह को बदलने के लिए बहुत बड़ी ताकत की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सच ही तो है, हम अपने घर को साफ रखते हैं तो अपने आसपास को भी साफ रख सकते हैं। हम कूड़ा सड़क पर फेंकने के बजाय कूड़ेदान में डाल सकते हैं। हम दूसरों को इंतजार करने के बजाय ही खुद शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटा कदम किसी एक जगह को बदल सकता है। एक अच्छी आदत एक परिवार को बदल सकती है और लाखों लोगों के छोटे छोटे प्रयास पूरे देश को बदल सकते हैं। इसलिए हमें यह नहीं पूछना चाहिए बदलाव कौन लाएगा, हमें कहना चाहिए बदलाव की शुरुआत मैं करूंगा। और यही है छोटे कदम बड़ा बदलाव। धन्यवाद।
1: भारत विभिन्न कला, संस्कृति और तीज त्योहारों का देश है।
2: और हाँ, तीज त्योहारों से याद आया, 4 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार है, जब बाल गोपाल जी का जन्म और उनकी बाल लीलाएं देखकर मन खुश हो जाता है। और कान्हा की बाल लीलाओं को अपने भजन में समेट कर ला रही हैं हमारे विद्यालय की बहुत सुरीली छात्र स्मृति झा। तो आइए जन्माष्टमी के अवसर पर उनका भजन सुनते हैं।
3: मेरा नाम स्मृति झा है और मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
4: मेरा नाम रक्षित है और आज मैं हारमोनियम पे संगत करने जा रहा हूँ।
5: मेरा नाम अभिषेक है, मैं ढोलक पे संगत देने जा रहा हूँ।
6: मेरा नाम यश राजपूत है, मैं तबले पे संगत करने जा रहा हूँ।
7: मेरा नाम यश जैन है, मैं मंजीरे पे संगत देने जा रहा हूँ।

0: वाह दीदी, गाना सुन के तो बहुत मजा आ गया।
1: हाँ, तो यही तो था इतना अच्छा गाना।
0: तो दोस्तों, अब चलते हैं घर, क्योंकि हमें जन्माष्टमी की तैयारी भी तो करनी है। बाय।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो किड्स। श्रोताओं, हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स।

0: खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की खबरों का खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर आज आपके साथ मैं हूं अजय तोमर, और मेरे साथ है मेरे सहयोगी।
3: नमस्ते श्रोताओं, मैं हूं अभिषेक कपिल।
2: और अभिषेक, आज हम अपने श्रोताओं के लिए ढेर सारी खेलों की खबरें लाए हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हॉकी वर्ल्ड कप की। और हॉकी वर्ल्ड कप में भी सबसे पहले बात करेंगे महिला सेगमेंट की, और जिस तरह से शानदार मैच हुआ और उस मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को हराकर जिस तरह से बाजी मारी है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही काबिले तारीफ बात है।
3: हाँ, इसके अलावा एक मुकाबला और काफी रोमांचक रहा है, वो हुआ था कांस्य पदक का, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसने ऑस्ट्रेलिया को बेल्जियम ने 1-0 से हरा दिया। और इस मुकाबले की सबसे खास बात यह है कि बेल्जियम को 48 साल बाद पोडियम पर जगह मिली है।
2: और जिस तरह से इतने बड़े मुकाबले में इतनी बड़ी बड़ी टीमें खेली और भारतीय टीम भी वहां पर खेली थी, 5वें स्थान पर रही, लेकिन एक कहीं ना कहीं हमने अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी है कि हम 5-4-3-2-1 कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारा खेल अच्छा था। ठीक है, हम 5वें स्थान पर रहे, लेकिन ये भी एक बड़ी उपलब्धि है।
3: हाँ, क्योंकि अगर हम देखें भारतीय टीम की जो परफॉर्मेंस रही है, उसमें सबसे जो रोमांचक मुकाबला था वो जर्मनी के खिलाफ, भारत ने जर्मनी को हराया है।
2: और हॉकी तो हमेशा से ही भारतीय खेल माना जाता रहा है, और एक समय ये भी था कि जब भारतीय खिलाड़ी दूसरे देशों में जाकर उनको हॉकी सिखाते थे, खास तौर से जो ड्रिबलिंग का आर्ट है। आज भी पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर भारत से अच्छी ड्रिबलिंग करते हो खिलाड़ी, हालांकि एस्ट्रोटर्फ पे अब ड्रिबलिंग थोड़ी कम

0: हो गई है, लोग लंबे पास और एक दूसरे के साथ समन्वय में ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन ड्रिबलिंग का जो आर्ट है वो भारतीय खिलाड़ियों ने उसके ऊपर बहुत काम किया और दुनिया को सही मायने में ड्रिबलिंग सिखाने वाले भारतीय खिलाड़ी रहे हैं। लेकिन अभिषेक कपिल ने बहुत ही शानदार रिपोर्ट बनाई है इस हॉकी वर्ल्ड कप के महिला सेगमेंट पर, आइए सुनते हैं।
1: हॉकी के मैदान पर 2026 का महिला वर्ल्ड कप कई यादगार कहानियां छोड़ गया है। एक तरफ अर्जेंटीना ने 16 साल बाद महिला हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया, दूसरी तरफ बेल्जियम ने 48 साल के लंबे इंतजार के बाद वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और भारतीय महिला टीम ने भी 52 साल बाद वर्ल्ड कप में अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए पांचवा स्थान हासिल किया। महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन बेल्जियम और नीदरलैंड्स में हुआ, जहां दुनिया की सबसे टॉप महिला टीमें खिताब के लिए मैदान में उतरी, और फाइनल में आमना सामना था मौजूदा चैंपियन नीदरलैंड्स और अर्जेंटीना का। एम्स्टेलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेले गए फाइनल में नीदरलैंड्स ने घरेलू दर्शकों के सामने शानदार शुरुआत की। पहले हाफ के खत्म होने से सिर्फ 51 सेकंड पहले स्टार ड्रैग फ्लिकर यिबी यानसेन ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर नीदरलैंड्स को 1-0 की बढ़त दिला दी, लेकिन अर्जेंटीना ने हार नहीं मानी। चौथे क्वार्टर में मैच खत्म होने से करीब 6 मिनट पहले मारिया ग्रानातो ने पेनल्टी कॉर्नर के रिबाउंड पर गोल करके मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद निर्धारित समय में कोई और गोल नहीं हुआ और फैसला हुआ पेनल्टी शूटआउट में। यहां अर्जेंटीना ने बाजी मारते हुए शूटआउट 3-1 से जीत लिया और महिला वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया। ये अर्जेंटीना का तीसरा वर्ल्ड कप खिताब है। इससे पहले टीम ने 2002 और 2010 में विश्व कप जीता था, यानी 2010 के बाद पहली बार अर्जेंटीना विश्व चैंपियन बना है। वहीं नीदरलैंड्स का लगातार खिताब जीतने का सिलसिला यहीं खत्म हुआ। अर्जेंटीना के मुख्य कोच फर्नांडो फेरारा ने इस जीत को पूरे देश और अर्जेंटीना हॉकी से जुड़े लोगों की मेहनत का परिणाम बताया। उन्होंने कहा,
2: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ द एफर्ट ऑफ ऑल द पीपल द फेडरेशन इन अर्जेंटीना द प्लेयर्स एंड आल्सो द टीम द कंप्लीट टीम सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हॉकी इन अर्जेंटीना। वी हैव सपोर्ट इन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड we play, so we are very happy. We are very grateful for the people. Also, the tacticals and technical is important. Physically is important, but the health and to believe that is possible. This is the first condition. The second is that we have the tools to do it, and the third is that the building of the team.
1: यानी ये सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं बल्कि अर्जेंटीना में हॉकी के लिए काम कर रहे हर व्यक्ति और फेडरेशन की जीत है। अर्जेंटीना की कप्तान मारिया ग्रानातो ने भी ऐतिहासिक जीत से बेहद खुश हुई। उन्होंने कहा,
3: I think it's really important for us. We fight together all the time and I think we are really happy for finally win this final. I think we deserve this because we do a really good World Cup, so I'm really happy for the team. I think that the Argentina people is really passionate and we really feel our colors.
1: ग्रानातो ने कहा कि टीम ने पूरे वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया और उन्हें लगता है कि टीम इस खिताब की हकदार थी। दूसरी ओर नीदरलैंड्स के स्टार खिलाड़ी और ड्रैग फ्लिकर यिबी यानसेन ने हार के बाद निराशा जताई। उन्होंने कहा,
4: behind us and we really felt that but it was too tough to really make create some chances in their circle so it's not enough. They were really tight defending very well.
1: यानसेन के लिए व्यक्तिगत तौर पर टूर्नामेंट शानदार रहा। वे 8 गोल के साथ टूर्नामेंट की टॉप स्कोरर रही। अब बात करते हैं बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक ब्रोंज मेडल मुकाबले की। फाइनल से पहले ब्रोंज मेडल के लिए मुकाबला हुआ बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया के बीच। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की हॉकी रूस टीम थी

0: दूसरी तरफ मेजबान बेल्जियम की रेड पैंथर्स, मुकाबला बेहद कड़ा रहा और पहले क्वार्टर में कोई गोल नहीं हुआ, लेकिन दूसरे क्वार्टर में बेल्जियम को पेनल्टी कॉर्नर मिला और शार्लोट एंगलबर्ट ने शानदार ड्रैक फ्लिक के जरिए गोल कर बेल्जियम को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने बराबरी की पूरी कोशिश की। आखिरी क्वार्टर में हुकीरूज ने लगातार दबाव बनाया और मैच खत्म होने से करीब 4 मिनट पहले अपने गोलकीपर को भी बाहर कर अतिरिक्त आउटफील्ड खिलाड़ी उतारा, लेकिन बेल्जियम के डिफेंस ने शानदार संयम दिखाया। अंतिम सीटी बजते ही स्कोर रहा बेल्जियम 1 ऑस्ट्रेलिया 0। इस जीत के साथ बेल्जियम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और बेल्जियम के लिए बेहद खास उपलब्धि थी। टीम ने 1978 के बाद पहली बार महिला हॉकी वर्ल्ड कप में पदक जीता, यानी करीब 48 साल बाद बेल्जियम वर्ल्ड कप पोडियम पर लौटा। इस मैच की प्लेयर ऑफ द मैच शार्लोट एंगलबर्ट रही, वहीं उन्हें पूरे टूर्नामेंट की बेस्ट प्लेयर का पुरस्कार भी मिला। अब बात भारतीय महिला टीम की। भारत ने इस वर्ल्ड कप में शानदार जुझारूपन दिखाया। पूल स्टेज में भारत ने चीन के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 6-1 की शानदार जीत और इंग्लैंड के खिलाफ 0-0 का ड्रॉ खेला। इसके बाद भारत को मौजूदा चैंपियन नीदरलैंड्स के खिलाफ 0-2 से हार मिली। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत जरूरी थी, लेकिन ये मुकाबला भी 0-0 से ड्रॉ रहा। बेहतर गोल अंतर के आधार पर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गया, लेकिन भारतीय टीम ने अपना अभियान निराशा के साथ खत्म नहीं किया। पांचवें स्थान के मुकाबले में भारत का सामना मजबूत जर्मनी से हुआ और यहां भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। भारत के लिए इशिका ने गोल किया जबकि नवनीत कौर ने 2 गोल दागे। जर्मनी की ओर से 1 गोल आया, लेकिन भारत ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने पांचवा स्थान हासिल किया। ये महिला हॉकी वर्ल्ड कप में 1974 के बाद भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन है, यानी 52 साल बाद भारतीय महिला टीम ने वर्ल्ड कप में नया बेंचमार्क बनाया है। तो 2026 महिला हॉकी वर्ल्ड कप की तस्वीर बिल्कुल साफ है। अर्जेंटीना चैंपियन, नीदरलैंड सिल्वर मेडल, बेल्जियम ब्रॉन्ज मेडल और भारत पांचवें स्थान पर। अर्जेंटीना के लिए ये 16 साल के इंतजार का अंत था, बेल्जियम के लिए 48 साल बाद पोडियम पर वापसी और भारत के लिए एक ऐसी उपलब्धि जो आने वाले वर्षों में भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए नई उम्मीद पैदा करती है।
1: और इस पूरे वर्ल्ड कप में एक बात बहुत अच्छी ये थी कि 177 गोल हुए महिलाओं के सेगमेंट में, 80 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले, 97 ग्रीन कार्ड और 10 येलो कार्ड, लेकिन रेड कार्ड किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया गया। यानी कि खेल का स्तर और खेल अनुशासन से खेला गया, ये इस बात को दर्शाता है। और वहीं ये भी यानसेन ने 8 गोल किए, नीदरलैंड्स की खिलाड़ी हैं, सबसे अधिक गोल करने में वो सफल रहीं। और वहीं दूसरी तरफ नीदरलैंड की टीम भी सर्वाधिक गोल करने की अगर हम बात करें तो उन्होंने 23 गोल किए। तो महिला विश्व कप हॉकी में बहुत ही बेहतरीन मुकाबले खेले गए। और एक और इस समय मुकाबला चल रहा है, वो भी मुकाबला चल रहा है अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स के बीच में, लेकिन ये पुरुषों का मुकाबला है, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का ये ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला है जो इस समय चल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोबारा से दोनों टीमें आमने सामने हैं। एक बार महिला सेगमेंट में तो अर्जेंटीना ने बाजी मार ली है, तो अभिषेक क्या लगता है पुरुषों में क्या होगा?
0: पुरुषों में भी ये भी मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है कि वो फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना वर्सेस नीदरलैंड था, और मेन सेक्शन की बात करें तो ये ब्रॉन्ज मुकाबले के लिए नीदरलैंड और अर्जेंटीना आमने सामने है। लेकिन ये ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला हो रहा है। सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स को स्पेन के हाथों 4-3 की करीबी हार मिली थी, जबकि अर्जेंटीना को जर्मनी ने 2-1 से हराया था। दोनों टीमों की नज़र अब कांस्य पदक पर है। नीदरलैंड्स अपने घरेलू दर्शकों के सामने टूर्नामेंट का अंत जीत के साथ करना चाहेगी, वहीं अर्जेंटीना सेमीफाइनल की निराशा को पीछे छोड़कर पोडियम पर जगह बनाने के इरादे से मैदान में उतरेगा, क्योंकि अर्जेंटीना का एक लक्ष्य ये होगा कि उनकी वुमेन्स टीम तो जीत के साथ चल देश की ओर रवाना हो गई है, तो वो चाहते हैं कि पीछे से हम भी पोडियम पर चढ़कर आएं।
1: जी हाँ बिल्कुल, और पोडियम पर चढ़ने का मतलब है कि पदक लेकर आप घर वापसी करें। और स्पेन और जर्मनी के बीच होगा फाइनल मुकाबला, और जिस तरह से दोनों ही टीमें खेली हैं तो बहुत ही शानदार ये मुकाबला हो सकता है। और इस पूरे वर्ल्ड कप में 244 गोल हुए मैन सेक्शन में, 244 गोल हुए, 96 पेनल्टी कॉर्नर्स, 100 ग्रीन कार्ड, 28 येलो कार्ड। लेकिन अभिषेक अच्छी बात यह कि रेड कार्ड यहां पर भी किसी को नहीं दिया गया,

0: और अर्जेंटीना के जो खिलाड़ी हैं थॉमस डोमिने, उन्होंने 9 गोल किए, सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं अभी तक के। और न्यूजीलैंड ने सर्वाधिक 21 गोल किए पुरुषों के वर्ग में इस वर्ल्ड कप में। तो कहीं ना कहीं अभिषेक, एक बात तो साफ है कि इस पूरे वर्ल्ड कप में हॉकी का स्तर बहुत अच्छा था और अनुशासित हॉकी खेली गई।
1: बिल्कुल, जैसा कहते हैं ना कि जो मुकाबले मुकाबलों की तरह होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं था कि किसी ने अनावश्यक रूप से प्लान किया हो कि हम ऐसे नहीं वैसे करेंगे। सबकी स्ट्रेटेजी थी, सब अपनी स्ट्रेटेजी पे चले, वो ही चले। लेकिन अगर इस मुकाबले की बात करें तो जर्मनी ने सेमीफाइनल में अर्जेंटीना को 2-1 से हराकर दूसरी बार वर्ल्ड कप में जगह बनाई है। उनके सामने स्पेन है जिसने बेहद रोमांचक सेमीफाइनल में मेज़बान नीदरलैंड्स को 4-3 से शिकस्त दी थी, ठीक है। और स्पेन की जीत में जोसे बास्तेरा की हैट्रिक ने अहम भूमिका निभाई। अब जर्मनी के पास अपने खिताब का बचाव करने का मौका है, जबकि स्पेन पहली बार पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जीतने की कोशिश करेगा। दोनों टीमों के हालिया मुकाबले भी स्पेन के पक्ष में रहे हैं, इसलिए फाइनल में मुकाबला बेहद कड़ा होने की उम्मीद है, जो आज रात 8 बजे से शुरू होगा।
0: और जिस तरह से स्पेन कोशिश करेगा मुकाबले को जीतने की, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी मुकाबला जीतने की कोशिश करेगा। हालांकि अपेक्षाकृत थाईलैंड की जो महिला क्रिकेट टीम है वो भारतीय टीम के सामने है, हालांकि थोड़ा सा कमज़ोर टीम मानी जा सकती है, कमज़ोर या ये कह सकते हैं कि थोड़ा नई टीम है, लेकिन भारतीय टीम पूरी तरह से सुसज्जित है। हरमनप्रीत कौर कप्तान है, ऋचा घोष, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, अनुदती रेड्डी, क्रांति गौड़, श्री चढ़नी, नंदिनी शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, प्रतिका रावल, राधा यादव, गुणालन कामिलिनी और प्रेमा रावत। तो कुल मिलाकर सुसज्जित टीम है भारतीय महिला क्रिकेट टीम, और आज अपना अभियान एशिया कप में शुरू होने वाला है भारतीय टीम का। और ये मुकाबला आप आकाशवाणी पर भी सुन सकते हैं, और जिस तरह से ये पूरा मुकाबला होने की उम्मीद है, तो जब पूछा गया हरमन से कि आपको क्या लगता है कि किस तरह से भारतीय टीम की तैयारी है और क्या हो सकता है इस वर्ल्ड कप में, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, या ये कहें कि आप क्या मानते हैं कि आपकी टीम की क्या स्ट्रेंथ है, तो उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं।
2: इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू यू नो लिफ्ट आर स्टैंडर्ड्स एंड वर्क। वी हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, बीन रियली ग्रेट। वी प्लेड सम रियली गुड क्रिकेट एंड बिफोर कमिंग हेयर वी हैड अ वेरी गुड कैंप्स वेर यू नो वी वर्क रियली हार्ड। नाउ इट्स द टाइम टू यू नो एग्जीक्यूट अवर सेल्फ एंड

0: भूमि जल निकाय के दस्तावेज जमीन के मालिकाना हक के कागज आपके पास रजिस्टर्ड होने चाहिए। और इतना ही नहीं, देखिए भाई, जो महिलाओं की अगर बात करें, जैसे कि अभी अर्नेस भाई ने की, तो देखिए समूह स्तर पर भी आप ये कार्य कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह और महिला एसएचजी और मत्स्य सहकारी समितियों के माध्यम से भी आप ये काम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और महिलाओं की अगर बात करें तो अर्नेस भाई, देखिए आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात कार्यक्रम में कहा कि देख लाखों जो माताएं बहनें पीएम स्वादी योजना की लाभ ले रही हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि देखिए महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उन्होंने चर्चा की, और साथ ही योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपना काम।
1: बिल्कुल। और महिलाएं जब सशक्त होंगी तो पूरा समाज सशक्त होगा और इसके साथ ही पूरा देश सशक्त होगा, इसलिए महिलाओं को सशक्त बनाना बेहद जरूरी है। और जो हम बात कर रहे थे इस योजना के बारे में, तो जो हमारे मछुआरे भाई हैं, मत्स्य किसान हैं, मत्स्य श्रमिक हैं, इसके अलावा मत्स्य कार्यों से जुड़ी हुई सहकारी समितियां हैं और मत्स्य किसान उत्पादक संगठन हैं, ये सब भी जाके आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना, जो हमारी आधिकारिक वेबसाइट है PMMSY वेबसाइट पर जाइए और रजिस्ट्रेशन कीजिए, वहाँ पर आधार नंबर और बाकी जो ज़रूरी विवरण है वो भर दिए, और इस तरीके से आप अपनी परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट, जिसको DPR कहते हैं, वो और बना सकते हैं, और आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। तो ये तो सुनील भाई हमने जानकारी दी है।
0: और आज के हमारे जो अगले कलाकार हैं वो केशव और बबीता, और केशव और बबीता को सुनने के लिए जो पहली फरमाइश मिली है बठिंडा रोड मंडी डबावली से, इसको भेजने वाले राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और उनका समस्त परिवार।
1: इसके अलावा ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राज्यपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह का भी मैसेज आया है।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है बेरवाला खुर्द सिरसा से बलवंत जाखड़, ममता जाखड़ और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: गाँव हाड़ी खेड़ा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा का भी मैसेज आया है।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह, कृष्णा, मुकेश, रामचंद्र और उनके समस्त परिवार की तरफ से। गांव फरासी जिला हिसार से फरमाइश मिली है राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार डोडी और पुष्पेंद्र कुमार डोडी की।
1: डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका और बेबी

0: इसका कभी आया है।
1: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश मिली टोरावाला से पंजाब से, ये फरमाइश में मिले गगनदीप थांदी और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: इसके अलावा जो हमारे एक कबीर रेडियो श्रोता संघ से भी मैसेज आया है, देवशंकर तामुरिया, अजय देव और तुषार देव का।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक।
0: जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकोस्ट्रो, रोजी पर्ल और विली से और उनका पूरा परिवार की तरफ से एक संदेश आया है।
1: फरमाइश हमें मिली है पटेल नगर मालौट से डॉक्टर रामेश कुमार, गीता रानी, गगनदीप और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: और एक और संदेश ले लेते हैं जल्दी से। ऊपरकोट मोहल्ला चाखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, जवान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।
1: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं केसर और बबीता से ये रागनी, किस्सा रहेगा सत्यवान सावित्री का। और ये उस मौके की रागनी है जब राजकुमारी सावित्री अपने विवाह के लिए वर की खोज में निकलती है और घूमते घूमते वह जंगल में पहुंचती है और उनकी मुलाकात सत्यवान से होती है जो अपने अंधे माता पिता के गुजारे के लिए लकड़ी काट रहा होता है। तब सावित्री उनसे पूछती है, क्या आपका काम लकड़ी काटना ही है? इस बात पर सत्यवान जवाब देते हैं कि वह एक गरीब लकड़हारा है और लकड़ी काट कर अपना गुजारा करता है। साथ ही वह सावित्री को कहता है कि एक राजा की बेटी और उनका वह सत्यवान का कोई मेल नहीं। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

0: अरुणेश भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी किशोर कुमार और बबीता से, और किस्सा था सत्यवान सावित्री का। और आज के जो हमारे अगले कलाकार हैं वो राजेश कुमार अट्टा, और उनके लिए फरमाइश आपके हाथ में दिखाई दे रही है।
1: बिल्कुल, जो है हमारे पास जो एक फरमाइश आई है मेरठ कंड से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का, इसके अलावा जो है भिवानी से जगदीश चिंडालिया, राजवीर सतीश ऋतिक का भी संदेश आया है, केला देवी का भी आया है, इसके अलावा जो है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा और प्रकाश अरोड़ा का भी संदेश आया है।
0: और फरमाइश हमें काफ़ी और भी मिली है भाई, जो हम अपने अगले कार्यक्रम कृषि जगत में शामिल करेंगे। तो आप 7:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत भी जरूर सुनना। और अब आप सभी की पसंद पर सुनते हैं राजेश कुमार अट्टा से ये रागनी।

0: अरुणेश भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी राजेश कुमार अट्टा से, और किस्सा था रामायण का। और इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल। ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल है। रेडियो वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अभी आपने कार्यक्रम ग्राम संसार सुना और अब से कुछ ही क्षण बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और उज़्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज़्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज़्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई। भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए $10 लाख का अनुदान देने का फैसला किया है। उज़्बेकिस्तान में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए भी समझौता किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती हैं। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया।
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
1: केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, सुब्रमण्यम जयशंकर और निर्मला सीतारामन ने उज़्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान

मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी

0: के माध्यम से देश भर की लगभग 35 लाख महिलाएं अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 768 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। बचाव दल लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित हैं। पेचिंग के भारतीय दूतावास उनसे सीधे और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से संपर्क में है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट में आज रात 8:30 बजे भारत का सामना थाईलैंड से होगा। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज रात 8:00 बजे वर्तमान चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। गणेश भाई कार्यक्रम लेकर हाजिर है। देखिए, सरकार द्वारा किसानों की मदद के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती रही हैं और अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसी एक योजना की शुरुआत 2015 में की गई, परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य खेतों में रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जगह प्राकृतिक खाद का उपयोग करना, साथ ही देखिए मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और गुणवत्ता में सुधार करना है।
1: इसके अलावा इस योजना की और क्या क्या खासियत हैं, क्या बड़ी बातें हैं? अगर उसकी हम बात करें तो जो क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण है, यानी योजना के तहत किसानों को 20 हेक्टेयर या 50 एकड़ के समूहों में एक क्लस्टर टाइप का बना दिया जाता है, इससे संसाधन को साझा करने में और लागत कम करने में बेहद मदद मिलती है। और इसके अलावा एंड टू एंड सपोर्ट, जिसमें यह कहा जाता है कि सरकार किसानों को जैविक बीज, प्राकृतिक खाद के उत्पादन से लेके पैकेजिंग तक, ब्रांडिंग और फिर बाजार में बेचने तक हर कदम पर सरकार सहायता देती है।
0: और देखिए भाई, इसके लिए जो अगर आप इसमें इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज की अगर बात करें तो आधार कार्ड पहचान पत्र के रूप में, निवास प्रमाण पत्र जैसे वोटर आईडी, राशन कार्ड या बिजली का बिल आपके पास होना जरूरी है। साथ ही भूमि के जो दस्तावेज की अगर बात करें तो खसरा, खतौनी या जमीन के जो मालिकाना हक का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। साथ ही आपके पास देखिए भाई बैंक खाता होना जरूरी है और आधार कार्ड से लिंक आपका मोबाइल नंबर होना जरूरी है और पासपोर्ट साइज के जो आवेदन पत्र के लिए दो फोटो भी जरूरी है।
1: बिल्कुल सुनील भाई, इसके साथ ही ये भी बता देते हैं कि वित्तीय सहायता क्या क्या मिलती है, लाभ क्या होता है। तो 3 वर्षों में मिलने वाली 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की इस सहायता राशि मिलती है, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि 31,000 रुपये जैविक इनपुट है, जिसमें कि जैविक खाद, नीम तेल, पंचगव्य और जैविक बीज खरीदने या फिर उसका ऑन फॉर्म तैयार करने के लिए सीधे किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत ये पैसा दिया जाता है। वहीं दूसरी किस्त 8,800 रुपये की है, जो प्रमाणन और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के पर्पज़ से किसानों के जैविक खेती को ट्रेनिंग देने और क्लस्टर के सर्टिफिकेशन के खर्च के लिए दिया जाता है। वहीं तीसरा जो इसकी कड़ी है, उसमें 10,200 रुपये मूल्यवर्धन और विपणन यानी मार्केटिंग, जिसमें कि फसल कटाई के बाद मूल्य संवर्धन, जिसको हम वैल्यू एडिशन कहते हैं, जिसमें कि ब्रांडिंग, पैकेजिंग और उसे

0: बाजार तक पहुंचाने के लिए दिया जाता है।
1: और देखिए भाई, इसके लिए आप पोर्टल पर जाकर आधिकारिक वेबसाइट माई स्कीम पर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही आप अपने नज़दीकी ब्लॉक या जिला स्तर के कृषि विकास अधिकारी कार्यालय जाकर ऑफलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी योजना है भाई, आप स्वयं भी ऐसी योजना का लाभ उठाएं और दूसरे जो किसान भाई हैं उनको भी जागरूक करें और इस तरह की योजनाओं का लाभ उठाएं। अनुरेश भाई, देखिए हमने कहा था कि भाई फरमाइश हमें काफ़ी और भी मिली है, और अतुल सबसे जो पहले जो आज के कलाकार हैं विनोद कुमार हैं, और विनोद कुमार को सुनने के लिए जो पहली फरमाइश मिली है, ये फरमाइश हमें मिली है वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा की।
0: इसके अलावा गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा, अलका मिड्डा का आया है।
1: और हनुमानगढ़ जिले से हमें गांव कलाना से एक और खत हमें मिला है, ये मिला है विक्रम, सचिन, सतीश और योगेश का।
0: इसके अलावा दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू का भी संदेश मिला है।
1: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है वो मिली है कनेरा मोहला पटियाला से, और उसको भेजने वाले हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, करण बत्ता और हार्दिक बत्ता।
0: गुलाम रोड हर गोविंद नगर नवा शहर पंजाब से सुरेंद्र सिंधु, अनीता सिंधु, राहुल, रोहित, रितेश, शिखा, प्रतीक्षा और मैक्स का भी संदेश मिला है।
1: विनोद कुमार को ही सुनना चाहते हैं बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से सुरेश ग्रोवर, बेबी ग्रोवर और उनका समस्त परिवार।
0: और फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिश और शाहिद मिखाइल मुजावर का भी मैसेज आया है।
1: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है वो मिली है गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा की।
0: और इसके साथ ही एक और संदेश जल्दी से ले लेते हैं जो कि आया है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पालेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, और इनका नाम है ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है शाहू नगर से, इसको भेजने वाले हैं राहुल मनवर, सरला मनवर और उनका समस्त परिवार।
0: रघुनाथपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का भी संदेश आया है।
1: विनोद कुमार को ही सुनना चाहते हैं ग्राम ममना जिला हमीरपुर से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा और उनका समस्त परिवार।
0: और इसी क्रम में एक और मैसेज आया है दत्तरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा का।
1: ये अगली फरमाइश हमें मिली है नूर महल महसोल सीतामढ़ी बिहार से, उसको भेजने वाली है मुर्शद जहानाज, तलत जहानाज और उनका समस्त परिवार।
0: इसके अलावा एक और संदेश आया है नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसोल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, बेगम इशरत, वसीम अकरम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा का।
1: विनोद कुमार को ही सुनना चाहते हैं पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा और उनका समस्त परिवार।
0: और इसी क्रम में एक मैसेज आया है देती दत्तरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा का।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है जटवाड़ा गाजियाबाद से शीशपाल अकेला की।
0: और इसी क्रम में एक और संदेश लेते हैं जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल का।
1: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं विनोद कुमार से ये उपदेश।

0: तो सुनील भाई, अभी हमारे किसान भाइयों ने सुना, और विनोद कुमार की आवाज़ में ये जो है बहुत ही अच्छा रागनी, और इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा, और हम और भी अपने कुछ संदेश लेंगे, और उनकी जो दूसरे हमारे कलाकार हैं अतुल कुमार, उनकी जो है सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आया है, और ये आया है विनोद कुमार गांव माजरा हरियाणा से, और इन्होंने ये लिखा है कि वो चने की बुआई करना चाहते हैं, और इसके लिए क्या सही समय है, और साथ ही में चने की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, और चने के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त तो मानी जाती है। और एक एक इसी से जुड़ा सवाल ये भी है कि चने का जो पेड़ होता है, जो पौधा होता है, उसमें कौन सी बीमारियाँ लग सकती हैं, रोग या जो कीट पतंगे लग जाते हैं, ये भी है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं सुनील भाई कि ये हमारे ये श्रोता जानना चाहते हैं विनोद कुमार जी कि आखिरकार चने की फसल की कुल देख रेख किस तरह से करना चाहिए ताकि उसका उत्पादन अच्छा हो सके।
1: आप माजरा हरियाणा से बात कर रहे हैं, सिंचित क्षेत्र से बात कर रहे हैं। तो चने की जो बिजाई का सही समय जो है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर सबसे सही और उचित माना जाता है। वैसे सिंचित क्षेत्रों में दिसंबर माह के तीसरे सप्ताह तक भी बिजाई की जाती है, लेकिन जो सही समय की अगर आप बात करें तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का समय सही माना जाता है। जहाँ तक उन्नत किस्मों की आपने बात की है तो देखिए भाई, पूसा 256, पंतजी 114, KWR 108, K850 वे विजय किस्में उन्नत किस्में मानी जाती हैं। यदि आप काबुली चने की बुझाई करना चाहते हैं तो भाई पूसा 267, L550 और C104 सबसे उन्नत किस्में मानी जाती हैं। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र के हिसाब से भी भाई उन्नत किस्म ले सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि भाई जहाँ से भी आप बीज लें उपचारित बीज लें, और यदि बीज उपचारित ना हो तो भाई उपचारित अवश्य कर लें। जहाँ तक निराई गुड़ाई की बात है तो देखिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए भाई बिजाई के 5 से 6 सप्ताह के बाद निराई गुड़ाई अवश्य कर देनी चाहिए। और चने की जो फसल, जहाँ तक भाई आपने जलवायु की बात की है तो शुष्क एवं ठंडी जलवायु इसके लिए उचित मानी जाती है। और चने की फसल में मुख्य रूप से दीमक, फली छेदक, झुलसा रोग, उकटा रोग और इस तरह की जो बीमारी लग जाती है। साथ ही आगे चल के भाई देखिए पाले भी पड़ता है, और पाले से भी आपको बचाना है। साथ ही दीमक से रोकथाम के लिए भूमि का उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ तक कटाई, फसल की कटाई

0: कढ़ाई की बात है तो देखिए, पत्ते हुए फलियां पीले हुए भूरे रंग के हो जाएं तो पत्तियां गिरने लगें तो दाना सख्त हो जाए, तो इस सब बातों का आपने ध्यान रखना है, उस समय आप फसल की कटाई कर लें। इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे भाई, कीट व बीमारियों से फसल को बचाएंगे, समय पर निराई गुड़ाई करेंगे तो आप ले पाएंगे चने फसल से भरपूर उत्पादन।
1: बिल्कुल सुनील भाई, आपने तो पूरी ही जानकारी दे दी और बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, और उम्मीद है कि न केवल विनोद कुमार बल्कि हमारे और भी जो किसान भाई बहन हैं जो चने की खेती करना चाहते हैं तो उनको ये जानकारी बेहद लाभदायक सिद्ध होगी और उनको बेहद पसंद आई होगी। तो अब अपने कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और संदेश लेते हैं।
0: देखिए भाई, अगली जो हमारे कलाकार हैं वो अतुल कुमार, और अतुल कुमार को सुनने के लिए जो पहली फरमाइश मिली है, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता वोट निखिल कांगड़ा और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है नलवेश्वर नगर महाराष्ट्र से PS नवांकर, निर्मला और विशाल की। इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: और इसके अलावा एक और संदेश आया है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राजेश शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ साइना और निवान शर्मा का। और मेहर नगर उमड़खेर महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता, प्रणीता और अर्जुन का आया है।
0: साथ ही
1: और
0: हमें फरमाइश मिले सादुल सहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ की। और सादुल सहर राजस्थान के अलावा हमें जो और फरमाइश मिली है वो कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से मिली है, ओम प्रकाश राय, उषा राय और उनके समस्त परिवार की तरफ से। सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन प्रभजोत की फरमाइश भी हमें मिली है।
1: साल्हे भाटा महासमुंद छत्तीसगढ़ से जीतू ध्रुव, केवल, किरण, दिव्यांशी, खेमुखरूप का भी आया है। और एक और संदेश आया है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से ही है, खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू का। और छत्तीसगढ़ से ही हसदा नंबर दो से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू, पायल साहू का भी संदेश आया है।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है GTB मार्केट अहमदाबाद से, और इसको भेजने वाले हैं रवीना, आफिया और उनका समस्त परिवार। साथ ही फरमाइश मिली है जलालपुर जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से स्वर्ण कुमार प्रजापति, शिवम, आर्यन और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: इसके अलावा जो है एक और संदेश आया है हमारे पास, और ये आया है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य लाडो, कोयल और पीयूष सिक्का, कोयल डुग्गू भाविका सिक्का का। और इसी क्रम में एक और संदेश आया है गांव नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन कांगड़ा, राजबाला,
0: अतुल
1: कार्तिक
0: कुमार को ही
1: वेदांश।
0: सुनना चाहते हैं धनोरी तेली वाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौसार सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू।
1: और एक और संदेश आया है रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब का। और आज
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, अल्लाह और उनके समस्त परिवार की तरफ से। दरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हमें फरमाइश मिली है महाराजा कीर्तन पूरी गोस्वामी और उनके समस्त परिवार की तरफ से। इसी क्रम में जो अगली फरमाइश मिली है छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवगन, कौशल्या और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: और हमारे इस कार्यक्रम को बेहद पसंद किया है और प्रस्तुतिकरण के लिए बधाई भी दिया है अनिल मोहन, PTI संसद मार्ग से जी। तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए।
0: तो चलिए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं अतुल कुमार से ये उपदेश।

घर। गणेश भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर उपदेश सुना अतुल कुमार से। और देखिए भाई, मौसम की बात करें तो तापक्रम आने वाले समय में 34 से 30 डिग्री से अधिकतम रहने की उम्मीद है, और न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 28 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ऐसे में भाई देखिए, जिन किसान भाइयों ने ज्वार आदि चारे की फसल लगा रखी है उसकी कटाई कर लें, साथ ही यदि खेत खाली और भाई सूरजमुखी की फसल लगाना चाहते हैं तो इसमें देरी ना करें, और धान में उर्वरक की मात्रा अगर ना दी हो तो भाई अवश्य इस समय दे दें। इसी प्रकार धान, ज्वार, अरहर, मूंग, उड़द आदि

0: फसल लगाना चाहते हैं और उनमें से खरपतवार अवश्य निकाल दें। साथ ही देखें भाई, आम व अमरूद के नए बाग लगाना चाहते हैं और अभी ना लगाए हों तो भाई इसमें भी देरी ना करें। और अरुणेश भाई, अब बात आती है कल के कार्यक्रमों की, तो कल 5:10 पर लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी का आनंद ले सकेंगे। साथ ही भाई देखिए, 6:30 पर कार्यक्रम ग्राम संसार में चर्चा करेंगे सशक्त पंचायत, समृद्ध गांव और विकसित भारत का भविष्य, और ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं के लिए सरकारी योजनाओं के अवसर के बारे में जानकारी देंगे। अगर बात करें 7:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत की, तो कृषि क्षेत्र में बाढ़ प्रबंधन के विकल्प के बारे में जानकारी देंगे।
1: और इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम का भी समय समाप्त हो रहा है, तो हम अपने सभी किसान भाइयों को कहते हैं राम राम। और इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता तुषार परासर।
0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम, राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। आइए अब सुनते हैं गजलें जगजीत सिंह जी की आवाज में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजलें जगजीत सिंह जी की आवाज़ में। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं। ओ, जैसे UPI से।
2: अच्छा।
1: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के कार्यान्वयन में व्यापक सार्वजनिक भागीदारी को सुलभ बनाने के लिए डिजिटल आउटरीच कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन चक्र के अंतर्गत आबकारी मादक पदार्थ शस्त्र तथा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 193 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस पर शुभकामनाएं दी। कहा, दिल्ली सरकार का संकल्प, राजधानी का हर छोटा उद्यम आगे बढ़े। और दिल्ली प्रीमियर क्रिकेट लीग के फाइनल में आज साउथ दिल्ली सुपरस्टार और सेंट्रल दिल्ली आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि PM स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
6: PM स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। PM स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
5: श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
6: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है, और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।

0: प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दे।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 137वें मन की बात कार्यक्रम का आज दिल्ली में 6339 स्थानों पर भाजपा नेताओं, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने सामूहिक रूप से सुना। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा, पीएम स्वनिधि में महिलाओं की भागीदारी और वोकल फॉर लोकल जैसे मुद्दों पर बल दिया। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, भाजपा के मीडिया सह प्रमुख प्रदीप भंडारी, निवर्तमान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और प्रवीण खंडेलवाल सहित कई नेताओं, जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों से कार्यक्रम को सुना। श्री पांडा ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने एक नया रिकॉर्ड बना है। इतने लंबे समय तक किसी नेता द्वारा किसी देश के करोड़ों लोगों के साथ इस तरह सीधे संवाद करने का उदाहरण बहुत दुर्लभ है। इसके अलावा श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के हर जिले, विधानसभा और बूथ स्तर पर नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएगी। स्कूल कॉलेजों में सेमिनार, खेल प्रतियोगिताएं और युवा चौपाल आयोजित कर युवाओं को खेल, संस्कृति और सेवा से जोड़ा जाएगा। दिल्ली के कानून और न्याय मंत्री कपिल मिश्रा ने आज राउस एवेन्यू कोर्ट में मजबूत भारत के निर्माण में अधिवक्ताओं की भूमिका विषय पर आयोजित चर्चा में भाग लिया। श्री मिश्रा ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में वकीलों और कानूनविदों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि देश में सकारात्मक बदलाव और विकास की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। इस दौरान श्री मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को अधिवक्ताओं के साथ सुना। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 MPD के कार्यान्वयन में व्यापक सार्वजनिक भागीदारी को सुगम बनाने और इसे अधिक आसानी से समझ में आने योग्य बनाने के लिए डिजिटल आउटरीच उपायों की एक श्रृंखला शुरू की है। एक रिपोर्ट।
2: इस पहल के भाग के रूप में DDA ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नया किया है सेक्शन के अंतर्गत MPD 2047 में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक व्यापक सेट उपलब्ध कराया है। इनमें लैंड पुलिंग, पारगमन उन्मुख विकास और झुग्गी झोपड़ियों के पुनर्वास समेत प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी गई है। प्राधिकरण ने MPD 2047 फीडबैक सुविधा भी शुरू की है जिसके जरिए नागरिक और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। साथ ही मास्टर प्लान को सरलता से समझने के लिए दृश्य सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है। ये डिजिटल पहल प्राधिकरण के 3 महीने से हितधारक जुड़ाव कार्यक्रम की पूरक है जिसके अंतर्गत MPD 2047 के विभिन्न पहलुओं पर 20 बैठकें निर्धारित की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकारी एजेंसियों और अन्य संबंधित हितधारकों को प्रमुख कार्यान्वयन क्षेत्रों सहित शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र के विकास पर चर्चा के लिए एक साथ लाना है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: दिल्ली सरकार ने बताया कि राजधानी के ओखला, भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल पर अब तक लगभग 2 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक कचरे का प्रसंस्करण कर 100 एकड़ भूमि रिक्लेम किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वैज्ञानिक और समयबद्ध रोड मैप के माध्यम से वर्षों पुरानी समस्या को खत्म करने पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल मौजूदा कूड़े के पहाड़ों को हटाने पर ध्यान नहीं दे रही है बल्कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो इस पर भी काम कर रही है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि सरकार ने भविष्य में नए कूड़े के पहाड़ बढ़ने से रोकने के लिए 4 नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट तैयार करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने 72 घंटे के अंदर ऑपरेशन चक्र के अंतर्गत आबकारी, मादक पदार्थ और मनोप्रभावी पदार्थ, शस्त्र तथा जुआ अधिनियम के अंतर्गत कुल 154 मामलों में 193 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
3: ये ऑपरेशन 72 घंटे का ऑपरेशन था जिसको हमने नाम चक्र 72 दिया था। ये 24 से 27 अगस्त की रात तक का ऑपरेशन रहा था जिसमें पूरे जिले के हर थाने, हर सब डिवीजन और सारी ऑपरेशन टीम्स ने इसमें काम किया जिसके तहत

0: 154 FIRs दर्ज हुई और 193 लोग अलग अलग केसेस में अरेस्ट हुए हैं। इसमें हमारा फोकस था ऑर्गेनाइज क्राइम पे, आर्म्स एक्ट, ड्रग्स, एक्साइज और गैम्बलिंग पे।
1: पुलिस ने आबकारी अधिनियम मामलों में 63 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 10,000 क्वार्टर से अधिक अवैध शराब और एक कार बरामद की गई। वही मादक औषधि और मनोप्रभावी पदार्थ NDPS अधिनियम मामलों में 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 2.5 किलोग्राम मादक पदार्थ और 700 से अधिक नशीली दवाएं बरामद की है। इसके अलावा शस्त्र अधिनियम मामले में 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 22 चाकू, 3 देशी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही जुआ अधिनियम के अंतर्गत 50 मामले में 87 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 1,69,750 रुपए की राशि और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इसके अलावा अभियान के दौरान 4 चोरी के 2 पहिया वाहन भी बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार अभियान का उद्देश्य अवैध शराब, मादक पदार्थ, हथियार और जुआ गतिविधियों पर अंकुश लगाना तथा आपराधिक नेटवर्क को कमजोर करना था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजस्थान के कोटा से हिमांशु भाई सिंडिकेट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इनमें से 2 आरोपी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हत्या, हत्या के प्रयास तथा फायरिंग के कई मामलों में वांछित और इनामी अपराधी घोषित थे। पुलिस ने दोनों वांछित आरोपियों के अलावा उनके 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है, जिन पर आरोपियों को पनाह देने और पैसों की हेराफेरी करने का आरोप है। दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में 11 से 13 सितंबर तक होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए व्यापक योजना बनाई है। मीडिया से बातचीत में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि इस दौरान यातायात डायवर्जन, प्रभावित रास्तों और समय के बारे में विस्तृत जानकारी पहले से ही जारी की जाएगी।
2: समिट 3 दिन है, उसके टाइमिंग फिक्स है। उस दौरान हमारे डायवर्जन पॉइंट्स रहेंगे, साइनेजेस रहेंगे, हमारी एडवाइजरी रहेगी और पब्लिक को हम कोई भी ऐसा अलग मूवमेंट कहीं होता है तो जहां भी हम डायवर्जन करते हैं अल्टरनेट रूट्स को उनको बताएंगे कि यहां पे डायवर्जन है तो इन रूट से आप बताइए, तो किसी अल्टरनेट रूट्स को आप सजेस्ट करेंगे जिससे कि वो अपना कम्यूट कर सके। देखिए ट्रैफिक का जो उल्लंघन जो भी करेगा डेफिनेटली हम लोग उस पर एक्शन लेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह 2026 में शामिल होंगी। देशभर में स्थित NIFT के 18 परिसरों के स्नातक छात्र अपनी डिग्री प्राप्त करने और अपनी शैक्षणिक यात्रा के समापन पर एक साथ एकत्रित होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस पर उद्यमियों, कारीगरों और शिल्पकारों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की संकल्प ने छोटे उद्यमों को नई ऊर्जा, पहचान और बाजार दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प है कि राष्ट्रीय राजधानी का हर छोटा उद्यम आगे बढ़े, नए बाजारों तक पहुंचे, अधिक रोजगार सृजित करे और विकसित भारत की यात्रा में अपनी बड़ी भूमिका निभाए। वहीं श्री सिरसा ने कहा कि लघु उद्योग रोजगार सृजन, स्थानीय उद्यमिता और आर्थिक विकास की मजबूत नींव है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वीं संस्करण में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ब्रिक्स के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। डॉ. मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य के साथ साथ प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या को कम करने में भी मददगार है। डॉ. मांडविया ने युवाओं से रोजाना कम से कम 1 घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए देने की अपील की।
3: आज देश में 25,000 से अधिक स्थानों पर 88 संडे ऑन साइकिल एडिशन का प्रारंभ हुआ। देश में साइकिलिंग एक क्रेज बन रहा है। संडे ऑन साइकिलिंग धीरे धीरे धीरे जनता में पैशन के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। साइकिलिंग ए बेस्ट एक्सरसाइज है। साइकिलिंग पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। साइकिलिंग फिट रहने का मंत्र है। साइकिलिंग ट्रैफिक का भी समाधान है।
1: दिल्ली प्रीमियर लीग क्रिकेट का फाइनल मुकाबला साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और सेंट्रल दिल्ली किंग्स के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने

0: पहले क्वालिफायर में सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 15 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, जबकि एलिमिनेटर के रास्ते दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में प्रवेश करने वाली सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने पुरानी दिल्ली की टीम को 72 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया, कहा इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के कार्यान्वयन में व्यापक सार्वजनिक भागीदारी को सुगम बनाने के लिए डिजिटल आउटरीच कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस पर शुभकामनाएं दी, कहा दिल्ली सरकार का संकल्प राजधानी का हर छोटा उद्यम आगे बढ़े। और दिल्ली प्रीमियर क्रिकेट लीग के फाइनल में आज दिल्ली सुपर स्टार और सेंट्रल दिल्ली आमने सामने होंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले?
3: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और?
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया, जाओ भाई।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ कवि श्री मदन राज।
7: नमस्कार, इस काव्य संगोष्ठी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर शशांक सुप्रिय जी दसियों कहानियों के रचयिता हैं और कविता मेरा ऑक्सीजन है, कविता में मेरे रक्त में है, यह मेरी धमनियों में बहती है, इस तरह का आत्मकथ्य लेकर चल रहे हैं। दूसरे हमारे पास हैं डॉक्टर शिल्पा राजपूत जी, जो गीत और छंदों की मलिका हैं, संघर्षों की आदि हैं, मानवतावादी हैं, अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित हैं और अनेक साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। आगे हैं डॉक्टर विशंबर दयाल अवस्थी जी, जो श्रृंगार और वीर रस के कवि हैं और इनका विशेष रुझान वृक्षारोपण करो धरा का बहुत प्रसिद्ध रचना है। चलिए अब हम बुलाते हैं डॉक्टर शिल्पा राजपूत जी को, जो गीत और छंदों की मलिका हैं। इनकी कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। कभी तो होगी सुबह, कभी तो मंजिलों तक जाएंगे, निरुद्देश्य नहीं बैठेंगे, चाहे संघर्ष करते मर जाएंगे। धधक रही जो ज्वाला मन में, उसको नहीं बुझाएंगे, ठान लिया है मन में जो, करके ही दिखलाएंगे, करके ही दिखलाएंगे। ऐसे संघर्षों की आदि मानवतावादी डॉक्टर शिल्पा राजपूत।
8: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। सर्वप्रथम मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ भगवान शिव के चरणों में एक छंद रूपी पुष्प, तो सुनिएगा।
9: गले मुंड माल धरे हिमगिरी वास करे, गले मुंड माल धरे हिमगिरी वास करे, जटाओं से बहती जिनके गंगा धार है, भूतो संग भूतनाथ नंदी रहे सदा साथ, भूतो संग भूतनाथ नंदी रहे सदा साथ, व्याघ्र छाले बैठे भस्म जिनका श्रृंगार है। शशि शीश सुशोभित, शशि शीश सुशोभित डमरू त्रिशूल संग, शशि शीष सुशोभित डमरू त्रिशूल संग, कंठ में विराज रहे शेष नाग हार है, और गले में गरल धारे सबके तारन हारे, गले में गरल धारे सबके तारन हारे।
7: सुंदर।
9: देवों के देव महादेव जग के सारे हैं, देवों के देव महादेव जग के सारे हैं।
7: वाह।
8: आगे मैं आप एक गीत प्रस्तुत करना चाहूँगी।
7: स्वागत है।
8: समाज में जो देखती हूँ उसी हिसाब से मैं अपनी कविताएं अपनी रचनाएं करती हूँ, तो एक रचना है माता पिता पर, आजकल के माहौल को देखते हुए, सुनिएगा। उम्र

0: वाह
1: धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और नारी हूँ तो एक छंद चार लाइनों की नारी पर रखती हूँ, फिर वाणी को विराम दूंगी।
0: स्वागत है।
1: बीते गए वो जमाने, बीते गए वो जमाने, सुनती थी रोज ताने, दहलीज पार अब आने लगी नारियां। बस रेल वायुयान चलाती हैं सीना तान, बस रेल वायुयान चलाती हैं सीना तान, धरती से आसमान छाने लगी नारियां।
0: वाह क्या बात है, क्या
1: तोड़
0: बात।
1: डाला ये भरम, तोड़ डाला ये भरम, पुरुषों से नहीं कम, राजनीति में भी खुल के आने लगी नारियां। और धारे खाकी तन पे जाने दे वतन पे, धारे खाकी तन पे जाने दे वतन पे, दुश्मन को तारे दिखाने लगी नारियां, दुश्मन को तारे दिखाने लगी नारियां।
0: वाह
1: बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: सुंदर, बहुत
1: धन्यवाद,
0: सुंदर,
1: बहुत बहुत
0: बहुत
1: धन्यवाद
0: सुंदर, बहुत सुंदर। नर से
1: जी।
0: बढ़कर नारी, एक नहीं दो दो मात्राएं, आजकल लड़कों से भी आगे बढ़ रही हैं आजकल की छात्राएं। बहुत सुंदर अभी आपने जो है राजपूत जी को सुना। अगले कवि के रूप में

0: मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री शशांक सुप्रिय जी को, जो एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं। उनके लिए दो शब्द हैं कि मेरे वजूद का बस इतना सा फसाना है, मेरे वजूद का बस इतना सा फसाना है, तेरी यादों का मुझ में एक अंश पुराना है, एक अंश पुराना है। श्री शशांक सुप्रिय जी,
1: धन्यवाद। मेरी पहली कविता का शीर्षक है कलयुग। एक बार एक कांटे के शरीर में चुभ गया एक नुकीला आदमी।
0: वाह।
1: एक बार एक कांटे के शरीर में चुभ गया एक नुकीला आदमी, कांटा दर्द से कराह उठा। बड़ी मुश्किल से उसने उस आदमी को अपने शरीर से बाहर निकाल कर फेंका, तब जाकर कांटे ने राहत की सांस ली, तब जाकर कांटे ने राहत की सांस ली।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: मेरी अगली कविता का शीर्षक है वह अनपढ़ मजदूरनी।
2: बहुत अच्छा।
1: उस अनपढ़ मजदूरनी के पास थे जीवन के अनुभव, मेरे पास थी कागज कलम की बैसाखी।
2: बढ़िया।
1: मैं उस पर कविता लिखना चाह रहा था जिसने रच डाला था पूरा महाकाव्य जीवन का। सृष्टि के पवित्र ग्रंथ सी थी वह, जिसका पहला पन्ना खोलकर पढ़ रहा था मैं।
2: बढ़िया।
1: गेहूं की बालियों से भरा जीवन का रस थी वह, और मैं जैसे आंगन में गिरा हुआ सूखा पत्ता।
2: वाह।
1: उस कंदील की रोशनी से उधार लिया मैंने जीवन में उजाला, उस दिए की लौ के सहारे पार की मैंने कविता की सड़क, कविता की सड़क। धन्यवाद। मेरी अगली कविता है विडंबना। कितनी रोशनी है फिर भी कितना अंधेरा है, कितनी रोशनी है फिर भी कितना अंधेरा है, कितनी नदियां हैं फिर भी कितनी प्यास है, कितनी अदालतें हैं फिर भी कितना अन्याय है, कितने ईश्वर हैं फिर भी कितना अधर्म है, कितनी आज़ादी है, कितनी आज़ादी है फिर भी कितने खूंटों से बंधे हैं हम, फिर भी कितने खूंटों से बंधे हैं हम। मेरी अगली कविता का शीर्षक है गलती। शुरू से ही मैं चाहता था चांद सितारों पर घर बनाना, आकाश गंगाओं और निहारिकाओं की खोज में निकल जाना, लेकिन एक गलती हो गई, आकाश को पाने की तमन्ना में मुझसे मेरी धरती खो गई। एक कविता देखें, अंतर। महंगे विदेशी टाइल्स और सफेद संगमरमर से बना आलीशान मकान ही तुम्हारे लिए घर है, जबकि मैं हवा सा यायावर हूँ, जबकि मैं हवा सा यायावर हूँ, तुम्हारे लिए नरम मुलायम गद्दों पर सो जाना ही घर आना है, जबकि मेरे लिए नए क्षितिज की तलाश में खो जाना ही घर आना है, नए क्षितिज की तलाश में खो जाना ही घर आना है।
0: बहुत सुंदर, वाह क्या बात है।
1: अगली कविता है कठिन समय में। बिजली के नंगे तार को अचानक छूने पर मुझे झटका लगा, बिजली के नंगे तार को अचानक छूने पर मुझे झटका लगा, क्योंकि तार में बिजली नहीं थी।
0: वाह।
1: क्योंकि तार में बिजली नहीं थी। मुझे झटका लगा इस बात से भी कि जब रोना चाहा मैंने तो आ गई हंसी, जब रोना चाहा मैंने तो आ गई हंसी, पर जब हंसना चाहा तो आ गई रुलाई,
2: क्या
1: बात, जब हंसना चाहा तो आ गई रुलाई। बम विस्फोट के मृतकों की सूची में अपना नाम देखकर फिर से झटका लगा मुझे, इतनी आसानी से कैसे मर सकता था मैं, इतनी आसानी से कैसे मर सकता था मैं इस भीषण दुर्व्यवस्था में, इस नई बराबर जगह में, अभी होने को अभिशप्त था मैं, जब मदद करना चाहता था दूसरों की, लोग आशंकित होते थे यह जानकर, संदिग्ध निगाहों से देखते थे मेरी मदद को, गोया मैं उनकी मदद नहीं उनकी हत्या करने जा रहा था, गोया मैं उनकी मदद नहीं उनकी हत्या करने जा रहा था, बिना किसी स्वा

0: अर्थ के मैं किसी की मदद कैसे और क्यों कर रहा था, यह सवाल उनके लिए मदद से भी बड़ा था। बिना किसी स्वार्थ के मैं किसी की मदद कैसे और क्यों कर रहा था, यह सवाल उनके लिए मदद से भी बड़ा था। गलत जगह पर सही काम करने की जिद लिए मैं किसी प्रहसन में विदूषक सा खड़ा था,
1: बहुत
0: मैं
1: खूब,
0: किसी
1: वाह,
0: प्रहसन में विदूषक सा खड़ा था।
2: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है।
0: एक अंतिम कविता मेरी, कल रात सपने में। कल रात मेरे सपने में गांधारी ने इनकार कर दिया आंखों पर पट्टी बांधने से। कल रात मेरे सपने में गांधारी ने इनकार कर दिया आंखों पर पट्टी बांधने से। एकलव्य ने नहीं काटा अपना अंगूठा द्रोण के लिए।
2: वाह वाह,
0: सीता ने मना कर दिया अग्नि परीक्षा देने से।
1: बहुत खूब,
0: द्रौपदी ने नहीं लगने दिया स्वयं को जुए में दांव पर।
2: क्या बात, बेहतरीन,
0: पुरु ने नहीं दी ययाति को अपनी युवावस्था। कल रात इतिहास और मिथिहास की कई गलतियां सुधरी मेरे सपने में, मेरे सपने में। धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत
2: बहुत
1: बढ़िया,
2: सुंदर। अभी आपने
1: पाठ किया,
2: डॉक्टर सुशांत सुप्रिया जी को सुना, बहुत बेहतरीन रचनाएं आप लोगों ने सुनाई। अब हमारे बीच में आ रहे हैं वरिष्ठ कवि डॉक्टर विशंबर दयाल अवस्थी जी। आप श्रृंगार और वीरस के कवि हैं। इनके सम्मान में दो पंक्तियाँ। अबके सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, अबके सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरे घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई, मेरा घर छोड़कर कुल शहर में बरसात हुई। डॉक्टर विशंबर दयाल अवस्थी जी।
3: धन्यवाद। श्रृंगार रस का एक गीत प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है प्रिया तुम कुछ बोलो होली। है प्रभात को समय प्रिया तुम कुछ बोलो होली, पास पड़ोसी जाग रहे भावी ने किवाड़ खोली, 4 बजे का समय गगन में अनुपम लाली है, मुर्गा बांग दे रहा कव का उपवन खाली है,
2: क्या बात है,
1: बढ़िया, बहुत अच्छा,
3: चंदा इठलाता चांदनी से फूलन से भौरे, है प्रभात को समय प्रिया तुम कुछ बोलो होली, हमें सुहानी लगे तुम्हारी सारी ही काया, इसीलिए तो स्वप्न लोक में भी तुमको पाया।
2: वाह
1: वाह, बहुत अच्छे,
3: वायु मंद मंद बहती है स्मृति आती है, फूलों पर भंवरों को देख कर याद सताती है,
2: क्या बात है,
3: काली कोयलिया बागन में, काली कोयलिया बागन में कूक कूक बोले, है प्रभात को समय प्रिया तुम कुछ बोलो होली,
1: बहुत बढ़िया,
3: ऋतु बसंत की छटा निराली चहुंदिश हरियाली, पीली पीली सरसों फूली खेतनु में न्यारी, बेला ढाक गुलाब चमेली सरसिज हर साये, तरु बसंत के स्वागत में नव नव किस ले लाए,
2: क्या बात
3: बहुत
2: है,
3: खूब,
2: बहुत
3: तरु
2: बढ़िया,
3: बसंत के स्वागत में नव नव किस ले लाए, पीली साड़ी पहन मेदिनी मधुरिम रस घोले, है प्रभात को समय प्रिया तुम कुछ बोलो होले, पास
1: बहुत अच्छा,
3: पड़ोसी जाग रहे भावी ने किवाड़ खोले।
1: वाह, बहुत
2: बहुत
1: बढ़िया,
2: सुंदर,
1: बहुत
2: बहुत
1: अच्छा,
2: सुंदर,
3: दूसरी कविता का शीर्षक है पर्यावरण बचाओ।
2: वाह,
3: वृक्षारोपण करो धरा का रोज नया श्रृंगार करो, पर्यावरण बचाओ प्यारे प्रकृति का उद्धार करो,
0: बहुत खूब,
1: बढ़िया,
3: पीपलाम नीम बढ़ के तुम अंधाधुंध बागान करो, पर्यावरण स्वच्छ बनाकर प्राण वायु संचार करो, हरे भरे जंगल की धरती इस पर ना तुम बार करो, वृक्ष हमारे जीवन साथी मत काटो उपकार करो,
1: बहुत बढ़िया,
0: वाह,
1: बहुत अच्छा।
3: जन्म दिवस पर

0: देख रही तुम उसको ना बेहाल करो।
1: बढ़िया।
0: हरी भरी धरती का सुंदर स्वर्णिम सपना साकार करो। जल संरक्षण करो हमेशा जल जीवन का सार करो।
2: क्या बात।
0: सीमित जल उपयोग करो, जल बचाओ हर बार करो। जल की बूंद सुधा होती है, तुम उसको ना बेकार करो। जल की बूंद सुधा होती है, तुम उसको ना बेकार करो। नदियों को कूड़े कचरे से तुम मत अब बदहाल करो। अब तो सोच बदल लो प्यारे, अपना तो कुछ ख्याल करो। वृक्ष लगा कर जन जन को तुम शुद्ध वायु उपहार करो। वृक्षारोपण करो धरा का, रोज नया श्रृंगार करो। वृक्षारोपण करो धरा का, रोज नया श्रृंगार करो।
3: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर,
1: बहुत अच्छा।
0: अब कविता का शीर्षक है मेरी माटी मेरा देश। सब देशों से न्यारा है भारत देश।

0: मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सब भाई भाई, सबका मान बराबर है, ना कोई तुच्छ कदावर है। अखिल विश्व में भारत देश सप्तम नंबर पर आता है, गंगा यमुना सरस्वती सरयू से सच्चा नाता है।
1: बढ़िया, बहुत।
0: उत्तर में है खड़ा हिमालय, दक्षिण हिंद महासागर है, भारत नहीं राष्ट्र छोटा है, 36 राज्यों के कुल वे हैं, अगर सही से गिनती कर लो जिले 797 हैं। हर क्षेत्रों की अपनी भाषा अपनी संस्कृति होती है, जींस टॉप टी शर्ट कहीं की, पहनावा कुर्ता धोती है, लिट्टी चोखा पूर्वांचल का, खान पान शाकाहारी है, दिल्ली का यहाँ पर मोमोज, असम सिक्किम से भी भारी है।
2: क्या बात है, क्या बात है।
0: भारत की जलवायु सदा मानसूनी ही कहलाती है, यही यहाँ पर मौसम का भी नियमित परिवर्तन करवाती है। भारत देश हमेशा हमको प्राणों से भी प्यारा है, सब देशों से न्यारा है, भारत देश हमारा है।
1: बहुत बढ़िया,
2: वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, लाजवाब।
1: अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ उनको जिन्होंने अभी तक हमें आमंत्रित किया। हास्य व्यंग के कवि हैं, उनकी एक पुस्तक आ चुकी है गिरगिट, इनका नाम है मदन लाल राज। तो स्वागत है मदन लाल जी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। कुछ चंद क्षणिकाएं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहली क्षणिका का शीर्षक है गिद्ध। गिद्ध नौचने में सिद्ध, गिद्ध नौचने में सिद्ध, दूर दूर तक प्रसिद्ध। गिद्ध नौचने में सिद्ध, दूर दूर तक प्रसिद्ध। आजकल वह भी सोचने लगा है, मुझसे अच्छा तो आदमी नौचने लगा है। आजकल वह भी सोचने लगा है, मुझसे अच्छा तो आदमी नौचने लगा है। अवनी से अंबर तक अब वह लुप्त प्राय है, अवनी से अंबर तक अब वह लुप्त प्राय है, क्योंकि गिद्ध ही आदमी का पर्याय है। क्योंकि गिद्ध ही आदमी का पर्याय है। अगली क्षणिका है घोड़ी का दुस्साहस। लगा कि जैसे पृथ्वी अपनी धुरी से सरक गई, लगा कि जैसे पृथ्वी अपनी धुरी से सरक गई, दूल्हे को देखते ही जब एक घोड़ी बिदक गई। दूल्हे को देखते ही जब एक घोड़ी बिदक गई, ना जाने कैसे उसको ये एहसास हो गया, ना जाने कैसे उसको ये एहसास हो गया, वर पक्ष की नियत का आभास हो गया। वर पक्ष की नियत का आभास हो गया, अच्छे खासे भोले भाले दूल्हे से सेंट की खुशबू आ रही है, अच्छे खासे भोले भाले दूल्हे से सेंट की खुशबू आ रही है, लेकिन घोड़ी कहती है दूल्हे के शरीर से दहेज की बू आ रही है।
1: बहुत बढ़िया,
2: लेकिन घोड़ी कहती है कि दूल्हे के शरीर से दहेज की बू आ रही है। एक छोटी सी रचना और देखिए।

0: इस साल की सर्दी का जवाब नहीं, हकीकत है दोस्तों ख्वाब नहीं, इस साल की सर्दी का जवाब नहीं, हकीकत है दोस्तों ख्वाब नहीं, कि किसी गृहिणी के नैनों से प्रेमी की याद में दो आंसू निकल गए। प्रेमी की याद में दो आंसू निकल गए, कसम खुदा की खाकर कहता हूं कि गोरे गोरे गालों पे आते जम गए उसके।
1: वाह बहुत बढ़िया बहुत
0: कसम
1: बढ़िया।
0: खुदा की खाकर कहता हूं कि गोरे गोरे गालों पे आते जम गए। तीसरी कविता है, एक ततैये ने मुझे काट लिया, पता नहीं कब की दुश्मनी निकाली, काटने के लिए पांच कवियों में से मुझे छांट लिया।
1: सही किया
2: बहुत बढ़िया।
0: एक ततैये ने मुझे काट लिया, पता नहीं कब की दुश्मनी निकाली, काटने के लिए पांच कवियों में से मुझे छांट लिया। जब ततैये ने मुझे काटा तब तो मैंने उसको डांटा, जब ततैये ने मुझे काटा तब तो मैंने उसको डांटा। मैंने कहा तुझको आती नहीं शर्म, करते हुए ऐसे कर्म। तब वह मुझसे कहने लगा, रहने दे मत दे लेक्चर, ज्यादा बकवास करोगे तो दोबारा कर दूंगा पंचर।
1: वाह बढ़िया
2: क्या बात,
0: ज्यादा बकवास करोगे तो दोबारा कर दूंगा पंचर।
1: बढ़िया काव्य पाठ।
0: मेरी अगली कविता का शीर्षक है यंत्र। सुबह का होना चिंताओं का समीकरण, सुबह का होना चिंताओं का समीकरण, फिर शुरू होती है घटा गुणा भाग दौड़, लगातार गतिशीलता बढ़ाती है दिल की धड़कन। सुबह का होना चिंताओं का समीकरण, फिर शुरू होती है घटा गुणा भाग दौड़, लगातार गतिशीलता बढ़ाती है दिल की धड़कन। मशीनों की खटखट और धुआं सांस का पर्याय,
1: बढ़िया
0: मशीनों की खटखट और धुआं सांस का पर्याय, मशीनी युग में शाम का सुहानापन लाता है शिथिलता।
2: बहुत सुंदर बहुत
1: वाह
2: सुंदर।
0: बहुत मशीनों की खटखट और धुआं सांस का पर्याय, मशीनी युग में शाम का सुहानापन लाता है शिथिलता। अकर्मण्यता के इंसान महज एक यंत्र बनकर रह गया
2: बहुत क्या बात,
1: है।
2: बिल्कुल सही।
0: अकर्मण्यता के इंसान महज एक यंत्र बनकर रह गया। मेरी अगली कविता का शीर्षक है क्रांतिकारी चिड़िया। चिड़िया ने जब जब गिद्ध की नियत पर उंगली उठाई, चिड़िया ने जब जब गिद्ध की नियत पर उंगली उठाई, तो कौवों ने करे कांव कांव और बाज ने आंख दिखाई।
1: बहुत बढ़िया बहुत अच्छे।
0: चिड़िया ने जब गिद्ध की नियत पर उंगली उठाई, तो कौवों ने करे कांव कांव और बाज ने आंख दिखाई। चिड़िया के चरित्र पर काली कोकरी ने भी कई सवाल उठाए,
2: ये ठीक है।
0: चिड़िया के चरित्र पर काली कुकरी ने भी कई सवाल उठाए, कई सवाल उठाए।
2: क्या बात,
0: इधर लोमड़ी ने भी गिद्ध की परोपकारिता के कई उदाहरण गिनवाए,
2: बहुत सुंदर।
0: इधर लोमड़ी ने भी गिद्ध की परोपकारिता के कई उदाहरण गिनवाए। जंगल राज में कबूतर के सिवा चिड़िया का गवाह कौन था, जंगल राज में कबूतर के सिवा चिड़िया का गवाह कौन था, गिरगिट की सरपंची में उल्लू बेचारा मौन था।
1: बहुत अच्छी बहुत बढ़िया
0: गिरगिट की
1: वाह।
0: सरपंची में उल्लू बेचारा मौन था, दिन के उजाले में चमगादड़ों ने गिद्ध की वकालत की। दिन के उजाले में चमगादड़ों ने गिद्ध की वकालत की, फिर तो रटंतु तोते ने भी गिद्ध की हिमायत की,
1: बढ़िया
0: फिर तो रटंतु तोते ने भी गिद्ध की हिमायत की। चिड़िया को तो हारना ही था, चिड़िया
1: वाह
0: को तो हारना ही
1: बढ़िया।
0: था, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी के विरुद्ध झूठ फरेब और मक्कारी आपस में मिली थी।
2: बहुत सुंदर
1: बहुत अच्छी
2: क्या बात।
0: सच्चाई और ईमानदारी के विरुद्ध झूठ फरेब और मक्कारी आपस में मिली थी। चिड़िया जा उड़ जा, चिड़िया जा उड़ जा, पहुंच ऐसे देश, प्रेम भाईचारे और न्याय का जहां फैला हो संदेश।
1: बहुत
0: बहुत
1: अच्छे
0: सुंदर,
1: बहुत
0: प्रेम
1: बढ़िया
0: भाईचारे और न्याय का जहां फैला हो संदेश। पर यह समस्या का हल नहीं,
1: बिल्कुल।
0: समाधान खोज कल नहीं, पर यह समस्या का हल नहीं, समाधान आज खोज कल नहीं। चिड़िया तू जहां कहीं भी जाएगी, शोषकों की प्रजाति को ही पाएगी,
2: बहुत सुंदर
0: चिड़िया तू जहां कहीं भी जाएगी, शोषकों की प्रजाति को ही पाएगी। इसलिए बहुत ऊंचा उड़, ना पीछे हट ना पीछे मुड़,
1: बढ़िया बहुत अच्छी
0: इसलिए
1: बढ़िया।
0: बहुत ऊंचा उड़, ना पीछे हट ना पीछे मुड़, हौसला और हिम्मत पैदा कर और जा बैठ गिद्ध की पीठ पर।
1: वाह
2: वाह,
1: बहुत बढ़िया।
0: हौसला और हिम्मत पैदा कर और जा बैठ गिद्ध की पीठ पर, छोटी ही सही अपनी चोंच से गिद्ध की गर्दन लहू लुहान कर,
1: वाह
0: छोटी ही सही अपनी चोंच से गिद्ध की गर्दन लहू लुहान कर, हौसले पर गुमान पर सिद्ध अपना स्वाभिमान कर, हौसले पर गुमान कर सिद्ध अपना स्वाभिमान कर,
1: बढ़िया
0: वार पर वार कर शोषक का संहार कर,
2: बहुत
1: वाह
2: सुंदर
0: वार पर वार कर शोषक का संहार कर, चाहे जान चली जाए

0: पर व्यभिचारी बच ना पाए।
1: वाह शानदार।
0: वार पर वार कर शोषक का संहार कर, चाहे जान चली जाए पर व्यभिचारी बच ना पाए, पर व्यभिचारी बच ना पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी आप सुन रहे थे एक बेहतरीन काव्य संगोष्ठी जिसमें हमारे बहुत ही वरिष्ठ कवि और कवित्रियों ने हिस्सा लिया। काव्य संगोष्ठी में जो कवि और कवित्रियाँ भाग ले रही थी उनमें सर्वश्री डॉक्टर विशंबर दयाल अवस्थी, डॉक्टर शिल्पा राजपूत जी, सुशांत सुप्रिया जी ने आज हिस्सा लिया। हम सब आप सभी लोगों का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद।
2: अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। गोष्ठी का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ कवि श्री मदन राज। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग था वंदना का और प्रस्तुतकर्ता थे श्रवण मीणा।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है और स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 8:30 हो चुके हैं और ये समय है फिल्म संगीत का। तो शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन कार्यक्रम की, इस जबरदस्त गीत के साथ।

0: कहानी।
1: कॉलेज के आगे गराज, गराज के ये मैकेनिक।
0: देखो मुझे पापा ने तेरे कहा उतले रानी, जैसे भी हो शादी तुमसे करनी है ये ठानी।
1: इसके आगे मैं नहीं बता सकती, इनसे ही पूछ लो।

0: मेरी बना के आए हाय दुल्हन मेरी बना के फिर दंगर दंगर दंगर दंगर दंगर दंगर दंग
1: और जब भी नाचे कोई तो सामने से अपने भी पैर थिरकने लगते हैं और कहानियाँ कुछ ऐसी होती हैं जो कभी कभी याद रह जाती हैं और कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि वो ताज़ा हो जाती है।

कहीं कोई सरेंडर हो जाता है और कभी किसी को कहीं सरेंडर कर देना पड़ता है, और ऐसे ही अब हमें सरेंडर करना है। घड़ी के आगे सुइयां बता रही हैं कि अब वक्त हो चला है कि आपसे लें इजाजत। यह है कार्यक्रम का अंतिम गीत।

और अब प्रस्तुत है आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की एक छोटी सी रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 8:45 पर आप सुनेंगे देश और दुनिया की खबरों पर आधारित समाचार संध्या। ठीक 9 बजे समय होगा इवनिंग न्यूज का।

0: 9:30 पर समय होगा कार्यक्रम अनुगूंज का, जिसमें आज आप सुनेंगे महान लेखिका अमृता प्रीतम, मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जिंदगी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बातें और उनकी आवाजें भी। ठीक 10 बजे समय होगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का, जिसमें आप सुनेंगे वॉयलिन वादन जी रघुवेंद्र प्रसाद का, और 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, और 11:10 पर समय होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। और अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और उज़्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज़्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की, मृतकों की संख्या 780 से अधिक हुई, अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने $1.5 लाख की आपातकालीन सहायता जारी की, और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। भारत और उज़्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज़्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज़्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई। भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए $10 लाख का अनुदान देने का फैसला किया है। उज़्बेकिस्तान में UPI के इस्तेमाल के लिए भी समझौता किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है।
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे।
2: दोनों देशों के युवाओं, विशेषकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के बीच एक्सचेंज को बढ़ावा देना

0: हमारी उच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच टूरिज्म बढ़ाने के लिए आज प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन पर सहमति बनी है। मुझे खुशी है कि उज्बेकिस्तान में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए आज हम स्कॉलरशिप की घोषणा करने जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। भारत वर्ष 2017 से SCO का पूर्ण सदस्य है। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे संगठन के मंच पर सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से इतर SCO के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अपनी बिश्केक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी 6ठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का उत्सव है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री मोदी के कूटनीतिक सिद्धांतों से नए मार्ग खुल रहे हैं और वे ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि श्री मोदी का ये 36वां वैश्विक सम्मान है। इससे पता चलता है कि उनके नेतृत्व को दुनिया भर में सराहना मिल रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा, गीत और संदेश तैयार करने की अपील की।
4: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि PM स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
4: PM स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। PM स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: प्रधानमंत्री

0: मोदी ने कहा कि आज मिशन शक्ति सेट के माध्यम से हजारों देश की बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के इस मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में पीएम सेतु इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि देश अपनी रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी में बुनियादी कायाकल्प का साक्षी बन रहा है।
2: आज हम डिफेंस सेक्टर में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। जब मैं मिनिस्टर बना था तो डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। आपको जानकर खुशी होगी अब हम लोग 1,80,000 करोड़ के आसपास हैं। हमारा एक्सपोर्ट 600 करोड़ था, आज हमारा एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच गया है। हम इंडिजिनस डिजाइन को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर तथा एमएसएमई की भागीदारी बढ़ा रहे हैं।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। अब तक प्रभावित इलाकों से 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित है। पेचिंग में भारतीय दूतावास उनसे संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंची। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। इस बीच भारत से भेजी गई विशेष सुरंग बचाव टीम ने आज नेपाली सेना की टीम के साथ मिलकर चिलिमे और लांगटांग क्षेत्र की जल विद्युत सुरंगों में खोज और बचाव अभियान चलाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 1,50,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य में समाज के सभी वर्गों से बंद या ब्लॉकेड नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह की गतिविधियों से कभी कभी अवांछित हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला वर्तमान चैंपियन जर्मनी और स्पेन के बीच जारी है। दो क्वार्टर की समाप्ति तक मुकाबला गोल रहित बराबरी पर है। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। और एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत और थाईलैंड के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 14वें ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Uzbekistan elevate bilateral ties to comprehensive strategic partnership, seal long-term uranium supply pact and set $5 billion trade target by 2030. Prime Minister Narendra Modi conferred Uzbekistan's highest state honor, reaches Kyrgyz Republic to take part in 26th SCO summit at Bishkek. Prime Minister Modi warns of perils of drug abuse in Mann Ki Baat program, celebrates women's economic empowerment, girls entering space industry and agricultural innovation. Nepal issues fresh flood alert along Bhote Koshi River. 149 Indians rescued so far as death toll crosses 780. WHO releases $150,000 emergency aid. And in men's hockey, Germany and Spain locking horns for coveted World Cup title in Belgium. Now the news in detail. India and Uzbekistan today decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have also set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 memoranda of understandings aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress, and prosperity in Central Asia.
5: इस वर्ष हमारी strategic partnership के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
4: Later, at a joint press conference with the Uzbekistan president following the talks, Prime Minister Modi said maintaining a zero-tolerance policy towards terrorism, extremism and separatism will remain their shared resolve.
5: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती हैं। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
4: Mr. Modi said India and Uzbekistan will jointly organize a business summit involving business leaders from both the countries.
5: दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हों। यूरेनियम की सप्लाई के लिए

0: पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए।
1: Prime Minister Modi said the two countries will also set up cooperation in the field of sports.
0: स्पोर्ट्स भी हमारे सहयोग के महत्वपूर्ण आयाम के रूप में उभर रहा है। पिछले वर्ष गोवा में

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। भारत और उज़्बेकिस्तान अपने बाहमी ताल्लुकात को जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी तक लेकर गए। दोनों मुल्कों ने तवील मुद्दती यूरेनियम सप्लाई मुआहदे पर दस्तखत किए और 2030 तक 5 अरब डॉलर की दो तरफा तिजारत का हदफ मुकर्रर किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उज़्बेकिस्तान के आला तरीन सरकारी एजाज से नवाजा गया है। जनाब मोदी बिश्केक में शंघाई तावुन तंजीम SCO के 26वें सरबरा इजलास में शिरकत के लिए जमहूरिया किर्गिज पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में मुनशियात की लानत से खबरदार किया। उन्होंने ख़वातीन की मआशी खुदमुख्तारी, खलाई सनत में लड़कियों की शमूलियत और ज़रई शोबे में जिद्दत तराजी को सराहा। नेपाल ने भोटेकोशी दरिया से मुत्तसिल इलाकों में सैलाब का ताज़ा अलर्ट जारी किया है। अब तक 149 भारतीयों को बचाया जा चुका है। हलाकतों की तादाद बढ़कर 781 हो गई है। आलमी इदारे सेहत WHO ने 150,000 अमरीकी डॉलर की हंगामी इमदाद जारी की है। और मर्दों की हॉकी में बेल्जियम में वर्ल्ड कप का फाइनल दिफाई चैंपियन जर्मनी और स्पेन के दरमियान खेला जा रहा है। अब खबरें तफसील से। भारत और उज़्बेकिस्तान ने आज अपने ताल्लुकात को जामे कलीदी शराकत दारी की सतह पर ले जाने का ऐलान किया है। दोनों मुल्कों ने सिविल न्यूक्लियाई तवानाई के शोबे में बाहमी तावुन के हिस्से के तौर पर उज़्बेकिस्तान से भारत को यूरेनियम की सप्लाई के लिए एक तवील मुद्दती इंतजाम के बारे में भी इत्तफाक किया है।
1: दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम 3 सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए।
0: नायाब मादनियात की कानकनी के लिए मुमकिना मकामात के बारे में भी तबादले ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों ने साल 2030 तक दो तरफा तिजारत को 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव के दरमियान वफ्द की सतह की बातचीत के बाद ये फैसले किए गए हैं। दोनों रहनुमाओं ने 11 मुफाहमत नामों का तबादला किया जिनका मकसद कानकनी, आयुर्वेद, सियाहत, सकाफत, इक्तसादी और मालियाती मुज़ाकरात और तालीम समेत अहम शोबों में दो तरफा तआवुन को बढ़ाना है। मुज़ाकरात के दौरान अपने बयान में जनाब मोदी ने कहा कि भारत उज़्बेकिस्तान मजबूत शराकत दारी वस्ती एशिया में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए एक ताकतवर मुहर्रिक होगी।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
0: मुज़ाकरात के बाद उज़्बेकिस्तान के सदर के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी खिदे को दरपेश संगीन चैलेंजेस हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन खतरात को कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी एक मुश्तरका अज़्म होगी।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।

0: वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान दोनों मुल्कों के कारोबारी रहनुमाओं की एक कारोबारी समिट का मुश्तरका तौर पर इनेकाद करेंगे। वजीर आजम मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक खेलों से मुतालिक तआवुन को भी मजीद बढ़ाएंगे।
1: स्पोर्ट भी हमारे सहयोग के महत्वपूर्ण आयाम के रूप में उभर रहा है। पिछले वर्ष गोवा में 20 वर्षीय उज्बेक ग्रैंड मास्टर सिंदारोव ने वर्ल्ड कप जीता। अब नवंबर में उनका मुकाबला भारत के 20 वर्षीय चेस चैंपियन गुकेश के साथ होने वाला है। एक बिसात पर जब ये दो युवा सितारे आमने सामने होंगे तो जाहिर है इस मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजर होगी।
0: जनाब मोदी ने उज्बेकिस्तान के तलबा के लिए 100 लाल बहादुर शास्त्री स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया ताकि इस वस्ती एशियाई मुल्क में हिंदी जबान को फ़रोग दिया जा सके। उन्होंने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ में संस्कृत चेयर कायम करने का भी ऐलान किया। इस मौके पर जनाब मोदी को सदर शवकत मिर्ज़ियोयेफ ने उज़्बेकिस्तान के आला तरीन सरकारी एजाज ऑर्डर ऑफ ओली दर्जली दोस्त लीग से सरफराज किया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर और वजीर खजाना निर्मला सीतारमन समेत कई मरकजी वजीरों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान के आला तरीन सरकारी एजाज से सरफराज किए जाने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि ये बावकार एजाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क्यादत और भारत उज्बेकिस्तान के दरमियान देरीना दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करने के लिए उनकी मुस्तकिल कोशिशों का एतराफ है। वजीर दाखिला अमित शाह ने इसे हर भारतीय के लिए फख्र का अजीम लम्हा करार देते हुए कहा कि मोदी हुकूमत की सिफारती पॉलिसी नई सरहदें तय कर रही है, आलमी खित्ते जनूब की आवाज़ को मजबूत बना रही है और अक्वाम आलम के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम करके इंसानियत की फलाह बहबूद के भारत के तहजीबी मकासद को आगे बढ़ा रही है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर ने कहा कि यह एजाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती को गहरा करने की मुस्तकिल कोशिशों का एतराफ है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि यह एजाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कोशिशों और भारत के बढ़ते हुए आलमी रुतबे की इक्कासी करता है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए फख्र का लम्हा है और भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान पायदार दोस्ती की एक रोशन मिसाल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंच गए हैं। बिश्केक के अपने दो रोज़ा दौरे के दौरान वजीर आजम शंघाई तआवुन तंजीम SCO के रुकन ममालिक के रहनुमाओं के साथ दो तरफा मीटिंगें करेंगे। वो 1 सितंबर को SCO के 26वें सरबराह इजलास में भी शिरकत करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम के 26वें सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। ये इजलास शंघाई तआवुन तंजीम की 25वीं सालगिरह के मौके पर हो रही है। भारत 2017 से इस तंजीम का रुकन है। वजीर आजम इस इजलास से खिताब करेंगे। इस दौरान वो सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और मौके के सिलसिले में भारत की तरजीहात को उजागर करेंगे। वजीर आजम इजलास के मौके पर SCO रहनुमाओं के साथ दो तरफा मीटिंगें भी करेंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम 6ठे वर्ल्ड नॉम्ड गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे, जो वस्ती एशिया के मालामाल सकाफती विरसे का जश्न मनाने के लिए मुनक्कद किए जा रहे हैं। बिश्केक से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद इमरान।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम में लोगों से अपने ख्यालात का इजहार किया। अपने खिताब में उन्होंने मुनशियात के इस्तेमाल के समाजी नुकसानात के खिलाफ सख्त इंतबाह दिया और विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा मुहिम को उजागर किया। उन्होंने PM स्वनिधि स्कीम के जरिए खवातीन की क्यादत में माशी खुदमुख्तारी पर जोर दिया और खलाई सनत जैसे जदीद शोबों में खवातीन के लिए बढ़ते हुए मौके की तारीफ की। वजीर आजम ने ज़रात और डिजिटल टेक्नोलॉजी में अवामी सतह पर होने वाली अहम इख्तराअत की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा मुहिम मुल्क भर में रफ्तार पकड़ रही है और मुनशियात से पाक नौजवान और मुनशियात से पाक भारत का मकसद महज एक रस्मी बात नहीं है, बल्कि इस मुहिम से बड़ी तादाद में नौजवान जुड़ रहे हैं।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे

0: बाहर निकलने का रास्ता भी हो। हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: जनाब मोदी ने कहा कि मनुष्यात की लत सिर्फ एक फर्द को नहीं बल्कि पूरे खानदान और मुआशरे को मुतासिर करती है। उन्होंने मनुष्यात के खिलाफ बेदारी पैदा करने और नशे की लत में मुबतला अफराद की मदद करने वाले लोगों की तारीफ की। वजीर आजम ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने में पीएम स्वनिधि योजना के रोल को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने की इस पहल पर मजीद तवज्जो दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के तकरीबन 46% मुस्तफिदीन खवातीन हैं और मुल्क भर में तकरीबन 35 लाख खवातीन अपने कारोबार को वसत देने के लिए इस स्कीम से फायदा उठा रही हैं।
0: पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: सफाई सुथराई के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि जब किसी इलाके को साफ रखने का अज़्म अवाम की इज्तिमाई वाबस्तगी बन जाता है तो ये अमल इस मकाम की शिनाख्त को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में सफाई सुथराई से मुतालिक ऐसी कोशिशें दूसरों के लिए मुसलसल तहरीक का बायस बन रही हैं। वजीर आजम ने मिशन शक्ति सेट का भी जिक्र किया जो हजारों लड़कियों को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और खलाई शोबे में इख्तराअत के मौके फराहम कर रहा है। नेपाल में अचानक सैलाब आने से मरने वालों की तादाद 781 तक पहुंच गई है। वहां मजीद लाशें मिली हैं। तकरीबन 2500 अफराद अब भी लापता हैं। नेपाल की कुदरती आफात से पैदा होने वाले खतरात की रोकथाम और बंदोबस्त से मुतालिक अथॉरिटी NDRRMA ने बताया कि मुतासिर जिलों से 8186 अफराद को बहिफाजत निकाला गया है जिनमें 227 गैर मुल्की अफराद शामिल हैं। नेपाल हुकूमत ने भोटे कोशी दरिया में सैलाब का ताज़ा अलर्ट जारी किया है। हुकूमत ने रसुआ नुवाकोट और धार्डिंग जिलों में दरिया के किनारे आबाद लोगों से मोहतात रहने के लिए कहा है। अथॉरिटी ने दरिया में सैलाब का दबाव बढ़ने की इत्तला दी है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में अचानक सैलाब आने के बाद से अब तक 149 भारतीय शहरियों को बचाया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब जायसवाल ने कहा कि तकरीबन 50 भारतीय शहरियों के साथ राबता कायम हो गया है जिनसे इससे पहले राबता कायम नहीं हो पा रहा था। वजारत खारजा ने कहा है कि 275 भारतीय शहरियों के लापता होने की खबर है जबकि भारत निजात तकरीबन 128 अफराद अब भी लापता हैं जिनके पास दीगर मुल्कों की शहरियत है। भारत सैलाब से मुतासिरा नेपाल में बचाव और राहत के काम में लगातार मदद कर रहा है। भारत ने सैलाब से मुतासिरा नेपाल के लिए 68.5 टन इमदादी सामान भेजा है और तलाश और बचाव की कार्रवाइयों में मदद के लिए तकनीकी टीमें, फॉरेंसिक माहरीन और ज़रूरी अशिया भी रवाना की हैं। इस दौरान आलमी सेहत तंजीम WHO ने नेपाल में सैलाब से मुतासिरा लोगों की मदद के लिए जुनूब मशरकी एशियाई खित्ते के सेहत के इमरजेंसी फंड से 150,000 अमरीकी डॉलर जारी किए हैं। WHO के जुनूब मशरकी एशियाई खित्ते के दफ्तर के ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर नीलेश बुद्धा ने कहा कि इस इमरजेंसी फंड से फौरी ज़रूरियात की तकमील में मदद मिलेगी। बेल्जियम के वावरे में बेल्फियस हॉकी एरिना में FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल दिफाई चैंपियन जर्मनी और स्पेन के दरमियान खेला जा रहा है। जर्मनी 2023 में जीता हुआ अपना खिताब बरकरार रखने के साथ साथ चौथा वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश कर रहा है जबकि स्पेन हॉकी वर्ल्ड कप का अपना पहला खिताब हासिल करने के लिए खेल रहा है। अब से कुछ देर पहले तक जर्मनी 1-0 से आगे था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और उज़्बेकिस्तान अपने बाहमी ताल्लुकात को जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी तक ले गए। दोनों मुल्कों ने तवील मुद्दती यूरेनियम सप्लाई मुआहदे पर दस्तखत किए और 2030 तक $5 अरब की दो तरफा तजारत का हदफ मुकर्रर किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उज़्बेकिस्तान के आला तरीन सरकारी एजाज से नवाजा गया है। जनाब मोदी बिश्केक में शंघाई तावुन तंजीम SCO के 26वें सरबराह इजलास में शिरकत के लिए जमहूरिया किर्गिज़ पहुँच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में मनुष्यात की लानत से खबरदार किया। उन्होंने ख्वातीन की माशी खुद

0: मेरे दिल में तो सिर्फ प्यार ही प्यार है, चारों तरफ दूर दूर तक। एक दिन वो सारा प्यार एक जगह सिमट कर इकट्ठा हो गया। मैंने पास जाकर गौर से जो देखा तो वो तुम थी।
1: ये तुम बिल्कुल सच कह रहे हो?
0: सच, सिर्फ सच, सच के सिवा कुछ नहीं।
1: तब ठीक है।

दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है

0: कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 1,50,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने अमरीका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। जवाब में थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। भारत की शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। India and Uzbekistan have decided to elevate their bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 memorandum of understandings aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia.
0: इस वर्ष हमारी strategic partnership के 15 साल हो रहे हैं। विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग

आपने अभी सुना फिल्म ब्रह्मचारी से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत गीत सुनहरे कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म गाइड से, जिसमें आवाज़ किशोर कुमार और लता मंगेशकर की है।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत फिल्म सूरज से। संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

फिल्म अनपढ़ से लता मंगेशकर की आवाज़ में और संगीत मदन मोहन का था। अभी आपने सुना, आपकी नज़रों ने समझा। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में।

और अब फिल्म कभी कभी से आ रहा है ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं साहिर ने और संगीत से पिरोया है खयाम ने।

गीत सुनहरे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म है कश्मीर की कली, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें हैं। एस एच बिहारी ने इस गीत को लिखा था और संगीत से पिरोया है ओपी नैयर ने।

0: और अब इस कार्यक्रम का आखिरी गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, जो आपका दिल कह रहा है वही बोल इस गीत के हैं।
1: अभी न जाओ छोड़ कर।

0: इसी गीत के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की दीजिए अपनी दोस्त कीर्ति को इजाजत। रात्रि के 2 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में हिंदी व अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज़्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज़्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज़्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी को उज़्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज़्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

0: प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के 5वें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। उन्होंने भारत की प्रौद्योगिकी क्षमताओं, कुशल श्रम शक्ति और बढ़ती नवाचार पारिस्थितिक पर भी बल दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य में समाज के सभी वर्गों से बंद न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह की गतिविधियों से कभी कभी अवांछित हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पाली खेली। भारत की शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Gupta. India and Uzbekistan have decided to elevate their bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia.
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
1: The two leaders witnessed the exchange of 11 memorandum of understanding aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue and Ayurveda. Later at a joint press conference with the President of Uzbekistan, Prime Minister Modi was conferred Uzbekistan's highest state honor, the Order of Oli Darjali Dustilik by President Shavkat Mirziyoyev. After concluding his two-day visit to Uzbekistan, Prime Minister Modi reached Kyrgyz Republic to take part in the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit in capital Bishkek. Prime Minister Narendra Modi shared his thoughts with the nation in the Mann Ki Baat program on Akashwani yesterday. In his address, the Prime Minister

0: इसी गीत के साथ नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम गीत बहार अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। रात्रि के 3 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में हिंदी व अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती हैं। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के

0: पांचवें दिन भी 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ से के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 1,50,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। श्रीमती सीतारामन ने शिकागो में चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ नेतृत्व के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें भी की। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। जवाब में थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। अब भारत का अगला मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। India and Uzbekistan have decided to elevate their bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia.
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
1: The two leaders witnessed the exchange of 11 memorandum of understanding aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue and Ayurveda. Later at a joint press conference with the President of Uzbekistan, Prime Minister Modi was conferred Uzbekistan's highest state honor, the Order of Oli Darjali Dustilik by President Shavkat Mirziyoyev. After concluding his two-day visit to Uzbekistan, Prime Minister Modi reached Kyrgyz Republic to take part in the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit in capital Bishkek. Prime Minister Narendra Modi shared his thoughts with the nation in the Mann Ki Baat program on Akashvani. In his address, the Prime Minister strongly warned against the social perils of drug abuse. He highlighted that Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat campaign for a drug-free youth and a drug-free India is gaining momentum with people joining in large numbers. Finance Minister Nirmala Sitharaman said that India is likely to sustain an economic growth rate of 7% or more in the financial year 2026-27, continuing the momentum recorded in the years since the COVID-19 pandemic. Addressing the Indian diaspora in Chicago during her US visit, she said that India was likely to maintain its growth momentum despite geopolitical uncertainty.

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4 बजने वाले हैं। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे एस सिद्धार्थ का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आइए आपको सुनवाते हैं पुरंदर दास की रचना जया जानकी कांता।

Thank you.

0: इसी के साथ कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना, आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4:20 होने वाले हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नाद ब्रह्म। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे ताल वाद्य कचहरी। मृदंगम पर है MV चंद्रशेखर और वायलिन पर R श्रीधर। आपने प्रस्तुत किया है आदि तालम, तीन ताल, विलंबित गत द्रुत और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे तालवाद्य कचहरी। कलाकार थे मृदंगम पर MV चंद्रशेखर और वायलिन पर R श्रीधर। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद की मास की नवीं तिथि, तदनुसार 31 अगस्त 2026। सुबह की 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए अब प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम आओ योग करें। आज आप सुनेंगे योग आश्वासन और तितली क्रिया। 5:20 का समय रहेगा देशभक्ति गीतों का। 5:30 सुनिएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे नदीम अहमद का गाया राग अलहिया बिलावल। के 10 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना चिंतन। आप सुनेंगे 6:40 पर। 6:45 का समय रहेगा रामचरितमानस से पाठ का। आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 34। इसके बाद 6:55 पर सुनिएगा संस्कृत में समाचार और फिर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। संगीतिका का समय रहेगा 7:10। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे भूषण त्रिपाठी के गाए भजन। 7:30 सुनिएगा गीतों भरी गुड मॉर्निंग। 8:00 का समय रहेगा समाचारों का। 8:45 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे उदय कुमार मल्लिक का गाया राग ललित। 9:30 आज ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगी इंद्रप्रीत कौर। 10:10 पर सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। 11:10 पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनेगा हमारी बेड़िया और उसके बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सबरस। 11:30 हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी प्रसारित किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे सितार वादन। कलाकार होंगे सलीम अहमद। 12:10 पर सुनिएगा महिला कार्यक्रम घर आंगन।

0: 1:10 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आज की फिल्म होगी सांवरिया। 2:30 पर सुनेगा एक ही कलाकार, और आज के कलाकार होंगे बासु भट्टाचार्य। 3:00 मैटनी मेलोडी, ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। उर्दू मजलिस सुनेगा 3:30 पर। 1:00 प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5:00 वाले हैं, लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा तथा पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पढ़ाई के लिए उज्बेकिस्तान जाने वाले भारतीय युवाओं के हितों और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती हैं। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान ओली दाराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किए जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा भी किया। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 788 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं, अब भी 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में आई एक और बाढ़ के कारण एक सस्पेंशन पुल बह गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से अब संपर्क हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अमरीका के दक्षिण कैरोलिना पहुंची। वे एशविले में होने वाली G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने सरकार पर उधार और कर्ज के स्तर से जुड़ी चिंताओं पर बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। शिकागो प्रवास के दौरान वित्त मंत्री ने कृषि, रक्षा प्रौद्योगिकी और आतिथ्य क्षेत्र से जुड़े कई प्रमुख अमरीकी उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें भी की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।

0: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हरा दिया है। इससे पहले अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा कर कांस्य पदक जीता था। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। India and Uzbekistan have decided to elevate their bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia.
3: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
2: The two leaders witnessed the exchange of 11 memoranda of understanding aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. Later, at a joint press conference with the President of Uzbekistan, Prime Minister Modi was conferred Uzbekistan's highest state honor, the Order of Oli Darajali Dustalik, by President Shavkat Mirziyoyev. After concluding his two-day visit to Uzbekistan, Prime Minister Modi reached Kyrgyz Republic to take part in the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit in capital Bishkek. Defense Minister Rajnath Singh has said India is moving rapidly towards self-reliance in the defense sector and witnessing a major transformation in its defense industrial ecosystem. Mr. Singh was addressing the PM Setu Industry Conclave at Lucknow in Uttar Pradesh yesterday. Finance Minister Nirmala Sitharaman said that India is likely to sustain an economic growth rate of 7% or more in the financial year 2026-27, continuing the momentum recorded in the years since the COVID-19 pandemic. Addressing the Indian diaspora in Chicago during her U.S. visit, she said that India was likely to maintain its growth momentum despite geopolitical uncertainties and supply chain disruptions following the US-Iran conflict and the closure of the Strait of Hormuz. President Draupadi Murmu will grace the National Institute of Fashion Technology, NIFT, Combined Convocation 2026 in New Delhi today. Graduating students from 18 NIFT campuses across the country will come together to celebrate the conferment of their degrees and mark the culmination of their academic journey. Union Minister of Textiles, Giriraj Singh, will also be present on the occasion. Nepal has issued a fresh flood alert for the Bhote Koshi River after a rise in its water flow. The National Disaster Risk Reduction and Management Authority of Nepal has urged residents along the riverbanks in Rasuwa, Nuwakot and Dharding districts to remain cautious. Meanwhile, the death toll from flash floods that struck the Nepal-Tibet border on Wednesday has risen to 788. More than 8,100 people, including 227 foreigners, have been evacuated, while over 2,500 remain missing. External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said that 149 Indian nationals have been rescued.

0: with a 1-0 win over Spain in the final at the Bellefeuze Hockey Arena in Waverly, Belgium last evening. In squash, India's Abhay Singh won the men's single title at the Tuan Mos Reef Trophy 2026, Sarabha, Malaysia. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह की 5:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आओ योग करें।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी श्वास भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी श्वास लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी तीन श्वास का अभ्यास करें। और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इम्पैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति। इसी आवृत्ति को दो तीन बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के